नमस्कार, सुप्रभात। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि तदनुसार आज दिनांक 15 जून सन 2026 ईस्वी समय प्रातः के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा का आरंभ करते हैं इस मंगल ध्वनि के साथ।

0: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए अनूप जलोटा और साथियों को।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम चिंतन। आज का चिंतन है, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? वाचक स्वर हैं स्वामिनी सत्य प्रभागे।
1: आज का विषय है सबसे बड़ा ज्ञानी कौन। ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाएं और उनमें अलग अलग विषय विषय के विशेषज्ञ। कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। उद्देश्य क्या? एक व्यक्ति है, कितना भी विशेषज्ञ बन जाए लेकिन सब शास्त्रों का ज्ञाता नहीं बन सकता। डॉक्टर है वो वकील के क्षेत्र का नॉलेज नहीं रखता, वकील है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र का नॉलेज नहीं रखता। फिर क्या इस प्रश्न का कोई समाधान प्राप्त किया जा सकता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सब विषयों का ज्ञाता हो सकता है, सब शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है? एक समाधान हमें संस्कृत साहित्य में मिलता है, समार्थम सर्वशास्त्राणि विहितानि मनीषिभिः स एव सर्वशास्त्रज्ञ यस्य शांतं सदा मनः। सारे शास्त्र बने हैं किसके लिए? शांति के लिए। कोई भी डॉक्टर है, शरीर के रोगों की शांति करता है। वकील या जज है, सामाजिक रोगों की शांति करता है। हर कहीं शांति की बात है, और जिसने शांति से जीना सीख लिया, मन को शांत करना सीख लिया, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि सब विषयों का ज्ञाता बनने के लिए किसी ज्ञान विज्ञान की विशेष शाखा में जाने की जरूरत नहीं, किसी विशेष साइंस की जरूरत नहीं, थोड़े से कॉमन सेंस की जरूरत है कि मन को शांत रखें। कैसे संभव है मन की शांति? परीक्षा ध्यान हमें समाधान की दिशा दिखाता है कि यदि मन की शांति चाहते हैं तो प्रतिक्रिया रहित जीवन जीना सीखें। एक्शन करें, रिएक्शन न करें। कैसे संभव है यह स्थिति? एक छोटी सी घटना। एक जैन फकीर हुआ बोकुजू। उसके बारे में कहा जाता है जब वह बच्चा था, एक बुद्ध भिक्षु के पास में रहता था और सफाई का काम किया करता था। एक दिन सफाई का कार्य करते हुए उसके हाथ से बुद्ध की प्रतिमा गिर गई, टूट गई। बड़ा डरा, सोचा गुरु अभी आएंगे और मुझे डांटेंगे, क्या करूं, प्रतिमा को कहीं छुपा दूं। सोच ही रहा था, सामने से गुरु आते दिखाई दे दिए, क्या करें। तर्क से काम लिया, हाथ में टूटी हुई प्रतिमा थी, दोनों हाथ पीछे कर लिए

0: गुरु से बातें करने लगा। गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जो सूरज सुबह उगता है अस्त क्यों हो जाता है? गुरु ने कहा, बेटा ये तो समय का नियम है, प्रकृति का नियम है, जो जितना समय लेकर आता है समय के बाद चला जाता है। ठीक है गुरुदेव, दूसरा प्रश्न, फूल जो सुबह खिलता है शाम को मुरझा क्यों जाता है? गुरु ने कहा, इसका समाधान भी वही है, फूल जितना समय लेके आता है एक समय के साथ में उसको मुरझाना होता है। तीसरा प्रश्न फिर उस बच्चे ने किया, गुरुदेव कोई बच्चा जन्म लेता है मर क्यों जाता है? गुरु ने कहा, बेटे हर एक के साथ में प्रकृति का नियम जुड़ा हुआ है, समय का, जो जितना समय लेके आता है सामने रहता है उसके बाद में चला जाता है। अब बालक ने साहस बटोरा, दोनों हाथ आगे किए, खंडित प्रतिमा दिखाई और कहा, गुरुदेव लगता है इस प्रतिमा का भी समय आ गया था। जैसे ही गुरु ने देखा एक बार तो भीतर में चोट सी पहुंची, ये क्या, वह प्रतिमा बहुत प्राचीन और गुरु को भी अपने गुरु के माध्यम से मिली थी। एक क्षण के लिए सहमे, साहस और धैर्य के साथ में कहा, बेटे कोई बात नहीं, मेरे तो जीवन का संध्याकाल सामने है लेकिन तुम्हारे सामने अभी पूरा जीवन है। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, परिस्थितियां आएगी और उस समय तुम इस बात को याद रखना कि जिसका जब जो समय आ जाता है वैसा हो जाता है और इससे शायद तुम धैर्य धारण कर सको, परिस्थितियों से अप्रभावित रह सको और अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। कहा जाता है उस बालक बोगोजू ने इस छोटे से सूत्र को पकड़ा कि जब जिसका जो समय आ जाता है वैसा हो जाता है, क्रिया करना है प्रतिक्रिया नहीं करना, और इस एक सूत्र की साधना करते हुए वह महान फकीर बन गया। आज भी उसकी जैन साहित्य में गाथाएं गाई जाती हैं। महानता किसी पद को प्राप्त कर लेना या अधिकार को प्राप्त कर लेने में नहीं है, महानता भीतर में पैदा होती है और उसके सारे बीज भीतर की शांति में निहित है। कहा जाता है कोई भी युद्ध होता है सबसे पहले वह मस्तिष्क में होता है और इसीलिए बाहर आता है। यदि हम मस्तिष्क को शांत रखना सीख लें, मन को शांत रखना सीख लें, तो सारी विद्याएं अनायास हम हस्तगत कर सकते हैं। हमारा प्रयत्न और पुरुषार्थ उस दिशा में जागे, इसी भावना के साथ ओम आराम।
1: श्रोतों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण, लेकिन पहले सुनिए ये संदेश।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेती हर अवस्थे। जानकारी का विषय होगा ग्वार की उन्नत किस्में। 7:20 पर कार्यक्रम मानस कान में आप सुन पाएंगे भाग संख्या 275। प्रातः 7:30 पर कार्यक्रम सुप्रभात में आज जानकारी के विषय होंगे वृक्षारोपण का महत्व, जीवन में श्रम का महत्व और एकता में बल। प्रातः 9:10 पर कार्यक्रम मरुमंगल में कलाकार होंगे कोहिनूर लंगा और साथी। 9:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। प्रातः 10 कार्यक्रम होगा आज के फनकार और प्रातः 11 आप सुन पाएंगे आपके फरमान।

Ayşe gittin ka program Git Bahar। 12:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। 12:50 पर कार्यक्रम खेत खलिहान में आज जानकारी का विषय होगा पोषक तत्व प्रबंधन में मृदा सूक्ष्म जीवों की भूमिका। दिन में 1:05 पर महिलाएं सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। संध्या 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। संध्या 6:05 पर कार्यक्रम होगा सरायकी। संध्या 7 बजे ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल और 7:45 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे। रात्रि 9:15 पर आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम सुगम संगीत और रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे जयपुर केंद्र से कार्यक्रम खेल जगत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानम् अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊनगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्ववायुदिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायुपरिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जूनमासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवाराज्ये 26,000 वैश्विकवायुदिवससम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानाम् आईसीसी 20x20 विश्वचषकक्रीडायां बर्मिंघम नगरस्य एज्वेस्टन नगरे ग्रुपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 64 पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं।

पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Lucknow and is scheduled to arrive at the Noida International Airport at 8:05 a.m. Following this, the first regular commercial flight from Noida to Bengaluru will also commence operations. The first flight from Jewar Airport to Lucknow will take off at 8 a.m. The National Testing Agency, NTA, has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education. Candidates can download their admit cards from NTA's official website, neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. In ICC Women's T20 World Cup opener, India defeated Pakistan by 64 runs in Group A match at Edgbaston in Birmingham last night. India set a target of 171 runs for arch rivals Pakistan. In reply, Pakistan were all out with 106 runs in 17 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: सुबह के 7:10 हुए हैं। किसान भाई सुने अपना दैनिक कार्यक्रम खेती हर वास्ते। जानकारी का विषय है ग्वार की उन्नत खेती।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करांगा ग्वार की खेती की। ग्वार अब आपना ठेंग क्षेत्र में सावनी की मुख्य फसल मानी जाए। बिरानी सिंचे दोनों क्षेत्र के मां किसान भाई बुआई करे, पर बात आ है कि ग्वार की बढ़िया बढ़िया किस्म लेगी किसान भाइयों आप बुआई करा तो ज़्यादा लाभ मिल सके। ग्वार की बढ़िया किस्म में HG2-20 है, RGC1002 है, RGC1066 जगन लाठी ग्वार के दिया, HG365 भी एक ग्वार की बहुत ही बढ़िया किस्म है। इनके अलावा RGC936 जगी परंपरागत पुरानी किस्म आपने क्षेत्र वास्ते बहुत ही बढ़िया मानी जाए, और RGC986 तो ए किस्म बढ़िया बढ़िया हम कोई भी एक लेगे हैरा आप बुआई करा अच्छी पैदावार ले सका। किसान भाइयों ग्वार की खेती ने फसल चक्र में अपन जरूर शामिल करना चाहिए, और फसल चक्र में शामिल करने के वास्ते अपन ने 3 साल को जो फसल चक्र अपनाना है, बिंग माँ जिया कणक भी जेड़ी तो किसान भाइयों ने बिंग माँ या सरसों भी जेड़ी अब ग्वार की बुआई बे कर सके, या फिर कपास अगले साल बीजे बे फिर पड़त रखे फिर ग्वार बीजे फिर तीसरे साल खेत ने पड़त रखगी और ग्वार बीजे तो वो एक फसल क्रम हो गयो। इंग माँ अपनी पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी, अपनी ज़मीन ने भी उर्वरा शक्ति बढ़ाने की एक ताकत मिलेगी। खेत के चुनाव की जहाँ तक बात है किसान भाइयों ग्वार की खेती भी है तो सब तरीके की ज़मीन में करी जा सके। क्षारीय समस्या भूमि या जगह पानी भरे डरे हुए ग्वार नहीं बीजना चाहिए। ग्वार की खेती सिंचित है सिंचित या दोनों ही परिस्थितियां में करी जा सके। बिरखा के बाद 1-2 जुताई और सुहागो लगा के खेत ने तैयार कर लेना चाहिए ताकि घास फूस नष्ट हो जाए बीहू बाद मापा खेत तैयार करके बुआई कर सका। सिंचित क्षेत्र में अगर किसान भाई बुआई करे तो बने इन बात को ध्यान रखना चाहिए कि रूणी करके या फिर बुआई करे। अगर टेम पर बिरखा नहीं हुए तो किसान भाइया ने जून जुलाई के टेम पहले पखवाड़े में जुलाई गए अच्छी गहरी रूनी देगी यार बुआई करना चाहिए। ग्वार के बाद दूसरी फसल लेनी हो तो जुलाई के अंत तक भी किसान भाई बुआई कर सके अगर कोई फसल दूसरी नहीं लेनी हुए तो। किसान भाइयों अब बात करा बीज और बीज की मात्रा बुआई की विधि। ग्वार की खेती के वास्ते परिस्थितियाँ के अनुसार 4-5 किलो प्रति बीघा की दर्शियों बीज काम में लेना चाहिए। ग्वार की बुआई ड्रिल या 2 पोरा विधि से करनी चाहिए और कतारों कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब किसान भाइयों खाद उर्वरक की बात आवे तो ग्वार के वास्ते बिया तो ज़्यादा खाद उर्वरक देने की जरूरत कौन ही होनी, पर फिर भी शुरू की बढ़वार के वास्ते अपन की न की उर्वरक देना चाहिए। और ग्वार के वास्ते 5 किलो नत्रजन 8-10 किलो फॉस्फोरस प्रति बीघा बुआई पहली गिर देना चाहिए। इनके वास्ते 50-62 किलो सुपर फॉस्फेट और 10-11 किलो यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से ड्रिल करना चाहिए। बिरानी ग्वार में फास्फोरस की मात्रा आधी दर्शियों काम में लेनी चाहिए। किसान भाइयों निराई गुड़ाई की जड़ तक बात है ग्वार के वास्ते अपन है निराई गुड़ाई इन तरह ध्यान रखना है। जे खेत में खरपतवार हुए तो निराई गुड़ाई करता रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आक्रिया फसल की 1 महीने की अवस्था से पहली संपन्न कर लेनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के वास्ते किसान भाई सक्रिय तत्व भी काम में ले सके, पर ईशु ज़्यादा बढ़िया आई बात रहेगी कि किसान भैया ने निराई गुड़ाई कृषि की सहायता शुरू करनी चाहिए, क्योंकि खरपतवार नाशी रसायन काम में लेने के बाद के माँ बठे दूसरी फसल को अंकुरण जो है वो प्रभावित हुए इन वास्ते ज़्यादा इंगमा सरसियों जो किया ज़्यादा प्रभावित हुए इंगा बाद में सरसियों बुआई करनी हुए तो वो बीज की मात्रा फिर किसान भैया ज़्यादा डालनी चाहिए।

0: अब किसान भाइयों सिंचाई की बात करा तो ग्वार की खेती ने बिजाई 3 या 4 हफ्ता के बाद गए अच्छी बिरखा नहीं हुए तो सिंचाई जरूर करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई बिरखा समाप्त होने पर अगस्त या सितंबर में कर देनी चाहिए। जे ग्वार के बाद रबी की फसल लेनी हुए तो 15 सितंबर के बाद सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके बाद में सिंचाई करने में फसल पाकने में देरी लेवेगी। तो इन त्रियाशियों आप इंगमा सिंचाई को भी ध्यान रखा और बिरखा दिरखा होती रहे तो सिंचाई की ज़्यादा जरूरत को नहीं होनी, फिर आपने सिंचाई न देने से भी आपने फसल जी किया पकाव ले सके। और इनके अलावा कीड़ा और बीमारी की रोकथाम टाइम पर करता रहना चाहिए। जियाँ ग्वार के हमारा चूसनिया कीट जगह है सबसे ज़्यादा नुकसान करे तो वाकि टाइम पर जानकारी रखा उपाय करा और रोकथाम करता रहे। ग्वार की फसल में तेलियो सफ़ेद माखी आंगो प्रकोप ज़्यादा हुए और आंगो होने पर बावेरिया बेशियाना 200 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करना चाहिए। और ग्वार की फसल में किसान भाइयों तेलियो सफ़ेद माखी और चैंपा नाम का कीट भी नुकसान करे तो आगे रोकथाम खातर आप जिया मेलाथियन 50 cc 300 मिलीलीटर लेस का या मिथाइल डिमेटोन 25 cc 250 मिलीलीटर लेस का तो हम कोई भी एक लेंगे उपाय करा रोकथाम करा। पर अब हूँ चालू राम राम सा राम राम।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती है नमस्ते। जानकारी का विषय था ग्वार की उन्नत खेती। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए अब सुनिए लोक भजन। आज कलाकार हैं प्रेमचंद।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। आज कलाकार थे प्रेमचंद। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त हमारे स्टोरी घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मानस गान में भाग संख्या 275। मुख्य स्वर हैं सुरेश वाडकर के।

सीता जी की खोज में सारा वानर समाज जंगलों की खाक छान रहा है, किंतु उनका कोई सुराग नहीं मिलता। वन वन भटकते हुए एक दिन सबको बड़ी प्यास लगी, किंतु पानी का कोई स्रोत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। हनुमान ने भांप लिया कि यदि पानी नहीं मिला तो सबके प्राण जाएंगे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर पृथ्वी के गर्भ में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गुफा के ऊपर अनेक पक्षी मंडरा रहे थे, अनेक उसमें प्रवेश कर रहे थे। हनुमान पूरे वानर समाज को लेकर उस गुफा में पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस गान में भाग संख्या 275। मुख्य स्वर थे सुरेश वाटकर के। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरत कट है। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:30:30 हुए हैं। श्रोताओं दीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज अपने रेडियो दोस्त मनोज खत्री का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वृक्षारोपण का महत्व, जीवन में श्रम का महत्व और एकता में बल है विषय पर। इन विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म लॉफर का ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

श्रोताओं, बात करते हैं कार्यक्रम में वृक्षारोपण के महत्व पर। श्रोताओं, वृक्षारोपण का अर्थ है पेड़ पौधे लगाना। वृक्ष मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे हमें शुद्ध वायु, फल, फूल, लकड़ी और औषधियां प्रदान करते हैं। पेड़ वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलित रहता है। श्रोताओं, वृक्ष वर्षा लाने में सहायक होते हैं तथा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम करने में भी वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेड़ पौधे पृथ्वी को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं तथा अनेक जीव जंतुओं को आश्रय भी प्रदान करते हैं। श्रोताओं, आज जंगलों की कटाई के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों और घरों के आसपास वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। यदि हम पृथ्वी को सुरक्षित और स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक पेड़ 100 पुत्रों के समान।

वृक्षारोपण होता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। श्रोताओं, लीजिए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, बात करते हैं जीवन में श्रम के महत्व पर। श्रोताओं, श्रम मानव जीवन का आधार है। श्रम के बिना किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। मनुष्य अपने परिश्रम और मेहनत के बल पर ही सफलता प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। श्रम का अर्थ है किसी कार्य को पूरा करने के लिए तन और मन से प्रयास करना। किसान खेतों में मेहनत करके अन्न पैदा करता है, मजदूर भवनों का निर्माण करते हैं, शिक्षक शिक्षा देते हैं और वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करते हैं। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में श्रम करके समाज की सेवा करते हैं। श्रोताओं, श्रम मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आसानी से कर लेता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि श्रम उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मेहनती व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है और अपने लक्ष्यों को हासिल करता है। श्रोताओं, राष्ट्र की प्रगति भी उसके नागरिकों के श्रम पर निर्भर करती है। जब सभी लोग ईमानदारी और लगन से कार्य करते हैं तब देश विकास की ओर बढ़ता है। इसलिए हमें श्रम का सम्मान करना चाहिए और किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अंत में कहा जा सकता है कि श्रम जीवन का अमूल्य धन है। यह सफलता, सम्मान और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः हमें सदैव परिश्रमशील बनकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म अवतार से ये गीत। आवाज़ है किशोर कुमार और साथियों की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोतों, कार्यक्रम के आखिर में बात करते हैं एकता के बल पर। श्रोतों, एकता का अर्थ है मिलजुल कर रहना और एक साथ कार्य करना। जब लोग आपसी भेदभाव भूलकर एक लक्ष्य के लिए साथ आते हैं तो उसे एकता कहते हैं। एकता में अपार शक्ति होती है, इसलिए कहा गया है एकता में बल है। श्रोतों, एकता मनुष्य को शक्ति प्रदान करती है। परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति एकता पर ही निर्भर करती है। एकजुट होकर लोग बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जिससे समाज में एकता होती है वह शांति, प्रेम और प्रगति बनी रहती है। एकता से लोगों में सहयोग की भावना बढ़ती है। किसी भी कार्य को मिलकर करने से वह सरल और सफल हो जाता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी देशवासियों की एकता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एकता के कारण ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। श्रोतों, एकता सफलता की कुंजी है। हमें जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। एकजुट समाज और राष्ट्र ही विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें सदैव याद रखना चाहिए कि एकता में ही बल है। श्रोतों, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म देवेश प्रेमी से ये गीत।
3: नफरत

विषय थे वृक्षारोपण का महत्व, जीवन में श्रम का महत्व और एकता में बल। फिल्म देश प्रेमी के गीत के साथ अपने दोस्त मनोज खत्री को कार्यक्रम सुप्रभात संपन्न करने की दे इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 8 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमरीका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
6: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
5: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की

0: शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर

0: 46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के DNA में शामिल, वीर अर्जुन ने PM के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
2: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं जी सरबराह 7 कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जेवर में नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। अमेरिका और ईरान ने 107 दिन से जारी जंग खत्म करने और आबनाए हुरमुज खोलने के मकसद से एक समझौते को कतई शक्ल दी है। आबनाए हुरमुज एक तंग आबी गुजरगाह है जहां से आलमी तेल सप्लाई का पांचवा हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल पर एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। इस अमन माहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, जहां ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज इस माहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद जुमे को खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत पूरे खित्ते में अमन सलामती कायम होगी। इस माहदे में अमेरिका और ईरान से कहा गया है कि वो ईरान की न्यूक्लियाई अफजूदगी और उसकी इंतहाई ताकतवर यूरेनियम के खात्मे पर 60 दिन के अंदर अंदर मुज़ाकरात करें। ईरान की कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल ने कहा है कि लिबनान समेत सभी महाजों पर फौजी कार्रवाई आज रात से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। खबरों के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी आ गई है। ब्रंट खाम तेल में आज सुबह 4% की कमी वाकई हुई, जबकि अमेरिका का वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट 4.6% से भी ज़्यादा गिर गया। इधर एशिया में स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। दुनिया के रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते का खैर मकदम किया है और इसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है जिससे मगरबी एशिया में अमन की बहाली में मदद मिल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी स्लोवाकिया के सदर पीटर पिरेगिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद स्लोवाकिया के दो रोज़ा सरकारी दौरे पर कल रात ब्रतिस्लावा पहुंचे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का एक अहम मौका फराहम करता है और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के नए मौके तलाश करने में मददगार साबित होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा कि वह स्लोवाकिया के सदर पीटर पिलिगिरिनी और वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिको के साथ सूदमंद मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद से किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का इस मुल्क के लिए यह पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म की यह दौरा अप्रैल 2025 में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया के दौरे के बाद हो रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल रात राजधानी ब्रतिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के वजीर खारजा जुराज ब्लेनर ने शानदार खैर मकदम किया। किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का स्लोवाकिया का यह पहला सरकारी दौरा है। ब्रतिस्लावा पहुंचने पर गैर मुकीम भारतीय बिरादरी के लोगों ने नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। स्लोवाकिया के मौसीकारों ने वज़ीर-ए-आज़म के पहुंचने पर वंदे भारत वंदे मातरम की धुन बजाई। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज से स्मृति एम पलुरती की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू हो रही है। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में जी

0: तकरीबन के सभी रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। अरकान के अलावा फ्रांस ने आउटरीच शराकतदार मुल्कों की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, जनूबी कोरिया, कतर, सऊदी अरब, मुल्क शाम, यूक्रेन और मुत्तहदा अरब अमारात को भी मदऊ किया है। ये 13वां मौका होगा जब भारत एक शराकतदार मुल्क की हैसियत G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल आउटरीच इजलास में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की शिरकत से आलमी जुग्राफियाई सियासत में भारत का अहम रोल उजागर होता है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हो रही है जब दुनिया को जुग्राफियाई सियासी कशीदगी, माशी गैर यकीनी सूरत हाल और नई टेक्नोलॉजी की तेज़ी से इर्तका के चैलेंज दरपेश हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जैसे ही इजलास शुरू होगा तो आलमी अदम तवाज़ुन को कम करना मेज़बानी करने वाले मुल्क की G7 सदारत सबसे अहम तरजीह बन जाएगा। सरबराह कॉन्फ्रेंस के सरकारी फ्रेमवर्क के मुताबिक G7 के रहनुमा जुग्राफियाई सियासी चैलेंजेस, बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती, बाहमी इख्तिसादी तरक्की और अहम आलमी बहरान पर तबादले ख्याल करेंगे। ये तबादले ख्याल बंद कमरों में होंगे जो आज से शुरू हो रहे हैं। सरबराह इजलास में भारत की शिरकत आलमी जनूब की तरजीहात और तशवीश को उजागर करने के लिए एक मौका फराहम करेगी, जबकि अहम आलमी मसाइल पर भी मुज़ाकरात होंगे। फ्रांस से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में वाक़ नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाज़ों की खिदमात आज से शुरू हो गई हैं। जेवर हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए पहली परवाज ने थोड़ी देर पहले उड़ान भरा। इस परवाज में MLA धर्मेंद्र सिंह 20 खवातीन समेत 172 किसानों के साथ हैं। ये वो किसान हैं जिनकी ज़मीन एयरपोर्ट के लिए हासिल की गई थी। लखनऊ पहुंचकर ये किसान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इंडिगो एयरलाइन की पहली परवाज लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट के लिए सुबह 7:05 पर रवाना हुई। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली बाकायदा कमर्शियल परवाज चलाई जाएगी।
2: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का इफ्तिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी तकरीबन 3300 एकड़ जमीन हासिल की गई है। पहले मरहले में 1,20,00,000 मुसाफिरों की सलाहियत वाले इस एयरपोर्ट से मुस्तकबिल में 22,50,00,000 मुसाफिरों को सहूलियत फराहम की जा सकती है। ये मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी रियासतों के लिए एक नई हवाई कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो की परवाजें लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज्यादा शहरों के लिए शुरू होने वाली हैं। दीगर एयरलाइंस की परवाजें भी जल्द शुरू होंगी। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए हवाई अड्डे से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनमें 90 जनरल और 10 डबल डेकर बसें शामिल हैं। लखनऊ से खबरनामे के लिए सुशील चंद्र तिवारी।
0: इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने अंडर ग्रेजुएट तिब्बी तालीम के दाखिले के लिए NEET UG के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार NTA की सरकारी वेबसाइट neet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NEET UG के दोबारा इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराए जाएंगे, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होंगे। NTA ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते की तफसीलात की तस्दीक करें। उसने उम्मीदवारों को ये भी मशवरा दिया है कि वह हिदायत पर अमल करें और साथ ही इतिलानामे पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। भारत में पिछले 12 साल के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के वसूलों पर मबनी काबिल ज़िक्र तब्दीलियाँ हुई हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए गए। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के मौजू के उन्वान से एक खसूसी फीचर नशर कर रहा है। आज हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के तसव्वुर के साथ जदीद बुलंद ढांचा तामीर करने के सरकारी इकदाम पर नजर डालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: किसी मजबूत और जदीद मुल्क की तामीर आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे पर मबनी होती है। पिछले 12 साल में भारत ने यकसर तब्दीली का एक बेमिसाल सफर तय किया है, जिसके तहत बुनियादी ढांचे पर सरकारी अखराजात में 6 गुना इजाफा किया गया है। इस तरह 2014-15 ये अखराजात 2,00,000 करोड़ रुपए के थे,

0: जबकि रवा माली साल में ये अखराजात 12.2 लाख करोड़ रुपए के हो गए। मुल्क के शहरी ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाब लाया गया। भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क को तकरीबन 5 गुना तौसी दी गई। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली की अलीशा ने, जो दिल्ली मेट्रो से रोजाना सफर करती हैं, अपने सफर के तजुर्बे के बारे में बताया।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत में आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। कौमी शाहराह नेटवर्क में इजाफा करके इसे 1,46,000 किलोमीटर से ज़्यादा कर दिया गया है। रेलवे के शोबे में भी बड़ी तब्दीलियां नुमाया हैं। भारतीय रेलवे से मुतालिक बजट में तकरीबन 9 गुना इजाफा कर दिया गया है, जिससे इस पूरे नेटवर्क में जदीदकारी की गई है और मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया की गई हैं। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए लखनऊ से वंदे भारत की एक मुसाफिर पूजा ने कहा कि ये ट्रेन बहुत आरामदेह है, जिससे वक्त की भी काफ़ी बचत होती है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि सफर करने में टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे भी पसंद आए, क्योंकि उसकी वजह से यात्रियों की सुरक्षा बनी रहती है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
3: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 19वां मुंबई बैन अलाक्वामी फिल्म फेस्टिवल MIFF आज से शुरू हो रहा है। शाम को मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में फिल्म फेस्टिवल की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी, जबकि सुबह से ही फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इस साल मुकाबला जाती जुमरे में 52 बैन अलाक्वामी और 92 कौमी फिल्मों में समेत कुल 144 फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि 13 मुल्कों के फिल्म साज फिल्म फेस्टिवल में नुमाइंदगी कर रहे हैं। गैर मुकाबला जाती जुमरे में शिरकत करने वाले 46 मुल्कों की 106 बैन अल-अक़वामी फिल्मों और 96 कौमी फिल्मों समेत कुल 202 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फौजदारी तहकीकती महकमे ने तृणमूल कांग्रेस के मेम्बर पार्लियामेंट अभिषेक बैनर्जी से 9 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की है। ये पूछताछ उनसे पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के जाली दस्तखत के एक केस में उनके मुबैना तौर पर मुलविस होने के सिलसिले में की गई है। बर्मिंघम में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के ग्रुप ए के पहले मैच में भारत ने कल रात रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे, जिसमें स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आकाशवाणी के खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नष्ट होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे योगा से मुतालिक प्रोग्राम नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन सेहत और योगा से मुतालिक इस मौजू पर अपने सवाल टेलीफोन नंबर पर पूछ सकते हैं। 01-233-1781, 01-237-1117-116, 01-237-1716। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
4: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे फ्रांस को अहमियत के साथ शाया करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत टेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने आलमी सरमायाकारों, महققین और सनअतकारों को भारत के साथ मिलकर काम करने की दावत दी। भारत के खलाई शोबे में नुमाया तब्दीली ये हमारे कौमी शऊर का अहम हिस्सा बन चुकी है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
3: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जौहर में नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈز جاری کر دیے ہیں۔ یہ امتحانات اس مہینے کے 21 تاریخ کو ہوں گے اور

0: में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे जयपुर केंद्र से कार्यक्रम समाचार तरंग।
2: सभी का बहुत बहुत स्वागत।

0: मैं हूं आपके साथ सालेहा। श्रोताओं, जैसे जैसे हम 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर बढ़ रहे हैं, पूरे देश में योग के प्रति जागरूकता और उत्साह का माहौल भी बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धीरज जैफ, वरिष्ठ आचार्य, फिजियोलॉजी विभाग और प्रभारी अधिकारी योग ओपीडी एसएमएस अस्पताल जयपुर। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका आज के कार्यक्रम में आकाशवाणी स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: आइए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि योग किस तरह हमारे जीवन को बेहतर और संतुलित बनाता है।
1: योग हमारे प्राचीन समय की विधि है, जो हजारों हजारों साल के ऋषियों की रिसर्च के बाद में उन्होंने योग का आविष्कार किया। योग मूल रूप से एक आध्यात्मिक मार्ग रहा है, जो एक ईश्वर प्राप्ति का साधन रहा है, पर अभी वर्तमान में आध्यात्मिक के साथ में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत अति आवश्यक है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा करके ये बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है कि योग स्थापित हुआ है और जो हमारा योग है वो हमारे पास ही रहा है, बाहर नहीं गया है। नहीं तो बाहर से जाके रिटर्न होके जब वहाँ से आता है तो योग से जैसे योगा हो गया योगा से, पर वो नहीं रहा कि आज योग हमारे देश में वापस से पुनः स्थापित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण से। और ये योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी है।
0: डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग का ये 11वां संस्करण है और पूरी दुनिया में ये एक वैश्विक स्वास्थ्य उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो खुद को सेहतमंद और चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ही योग की प्रासंगिकता आज के जीवन में पहले से ज़्यादा क्यों हो गई है?
1: अभी हमारी जो जीवन शैली है, कंपिटेटिव युग है, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए आपको, और आर्थिक युग हो गया है, तो इस युग में भागदौड़ बहुत हो गई है, समय व्यक्ति के पास कम है, तो कम समय के लिए योग सबसे लाभप्रद है कि आप कम समय में कम संसाधनों से आप स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं इसलिए। और दूसरा जो स्ट्रेस, उसमें योग बहुत ही लाभकारी है, तो शारीरिक स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आज के संदर्भ में योग बहुत महत्वपूर्ण है।
0: सर, आयुष मंत्रालय की ओर से इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है उसे रखा गया है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, और योगा फॉर हेल्दी एजिंग के साथ ही 15 जून से 21 जून तक पूरी तरह से योग सप्ताह को ही इस सप्ताह को योग सप्ताह के रूप में डेडिकेट किया गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं?
1: योग के बारे सब लोग जानते हैं, पर जैसा कि मनुष्य की प्रकृति है कि वो धीरे धीरे उसको भूल जाता है, इसलिए ये योग सप्ताह है तो वापस से पुनः उसको याद दिलाने के लिए कि योग जीवन के लिए कितना लाभप्रद है, और जो लोग अब तक योग से नहीं जुड़े हैं नए लोग, उन लोगों को जोड़ने के लिए ये योग सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। और जो शिथिलता काम करते करते जीवन में, सामान्य जीवन में शिथिलता आ जाती है, थोड़ी स्लोनेस आ जाती है, उसको वापस से स्थापित करने के लिए, वापस से जगाने के लिए योग सप्ताह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक हैं।
0: और योग सप्ताह के अलावा ही 100 दिन पहले ही काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो जाता है और कई जगह सामूहिक योगाभ्यास शिविर लगाए जाते हैं, और कई बार ऐसा लगता है अकेले की बजाय अगर मिलजुल कर या सामूहिक रूप से योगाभ्यास करें तो थोड़ी मोनोटनी भी ब्रेक होती है और वो दिलचस्प भी लगता है।
1: निश्चित रूप से योग अकेला जब व्यक्ति रोज करता है तो करते करते एक मोनोटोनसता उसका हो जाता है, तो जब सामूहिक योग करते हैं और जब साथ में योग करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरे से आपको सीखने का मिलता है और आपका जो आलस्य है वो दूर रहता है, इसलिए सामूहिक योग करना चाहिए बीच बीच में ताकि आपकी निरंतरता बनी रहे।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि तनाव और चिंता हमारी जिंदगी का हिस्सा ही हो गई।

0: है और बहुत दौड़ती भागती जिंदगी है, ऐसे में इन समस्याओं का समाधान अगर खोजें तो उसमें योग कितना प्रभावी है?
1: देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि योग एक आध्यात्मिक मार्ग रहा है, पर वर्तमान में देखें तो आध्यात्मिक साथ में पुराने ऋषि मुनि इसलिए योग करते थे कि वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक साधना करें, इसको साधना करें। इसलिए ये हेल्थ है, योग का एक बाय प्रोडक्ट है। इसके द्वारा हम जो स्ट्रेस है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसको प्राप्त करने में योग अति महत्वपूर्ण है। जैसे प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इसके लिए बहुत ही ये लाभप्रद है। और जो आज की जीवन शैली है उसमें कम समय में और स्ट्रेस को, तनाव को कम करने के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि जीवन में आप थोड़ा बहुत भी समय निकाल पाते हैं, प्रतिदिन 15 से 20 मिनट भी कुछ प्राणायाम आप कर पाते हैं, मेडिटेशन आप नियमित कर पाते हैं, तो आपको स्ट्रेस कम करता है और आपकी जो कार्यशैली है और आप उसमें वृद्धि करता है।
0: डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बार बार एम्फेसिस किया कि ये सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि इससे मानसिक स्पष्टता भी आती है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ और भावनात्मक संतुलन में भी ये बहुत ही मददगार है, लेकिन कुल मिलाकर आती है बात अनुशासन की। तो इसके नियमित रूप से करने पे ही इसके फायदे सामने आते हैं, तो किस तरह प्रेरित किया जा सकता है नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, कि वो उनका रुझान योग की ओर बढ़े?
1: निश्चित रूप से जो अपने साप्ताहिक कार्यक्रम ये करते हैं तो उससे नई पीढ़ी को रुझान मिलता है, उसको एक मार्ग मिलता है और उसको हम बार बार उसको ये समझाने की आवश्यकता है कि, और वो समझ भी रहे हैं। आज के नए पीढ़ी वाले योग भी बहुत कर रहे हैं कि उनके पास समय कम है तो योग करते हैं और योग उनके लिए लाभप्रद भी हो रहा है। तो दुनिया में कोई भी व्यायाम ऐसा नहीं है जो तीनों स्वास्थ्य आपको एक साथ देता हो, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, तीनों स्वास्थ्य आपको एक साथ मिलते हैं। बाकी आप जिम जाते हैं तो शारीरिक आपकी हेल्थ ठीक रहती है, बॉडी बिल्डिंग होती है, पर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो योग एकमात्र है, तो उसको नियमित करने से, एक तो डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है योग के लिए कि नियमित योग करना चाहिए। जब आदमी एक बार योग शुरू कर प्रारंभ करता है तो प्रारंभ भी लगता है थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे करते जब उसको आनंद आता है, नियमित करता है, तो एक समय एक तय होना चाहिए आपका। अर्ली मॉर्निंग आपको घर से निकलने से पहले आप योग करें। कुछ लोग हैं समय नहीं मिलता, शामकाल भी भोजन से पहले योग कर सकते हैं, परंतु प्रातःकाल योग करना ठीक रहता है, आप फ्री रहते हैं, आपका शरीर ठीक रहता है, मन भी शांत रहता है। तो एक समय तय करें और नियमित योग करें। योग निरंतरता है, योग आराम से करने की चीज़ है, योगासन स्नेह स्नेह आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना। इसलिए हरी और करी ये इसमें नहीं चलेगा, योग को आराम से करना है, मानसिक स्वास्थ्य के साथ में करना, आनंद के साथ में करना है, तो योग का बहुत ही लाभ प्राप्त होगा।
0: जी, अभी अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सी बीमारियां भी हमारी जीवन शैली का एक तरीके से हिस्सा ही बन गई है, चाहे वो हृदय रोग की बात हो, मधुमेह हो या मोटापा हो, हम इन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। तो ऐसे में इन बीमारियों के दुष्प्रभाव हैं, उन्हें कम करने में योग की क्या भूमिका है?
1: जैसे मैंने अभी कहा कि हरी और करी, हमारा खान पान भी करी हो गया है और बहुत जल्दबाजी में है, तो ये लाइफ मॉडिफिकेशन जब हुआ है तो ये सारी डिजीजेज हमारी लाइफ में आई हैं प्रोग्रेस के साथ में। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और बहुत सारी जो कैंसर वगैरह है, ये सारा खानपान से हमारा और अपने रूटीन से सारी डिजीज, स्ट्रेस हमारा बहुत बड़ा है, डिप्रेशन बहुत बड़ा है, ये सारी जो बीमारियाँ पहले कभी नहीं थी अभी बीमारियाँ बढ़ी हैं। तो निश्चित रूप से योग उसमें बहुत लाभप्रदक है। माइग्रेन की समस्या बहुत बढ़ रही है, ऐसे में हम योग उपड़ी में मरीज हमारे पास आते हैं, उनका नियमित इलाज भी करते हैं, रिसर्च भी करती है। पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ी है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। तो इनमें योग बहुत फायदेमंद है, नियमित योग करने से, प्राणायाम करने से, सूक्ष्म यौगिक व्यायाम करने से, और कुछ आसन हैं पर्टिकुलर डायबिटीज वगैरह में, पर इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने टेबलेट खाई, इंसुलिन का इंजेक्शन लिया, आपका ब्लड शुगर ठीक हो गया, ऐसा नहीं। बहुत समय चाहिए, धैर्य चाहिए। निश्चित रूप से ये प्रिवेंशन भी है, यदि आप पहले से कर रहे हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी, और यदि हो गई है तो उसको क्योर कर सकते हैं। कुछ दवाइयां आपकी डॉक्टर सलाह लेके उसकी डोजेस कम हो सकती हैं, मेंटेनेंस में उसमें बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, योग उसमें बहुत ही लाभदायक है।
0: यानी कुल मिलाकर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्टर साहब, आपने समग्र स्वास्थ्य की बात कही, तो क्या नियमित योगाभ्यास करने से इन दवाइयों पर निर्भरता भी कम हो सकती है?
1: निश्चित रूप से, जैसे डायबिटीज़ है तो पेशेंट यदि अपने खान पान पर ध्यान रखे, मीठा या शुगर कम रखे, तो निश्चित रूप से जो दवा ठीक रहती है, और यदि वो उसका घूमना फिरना रेगुलर है, व्यायाम इसका निश्चित एक मापदंड पे रहता है, और यदि योग करता है, देखिए योग में क्या होता है, निश्चित एक आसन वगैरह हैं वो अच्छे रहते हैं, तो इसमें डेफिनेटली दवाएँ कम हो सकती हैं और लाभ मिलता है उसमें।
0: डॉक्टर साहब, अभी हमने नई पीढ़ी की बात की और हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर आजकल के युवाओं को तनाव हो जाता है, चाहे पढ़ाई का हो

0: या कॉम्पिटिटिव एज की बात करें या करियर को लेकर और अवसाद में भी चले जाते हैं, ऐसे में योग इनकी किस तरह मदद कर सकता है?
1: देखिए, कुछ प्राणायाम करें, कुछ शारीरिक व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम जिसको कहते हैं, और मेडिटेशन करें, और कम समय में आप आजकल आप वर्क स्पेस पे भी योग कर सकते हैं। आप जो सीट पे बैठे बैठे भी आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम अगर कर सकते हैं, बीच बीच में जिनके लॉन्ग सिटिंग रहती है, बहुत स्ट्रेस का काम रहता है, बहुत टारगेटेड इनका रहता है, तो वहाँ भी आप ऑफिस में भी योग कर सकते हैं, आजकल ऐसे चल रहा है। तो बीच में आप कुछ समय रिलैक्स कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, खाने के 2 घंटे बाद कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, खाने के ठीक बाद नहीं करें, सुबह मॉर्निंग में करें, तो थोड़ा समय अपने को निकालना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि यदि आपको लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो आपका शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, कि पहला सुख निर्गुणिक है, बाकी सब व्यर्थ है माया। तो यदि आप स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप कितने भी हैं एनर्जेटिक हैं तो आप लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। इसलिए योग को लाइफ में अपनाइए और स्वस्थ रहिए।
0: इसके साथ ही आपने बात की कि चाहे योगासन हो या फिर श्वास व्यायाम हो या फिर संक्षिप्त ध्यान, अगर सुबह समय नहीं मिलता तो इन्हें दिन में किसी भी समय किया जा सकता है।
1: निश्चित रूप से कि प्रातःकाल का समय ठीक रहता है, आपके पास समय रहता है, घर से निकलने से पहले आप फ्रेश रहते हैं, पर कोई बात नहीं, यदि प्रातःकाल नहीं कर पाए तो आप इवनिंग में जब वापस आप घर पे लौट के आए तब भी आप भोजन करने से पहले आप कर सकते हैं, और वहाँ भी समय नहीं मिले तो आप ऑफिस में जब भी समय मिले आपको, खाने के तुरंत बाद नहीं करें, खाने के 2-3 घंटे बाद में कुछ प्राणायाम है, दीर्घ श्वसन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, और कुछ देर का ध्यान है, आप बैठिए, आप बैठे बैठे ध्यान कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। तो जब भी आपको समय मिले योग कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ में बनाएं कि नियमित योग करना है तो सब ठीक रहता है।
0: डॉक्टर साहब, आप क्या सलाह देंगे कि क्या इसे ऑनलाइन सीखा जा सकता है और प्रैक्टिस किया जा सकता है या इन पर्सन जाने में ही इसका ज़्यादा फायदा है?
1: देखिए, ऑनलाइन में आप एक मार्गदर्शन ले सकते हैं, एक आपको आइडिया मिल जाता है, पर बिना गुरु के आप योग नहीं करें। ऑनलाइन ऑनलाइन देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास कई आते हैं कि सर हमने ये आसन किया था, हमारे बैकएक हो गया, हमारी ये प्रॉब्लम होगी, हेडक हो गया, इसलिए ऑनलाइन नहीं करें, किसी भी योग्य गुरु के सानिध्य में योग सीखें, फिर योग आपको करना चाहिए।
0: योग को लेकर कई तरह के प्रयोग भी किए जा रहे हैं। हाल ही में हवाई यात्रा के लिए भी योग प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे यात्रा संबंधी तनाव कम होता है, कई बार रक्त संचार जो बढ़ जाता है उसमें भी सुधार होता है। तो इसे लेकर आपका क्या कहना है? क्या हवाई यात्रा के दौरान भी योग से सहायता मिलती है?
1: योग आप कहीं भी कभी भी कहीं कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। हवाई यात्रा में यदि आप जा रहे हैं तो दीर्घ श्वसन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, और श्वास क्रियाएं आप कर सकते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं। स्ट्रेस आपका रहता है उसमें तो आप तो थोड़ा सा मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, कोई एंजाइटी रहती है, कुछ को फोबिया रहता है, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, और कुछ हाइट पे जाने पे कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसमें प्राणायाम वगैरह ये मेडिटेशन बहुत निश्चित रूप से लाभकारी है।
0: सर, एक सवाल ये रहेगा कि क्या अलग-अलग आयु वर्ग के लिए या पुरुष और महिलाओं के लिए भी योगासन कॉमन है या इसमें भी कुछ फर्क होता है?
1: देखिए, 8 साल की उम्र के बाद में बच्चा जब खेलता तो ठीक है, 8 साल के बाद में 60 साल तक आप कभी भी जब आपका शरीर काम कर रहा है तो आप योगासन आप कर सकते हैं। कुछ आसन हैं जो महिलाओं के लिए वर्जित हैं, जैसे मयूरासन वगैरह है, तो वो ऐसे आसन महिलाओं के लिए वर्जित है, बाकी और सब आसन कर सकते हैं। तो कुछ वर्जित आसन वो नहीं करें महिलाएँ, और मासिक धर्म के समय कुछ आसन हैं आपको वो नहीं करने चाहिए उस समय, बाकी पूरे समय में ऐसा जेंडर वाइज नहीं है कि वो मेडिटेशन भी कर सकती हैं, योग भी कर सकते हैं, पर जो आसन हैं जो उनसे नुकसान हो सकता है वो आसन नहीं करें।
0: और अंत में हम आपसे ये कहेंगे कि स्वस्थ और संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने के लिए योग की बड़ी भूमिका है, इसे लेकर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जैन, मैंने अभी कहा कि यदि आप निरोगी हैं तो ठीक है, इसलिए पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब व्यर्थ माया, इसको ठीक कर ले रे भाया, नहीं तो बिगड़ जाएगी तेरी काया।
0: बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक अंदाज में आपने अपना संदेश हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। हमारे अतिथि डॉक्टर धीरज जैफ का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने विचारों से, अपनी बातों से हम सभी को समृद्ध करने के लिए। और श्रोताओं, आपसे यही अपील है कि योग दिवस 2026 पर हम सब मिलकर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर सकारात्मक कदम बढ़ाएं। इसी संदेश के साथ अनुमति आपको बता दें, कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग सुदर्शन नाहर, संपादन माधुरी वशिष्ठ, प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे जयपुर केंद्र से कार्यक्रम समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत। चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। श्री ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। होर्मुज से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा, युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, इनोवेटर, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है कि आगामी खरीफ सीजन के लिए राज्य में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मौजूद हैं। जयपुर में कल कृषि और सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक के दौरान श्री शर्मा ने कहा कि अच्छी पैदावार के लिए किसान मिट्टी की जांच के आधार पर और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से ही उर्वरकों का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए, ताकि किसानों की वास्तविक जरूरत का सटीक पता चल सके। बैठक के दौरान उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी राज्य में खाद की निर्बाध आपूर्ति का पूरा भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही कृषि पर्यवेक्षकों को गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए

0: देश भर में 700 सी मार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में हुई दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। इन सी मार्ट को अच्छी व्यापारिक संभावनाओं वाले स्थानों पर खोला जाएगा ताकि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को आसानी से बाजार मिल सके। बैठक में महिला उद्यमों को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण विकास सचिव ने योजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लखपति दीदी, सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य जैसी श्रेणियों में पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जयपुर के सुव्यवस्थित विकास, स्वच्छता और सौंदर्यकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे देश के मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समन्वित कार्य योजना के साथ मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर के विकास, स्वच्छता और सौंदर्यकरण को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजधानी में कचरा संग्रहण, परिवहन और इसके वैज्ञानिक निस्तारण के लिए बेहतर कार्य योजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने खुले में कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही मानसून सीजन को देखते हुए जयपुर में जलभराव रोकने और नालों की सफाई के लिए समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। आंधी और बारिश का दौर जारी रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। रविवार को जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा और टोंक सहित कई शहरों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। दौसा और चित्तौड़गढ़ में तेज अंधड़ से पेड़ गिरने के समाचार हैं। और ब्यौरा हमारे जयपुर संवाददाता से।
1: बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक वर्षा 44 मिलीमीटर जयपुर के चौमू में दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के 7 शहरों में अधिकतम तापमान अब भी 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। फलौदी 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं सिरोही में सबसे कम 22.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। न्यूज रूम से मैं जयकिशन शर्मा, आकाशवाणी समाचार जयपुर।
0: हनुमानगढ़ में आज सुबह तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। इसके साथ ही जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। जिले में हुई बारिश से किसान नरमा, कपास और धान की फसल को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के थीम पर विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल पाली जिले में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान स्थानीय सांसद पीपी चौधरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन नीतियों का सीधा लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने कम प्रीमियम वाली छोटी बीमा योजनाएं शुरू कर आम जन को बड़ी राहत दी है।
2: गरीबों की बात करें तो उनके लिए विभिन्न तरह की जो योजनाएं, बीमा योजना लेके आए हैं, जो 12 रुपए की भी है, 424 रुपए की भी है, इस तरह से छोटी छोटी अमाउंट की बीमा योजना ला कर करके उनके घरों में एक सुरक्षा प्रदान की है फाइनेंशियल। और उसके साथ साथ आज देखेंगे विश्व में भारत जो है आज एक नंबर पे है इस मामले में खाद्य सुरक्षा अपने नागरिकों को देने का। और आने वाले टाइम में 2029 तक 5 करोड़ घर देने का टारगेट, और यही नहीं पानी के लिए हर घर नल के द्वारा पानी, इसके लिए करीब 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार।

0: चार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत। चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ोन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9:10 और 50 सेकंड हुए हैं। डीजे श्रोताओं सुनिए।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ोन EIR पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9:10:50 हुए हैं। डीजे श्रोताओं, सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का दैनिक कार्यक्रम मरुमंगल। आज कलाकार हैं कालूराम प्रजापति।

0: रोटा भरियो सगड़ा साथी परण्या में तो रहो खवा रोटा भरियो।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम मरुमंगल आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज कलाकार हैं कालूराम प्रजापत और साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का दैनिक कार्यक्रम मरुमंगल। आज कलाकार थे कालूराम प्रजापत और साथी। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत सभी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बाबू के इस गीत के साथ। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। गीत मजरूर सुल्तानपुरी का है और संगीत राजेश रोशन का।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और नंदा को। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और शुरू में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोतों, कार्यक्रम फिल्म संगीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को, फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

शो तो लीजिए, सुनिए फिल्म मधुमति से ये गीत। आवाज़ है मुकेश की, गीत शैलेंद्र का है और संगीत सलील चौधरी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंतिम में एक बार फिर से मुकेश को। फिल्म का नाम है 10 नंबरी। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोतों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर। प्रातः के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। श्रोतों, आज के हमारे फनकार हैं किशोर कुमार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म कर्ज से। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। गीत अनजान का था और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोतों, जब सुनिए किशोर कुमार को फिल्म कलाकार में।

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: एक दो तीन हो जाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म शोले में किशोर कुमार को। श्रोताओं, कार्यक्रम आज के फनकार आप कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज के हमारे फनकार हैं किशोर कुमार।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: श्रोतों, लीजिए सुनिए फिल्म धर्मात्मा से ये गीत। आवाज है किशोर कुमार की, गीत इंदिवीर का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

मेरे जीवन साथी, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म में किशोर कुमार को। गीत मजरू का था और संगीत RD बर्मन का। श्रोताओं, कार्यक्रम आज के फनकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आज के हमारे फनकार हैं किशोर कुमार।

शो तुम अभी आप सुन रहे थे फिल्म अंदाज का ये गीत। लीजिए सुनिए फिल्म राजपूत से ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म कटी पतंग से गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और सुरों में ढाला है आर डी बर्मन ने। आवाज है किशोर कुमार की।

श्रोताओं, फिल्म कटी पतंग के इस गीत के साथ कार्यक्रम आज के फनकार संपन्न करने की अपने दोस्त मनोज खत्री को दे इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। आज के फनकार थे किशोर कुमार। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अलका याग्निक और मनहर उदास के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है जान और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारा।

विशाल बारासा, विकास, रोशनी और शगुन बारासा ने, पद्मा टाकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगला बैन शाह और राजेंद्र जी शाह ने, पिंगावाला चौक से पिंगावाला चौक गोरिया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, पलारी छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है नितेश कुमार देवांगन ने, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मन्नू, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने।

इन्हीं आवाज़ों में आइए सुनते हैं एक और नगमा। फिल्म का नाम है जानवर, गीत समीर का है और संगीत आनंद मिलिंद का, और सुनना चाहा है आप सभी ने। चक 15 PS से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, आदर्श पाल जोसन, रोबिन सिंह जोसन, काबिल सिंह हुंदल, बलकार सिंह हुंदल, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ी किरोड़ी लाल, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम प्रकार सुरलर, चंडीगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है सतीश अनेजा ने और बिमला अनेजा ने।

लीजिए, अब सुनते हैं हरी हरन और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में फिल्म इतिहास का ये नगमा। गीतकार समीर हैं और संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक ने। केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम महिंद्रा, हीरा लाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दाइमा। गांव अरायन से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चलिया, अनूपगढ़ से भगवती देवी, ज्ञानचंद पूनम,

मेहुल रवि कुमार, चंदन अंकुश नेहा, कोमल माधव। अमरगढ़ शादुल शहर से इसी गीत को सुनना चाहा है कुलवंत मान ने, लखविंदर कौर, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनौर मान, हरविंदर मान, कुलविंदर कौर मान ने। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढोकिया, दोहिती, ईवा धारणिया। गांव हांडी खेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। तो लीजिए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

ढाई अक्षर प्रेम के, लीजिए सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की है, और इस गीत के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारन, मोनिका और मनीष सहारन, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, पीएस ग्वानकर, तुषार करांगले, फाजिलका पंजाब, खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी टिवांशी, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आशिफ शेख, ढाणी लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनाद खां, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार, सूरतगढ़ से बाबूलाल खत्री, सुगना देवी, सुरेश, आरती, पूजा, रजनी, रमन, रितिका, रुद्र, खुश गहलोत, अविनाश गहलोत, संदीप चंदेल, गांव हिप्पर सोगा से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख ने।

आइए अब सुनते हैं सोनू निगम के साथ कविता कृष्णमूर्ति को। फिल्म का नाम है बादल, गीत समीर का है और संगीत अनु मलिक का, और सुनना चाहा है आप सभी ने। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया ने गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू, अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चन, यशिका, कुलदीप गांधी, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, बीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश कुमार, सन्नी और जैमिन भावसार ने, व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, मिसेस संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही ने, बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, चक तो 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विरक, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव, जिला बारा से कवाई सालपुर, जिला बारा से राज सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है तलाश। गीत के बोल समीर के हैं और धुन बनाई है संजीव दर्शन ने, और इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैज़ल इमाम ने, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीज़ा प्रवीण ने। चक साथ डीबीएन भादू वाली ढाणी से टेकचंद चारण, संतोष देवी, सत्यप्रिय चारण, जय सिंह चारण, बिटिया योगेश्री, रणजीत सिंह सुथार, गुरदेव सिंह भगानिया, हरनेक सिंह भगानिया, कृष्णलाल राहड़, मुजफ्फरनगर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, चक 5 एमडी पत्रोड़ा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मंगल जगानल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल, जिला रतनाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने।

फिल्म कुरुक्षेत्र में आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को। गीतकार देव कोहली हैं, संगीतकार हिमेश रेशमिया, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान ने, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान ने। पायला कला जिला बालोतरा से मोहन लाल प्रजापत, माणक उषा, बाला देवी प्रजापत। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराजा कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष सूद, विश्वजीत। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जोहरी। जोधपुर से इसी गीत को सुनना चाहा है श्री राम जानी ने, गर्वित जानी ने। गंज डूडवारा से शमशूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डेकोस्ट्रो ने।

लीजिए अब सुनते हैं फिल्म गुनाह का ये नगमा। आवाज़ें अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की है और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल, निशा, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस गोवाणकर, निर्मला, विशाल, मेन बाज़ार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, सौरभ डोडी।

गांव सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया हाफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीम ने, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युधव कड़वासरा, किरसन मायल, हनुमान सहारण, कीड़ूराम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मगलानी, सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म एतराज़ का ये नगमा। आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की है और सुनना चाहा है आप सभी ने। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी। सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार, साई गायकवाड़, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही,

अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

आज दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुगम संगीत में कुछ गजलों का आनंद आप लेंगे 12:30 पर। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान 12:50 पर। दिन में 1 बजे का समय रहेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार का। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:05 पर। प्रस्तुतकर्ता हैं अलका वर्मा। दोपहर 2 बजे का समय रहेगा समाचार का। फिल्म संगीत में कुछ फिल्मी नगमे आप सुनेंगे 2:30 पर। और 3 बजे का समय रहेगा उर्दू सर्विस का।

शाम 5 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम युवाणी का। कार्यक्रम विवरण आप सुन सकते हैं शाम को 6 बजे। 6:05 पर आप सुनेंगे सिराई की। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 6:30 का। जिले की चिट्ठी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:40 पर। प्रादेशिक समाचार राजस्थानी में आप सुनेंगे 6:45 पर। शाम 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम चौपाल का। 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, स्पोर्ट्स स्कैन। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर। समाचार संध्या का समय रहेगा 8:45 का। 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 9:30 का समय रहेगा पब्लिक स्पीक का। कार्यक्रम सुनेंगे आप खेल जगत, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। आप सुन सकते हैं रात 10 बजे। 10:30 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी नगमे और 11 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचार का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि छाबड़ा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं अभिजीत और नीरजा पंडित के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है खूबसूरत, गीत गुलजार का है और संगीत जतिन ललित का।

आइए अब सुनते हैं फिल्म वास्तव का ये नगमा। आवाज़ें सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की है, गीत के बोल समीर के हैं और संगीत जतिन ललित का।

लता मंगेशकर के साथ उदित नारायण को भी आपने सुना। शब्द रचना इंदीवर की थी, धुन बनाई है उत्तम सिंह ने और फिल्म का नाम था दुश्मन। लीजिए अब सुनते हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान को। फिल्म का नाम है अरमान, गीत जावेद अख्तर का है और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की गाई कुछ गज़लें। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलियान। जानकारी का विषय है बूंद बूंद सिंचाई और फंवारा।
1: भाई, वो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के द्वारा की है कि पानी को ज़्यादा उपयोग करके खेती में सिंचाई करी जावे। सिंचाई पद्धति के द्वारा बूंटांगी वास्तविक पानी की मांग अनुसार पानी की सही मात्रा बूंद बूंद के रूप में पौधे की जड़ा में दी जाए और जरूरी होने पर घुलनशील पोषक तत्व और रासायनिक खाद पानी में घोल के समान मात्रा में बूंटे की जड़ा तई पुगाई जाए। इन सिंचाई पद्धति में की है कि पानी ने बूंटे की जड़ा ताई ड्रिपर्स, माइक्रोस्प्रिंकलर, माइक्रोस्पेयर आदि इमिशन डिवाइस यानी कि उत्सर्जक युक्ति द्वारा भूमिगत पाइप के द्वारा बूंटे की जड़ा के पुगाई जाए। आ सिंचाई पद्धति किसान भाइयों मुख्य तौरों फल बागान और कतार में बोई जाने वाली सब्जियां और गन्ने की सिंचाई में ज्यादा उपयोगी पाई गई है। बात करें किसान भाइयों बूंद बूंद सिंचाई पद्धतियों फसलों की उपज वृद्धि और पानी की बचत की, तो अंगूर की फसल में 60-70% तक पानी की बचत हुआ है और उपज की वृद्धि है 32% तक रेव है। अनार की फसल में 50-55% तक पानी की बचत और 30% उपज में वृद्धि हुए। अमरूद की बात करा तो इन फसल में 55-60% तक पानी की बचत और 25% उपज की वृद्धि हुए। नींबू की बात करा तो इनमें 81% तक पानी की बचत और 35% तक के उपज में वृद्धि हुए। टमाटर की बात करा तो 30-79% तक पानी की बचत रेवे और 5-43% उपज में वृद्धि हुए। बैंगन की बात करा तो इंगमा 55-80% तक पानी की बचत, 17-5% तक उपज वृद्धि हुए। आलू की बात करा तो इंगमा 46% तक उपज वृद्धि रेवे। बात करा किसान भाइयों पत्ता गोभी की तो इंगमा 39-60% तक पानी की बचत और 23-4% तक उपज की वृद्धि हुए। और किसान भाइयों बूंद बूंद सिंचाई पद्धतियों भिंडी में 49

84% तक पानी की बचत और साथ में लेके 13% तक उपज में वृद्धि हुए। अब बात करें किसान भाइयों के बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का मोटा मोटा लाभ किए तो किसान भाइयों औसतन 30 से लेके 35% तक पानी की बचत हुए और इंगमा किए गए बचेड़े पानी 30 से लेके 35% ज़्यादा माटी में अपना सिंचाई कर सका और किसान भाइयों औसतन 10 से लेके 20% तक उपज में वृद्धि होने के साथ साथ फसल की जी गुणवत्ता है बिंगमा भी किए सुधार हुए। पार्टिगेशन के द्वारा किए गए उर्वरक और घुलनशील पोषक तत्वन को आपा समुचित उपयोग कर सका। सागे सागे किए किसान भाइयों बूंद बूंद सिंचाई पद्धतियों खरपतवार पर भी नियंत्रण रहे क्योंकि पानी की जिकी बूंदा है वह सीधी बुंटे की जड़ा तय जावे तो आसपास पानी को फैलाव को रहे यूं किए गए खरपतवार पैदा ही को नहीं हुए। और सागे किसान भाइयों जिकी उबड़ खाबड़ जिकी जमीन है यानी कि ऊंची नीची जमीन है और क्षारीय जमीन है बिंगमा भी किए का बहुत ही उपयोगी साबित हुई है और सागे अगेती फसल प्राप्ति में भी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति बहुत ही सहायक है। सागे अपना टाइम की बचत हुए क्यों आपा तो बा मशीन चला गए और सारा में बाग में या फसला में कट्ठो पानी आपा लगा सका इन खातर के ज़्यादा आदमियों की जरूरत भी कौन पड़े और खारे पानी में भी आके है कारगर साबित हुई है और सागे किए गए अपनी ऊर्जा की बचत रहे और बूंद बूंद सिंचाई माटी में नमी और उर्वरकता जिकी है वह किसान भाइयों बनी रहे। और किसान भाइयों बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपने खेत में लगाने खातर सरकार अनुदान भी जारी करे और इन खातर आवेदन पत्र के सागे जरूरी कागज जिया जमामंदी है पासबुक खसरा गिरदावरी और खेत का स्वामित्व का जगह दस्तावेज है सागी नोट ड्यूज प्रमाण पत्र और खेत के नक्शे की प्रति और जो को अपना उद्देश्य है बिंगो अनुमान पत्र आदि संबंधित कृषि विभाग कार्यालय में या फिर ई मित्र के माध्यम अपने प्रस्तुत कर देना चाहिए। और किसान भाइयों उद्यान विभाग कृषि विभाग के अधिकारियों अनुदान की जानकारी बाबत अपन के टेमो टेम संपर्क करना चाहिए और सागे कृषि पर्यवेक्षक है वह भी आप की एक जानकारी प्राप्त कर सका और कृषि विभाग की जिसकी वेबसाइट है बी पर भी आप जानकारी ले सक। अब बात करें किसान भाइयों फुहारा सिंचाई पद्धति की तो फुहारा सिंचाई पद्धति एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसके द्वारा पानी ने हवा में छिड़काव करो जावे और वो पानी जमीन पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरे। पानी को छिड़काव दबाव द्वारा छोटी नोजल या ओरिफिस द्वारा करो जावे इंगमा किया न तो पानी को जमाव हुए और न ही माटी यूं दबे और यूं जमीन और हवा को सही अनुपात बने रहे और बीजा को अंकुरण भी जल्दी हुए। किसान भाइयों फुहारा पद्धति में पानी की 30 से लेके 35% तक बचत हो जावे और आविधि बलुई माटी ऊंची नीची जमीन और जटे पानी कम मात्रा में उपलब्ध हुए बठा उपयोग करी जावे। इन विधि के द्वारा किए गए कणक कपास मूंगफली और कई दूसरी फसला में सिंचाई किसान भाई कर सकें। फुहारा सिंचाई पद्धति के लाभ की बात करा तो सिंचाई का परंपरागत तरीका के मुकाबले इन पद्धतियों सिंचाई करने पर मात्र 50 से लेके 70% पानी की आवश्यकता हुए। फुहारा पद्धतियों जमीन ने समतल करने की जरूरत को नहीं हुए और ऊंची नीची जगह वाला जगह भू भाग है बंग में भी यह पद्धति कारगर साबित हुई है। फुहारा पद्धतियों सही टाइम पर जुताई और पौध रोपाई को कार्य भी किसान भाई कर सके। किसान भाइयों अब बात करा सोलर पंप की बूंद बूंद सिंचाई पद्धति और फुहारा सिंचाई पद्धतियों भी आप जोड़ सका। किसान भाइयों पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को निरंतर दोहन और पर्यावरण पर इंग उपयोग होने वाला जिसका दुष्प्रभाव है वह बचाव खातर सौर ऊर्जाओं बिजली पैदा करके खेती और बागवानी में सोलर पंपों सिंचाई किसान भाई करण लाग रहे जकों कम खर्च करके किसान के आय में वृद्धि होने लाग रही है। सोलर पंप के उपयोग न केवल डीजल और बिजली की बचत हुए बल्कि सोलर पंप के सागे सागे बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली और फुहारा प्रणाली ने जोड़न करोड़ों घन मीटर पानी की बचत भी होने लग रही है और बचेड़े पानी ने सिंचाई पानी के अलावा अतिरिक्त माटी में अपना सिंचाई कर सका। सोलर पंप की तकनीकी सफलता और टिकाऊपन निश्चित करने खातर किए गए इन्हें अति आधुनिक खेती और उद्यानिकी गतिविधियों के सागे सागे पानी संचय और संरक्षण तकनीक सागे भी जोड़े जाने लग रही है और इन अलावा सोलर पंप उद्यान सेडनेट हाउस पॉली हाउस डिग्गी पानी होज खेत तलाई जल संग्रहण ढांचो और राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना के सागे प्रभावी रूप में किसान भाइयों जोड़े गए है। और सोलर पंप में सूरज की किरणा सीधी बिजली या ऊर्जा बनाने को काम सोलर पैनल द्वारा करो जावे इंग सागे एसी या डीसी मोटर लगड़ी हुए जकी किया कि सौर ऊर्जाओं पानी खींचने को काम करे। सोलर पैनल दिन रात पूरी कुशलता के साथ काम कर सके इन खातर किया कि पैनल तक सूरज की किरणा हमेशा सीधी पुगनी चाहिए और जमीन पर लागन वाला यानी सरफेस और पानी अंदर काम करने वाला सबमर्सिबल पंप ए लगभग 250 फीट की गहराइयों भी पानी उठा सके और एक दिन में लगभग 1,00,000 लीटर तक पानी खींच सके।

0: हाँ, सोलर पैनल पर इंगो मॉडल नंबर, क्रम संख्या, कंपनी को नाम, उत्पादन की तारीख आदि सूचनाएं अंकित रहे। जगहों की एक मांग की भी प्रकार की छेड़खानी कौन कर सके है कोई। और सौर ऊर्जा पैनल ने लगाते टाइम एंटी थेफ्ट नेट को इस्तेमाल किया जाओ है। जगहों की इन पर लगाया गया नट बोल्ट ने खोले कौन जा सके। और इन उपायों की है सोलर पंप ने जरूरी सुरक्षा जगी है बा प्रदान करेड़ी है। अब बात करें किसान भाइयों सोलर पंप का फायदा की, तो सोलर ऊर्जा पंप को सारो मोटो फायदा वही है कि इंगमा लगाने के बाद किसान भाइया ने ऊर्जा का महंगा स्रोत पर निर्भर को रहना पड़े। और इंग माध्यमों की दूर दराज के क्षेत्र में इन्हें लगा के फसल में पानी आप उगा सका और पानी के बहाव ने नियंत्रित कर सका। और सोलर पंप के इस्तेमाल में किसान भाई ऊर्जा खपत के मामले में आत्मनिर्भर हो रहे। और सोलर पंप सूरज की किरणों उत्पन्न ऊर्जाओं चलाया जावे, जो कि बिजली और ईंधन चलन वाला ऊर्जा स्रोतों पर किसान भाइयों की निर्भरता ने किएगा अब कम कर दी हुआ है। इंग चलान में धन की भारी बचत हुए और किसान भाइयों की आय में भी वृद्धि हुए। और सोलर पंपों की है इन्हें ऑपरेट करना बहुत ही आसान हुआ है और इनमें बहुत ही कम कल्प ऊर्जा लागेड़ा हुआ है। इनके अलावा इनमें बिजली चलने वाला पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तरह बिजली कटौती, कम वोल्टेज, बिजली के बिल भर की कोई समस्या कौन रहे। और किसान भाइयों सोलर पंप दूसरा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तरह ध्वनि और वायु प्रदूषण कौन करे, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल हुए और क्योंकि यह किसी भी इसे ईंधन पर कौन चला जगह की है प्रदूषण की वजह बनता हुआ है। सोलर पंप के माध्यम की है कि कोई भी हानिकारक पदार्थ को निकले जो को पर्यावरण नुकसान पुगावे। और बठई पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर्यावरण खातर किए घातक हुए और वह सोलर पंप किसान भाइयों खातर किए बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभरे हुए। इंगला किसान भाइयों सोलर पंप को इस्तेमाल कई प्रकार को न्यारो खर्चों को नहीं आवे और रख रखाव भी बहुत ही कम हुआ है। और इसे में कि किसान भाई सोलर पंप ने आपके उपयोग के बाद बचड़ी सौर ऊर्जा ने ग्रिड में बेच भी इसके और इन खातर की लागत के हिसाब में काफ़ी किफायती रहे। तो किसान भाइयों आज गोटे मितो ही देव आ गया। राम राम सा, राम राम।
1: किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सोमवार से खुल जाएगा। विश्वभर से प्रमुख नेताओं ने अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया है और इसे पश्चिमी एशिया में स्थायित्व बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण राजनयिक कदम बताया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। सुश्री सीतारमण ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर में शुरू होगी। प्रदेश में नहरों के जीर्णोद्धार और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जायका प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए के 12 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार इन कार्यों में मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले की सिद्धमुख नोहर और भाखड़ा नहर प्रणाली की मरम्मत और रीलाइनिंग के काम किए जाएंगे। इन कार्यों के पूरा होने से नहरों की जल वहन क्षमता में सुधार होगा और किसानों के खेतों तक पर्याप्त मात्रा में पानी तेजी से पहुंच सकेगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि

0: इन स्वीकृत कारों को धरातल पर उतारने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर वर्षा झालावाड़ के खानपुर इलाके में दर्ज हुई। वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़, झालावाड़ के पचपहाड़, छीपा बड़ोद, चौमू, मांगरोल, छबड़ा और बसवा में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। कल जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर, दौसा, टोंक समेत कई जिलों में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। राज्य में कई स्थानों पर अभी भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। सर्वाधिक तापमान फलौदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पिलानी में 41.2 और बाड़मेर में 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। राज्य में कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है। प्रदेश भर में आज सोमवती अमावस्या श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हरणी और तिलस्वा महादेव मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु पवित्र स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। पाली के सोमनाथ मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। महिलाएं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और दीप दान कर सुख समृद्धि की कामना कर रही है। वहीं बाड़मेर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में गौशालाओं में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया जा रहा है। साथ ही जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करने का सिलसिला दिन भर से जारी है। तीर्थराज पुष्कर में आज पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहां सरोवर में स्नान करते समय गहरे पानी में गए एक युवक को सिविल डिफेंस की टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। अजमेर जिले के जसनगर क्षेत्र में लूणी नदी के रपट पर एक बस और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार एक ही परिवार के सदस्य सोमवती अमावस्या पर पुष्कर सरोवर में स्नान के लिए जा रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चौथ का बरवाड़ा के पास मिर्ची से भरे एक ट्रक के त्रिलोकपुरा अंडरपास में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। भरतपुर के बयाना स्थित दरबारहना झरने के नीचे पिकनिक मना रहा एक युवक गहरे पानी में चला गया जिससे डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत का आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी सखी अलका वर्मा। सखियों, आज की कहानी एक ऐसे लोक प्रचलित मुहावरे पर आधारित है जो कि जीवन का गहरा सत्य अपने भीतर समेटे हुए है। एक गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत पढ़ा लिखा था और शहर जाकर बड़ा व्यवसाय जो है वो करना चाहता था। उसमें आत्मविश्वास इतना अधिक था कि वो अक्सर अपने दादाजी की बातों को पुराने विचार समझकर अनदेखा कर देता था। उसका मानना था कि आज की सोच अच्छी है, पुराने विचार आज के समय में कोई मायने नहीं रखते हैं। तो एक दिन ना रवि ने खेती की जमीन बेचकर बड़ा व्यापार शुरू करने का निर्णय ले लिया और उसने बिना किसी से सलाह लिए अपनी जो सारी जमा पूंजी थी वो उस व्यापार में निवेश कर दी। अब कुछ महीने तो जो था व्यापार ठीक ठाक ही चला, लेकिन बाजार में अचानक से मंदी आ गई और उसे जो है भारी नुकसान होने लग गया। अब जो है रवि बहुत चिंता में रहने लग गया। वो कहते भी हैं ना सखियों कि जीवन में सही मार्गदर्शन

अनुभव और बुद्धिमत्ता से चाहिए। तो अपने बुजुर्गों से जो है हमें सलाह जो है ज़रूर लेनी चाहिए। वर्षों के अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान कई बार किताबों और आधुनिक तकनीकों से भी ज़्यादा उपयोगी जो है वो सिद्ध हो सकते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि रवि को ना नुकसान होने लगा और अब वो चिंता में भी रहने लग गया। तो एक दिन बहुत सोचने के बाद वो अपने दादाजी के पास गया अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। वो अपने दादाजी के पास गया तो दादाजी ने उससे क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए फिल्म वारिस से ये गीत। आवाज़ सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की, संगीत उत्तम जगदीश का है और इस गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने।

हाँ तो सखियों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि रवि को व्यापार में काफ़ी घाटा हो गया और वो काफ़ी चिंतित रहने लगा। और फिर जो है, रवि अपनी समस्या लेकर अपने दादाजी के पास गया। तो दादाजी ने धैर्यपूर्वक उसकी पूरी बात सुनी और फिर उसे कहा कि बेटा, व्यापार में कभी भी सारी पूंजी एक जगह नहीं लगाई जाती। थोड़ा जोखिम लो, लेकिन कुछ सुरक्षित भी रखो। तो दादाजी की सलाह मानकर रवि ने अपने व्यापार की योजना बदली, अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण किया और धीरे धीरे फिर से सफलता की ओर बढ़ने लगा। और कुछ सालों के बाद रवि जो है, गांव का एक सफल व्यापारी बन गया। और फिर एक बार गांव में एक आयोजन हुआ जहां पर रवि को भी बुलाया गया और उसे मंच पर दो शब्द बोलने को कहा गया। तो रवि ने कहा कि मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण मेरे दादाजी का अनुभव है। सच्ची कहा गया है कि अच्छी मति जो चाहो बूढ़न को पूछन जाओ। आज के आधुनिक युग में तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन अनुभव का कोई भी विकल्प नहीं है। हमारे माता पिता, दादा दादी और परिवार के जो अन्य बुजुर्ग हैं, वो जीवन के अनेक उतार चढ़ाव जो हैं वो देख चुके होते हैं। उनकी सलाह हमें गलत निर्णयों से बचा सकती है और सफलता का मार्ग जो है ना, वो दिखा ही सकती है। तो कहते हैं ना सखियों कि सफर में ठोकरे मिले तो घबराया ना करो। सफर में ठोकरे मिले तो घबराया ना करो। बड़ों की सीख को कभी ठुकराया ना करो। जिनके बाल धूप में सफेद हुए हैं, उनके अनुभवों का मोल घटाया ना करो। इसी के साथ आइए सुनवाते हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर को फिल्म प्यासा सावन में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: बचपन की हंसी जहां गलियों में गूंजती थी, अब मोबाइल की स्क्रीन पर सिमटती ही जा रही है। खेल ज़रूरी है जीवन में कुछ मुस्कुराने के लिए, खेल ज़रूरी है जीवन में कुछ मुस्कुराने के लिए, पर लत हर खुशी को धीरे धीरे निगलती जा रही है। जैसे क्यों बचपन जीवन का सबसे सुंदर दौर होता है और ये सीखने, खेलने, दोस्त बनाने और सपनों को आकार देने का समय होता है। लेकिन जब कोई बच्चा दिन का ज़्यादातर समय मोबाइल स्क्रीन पर बिताने लगे तो ये एक चिंता का विषय है। ऑनलाइन गेम्स, रंग बिरंगे ग्राफिक्स, रोमांच, चुनौतियां और पुरस्कारों के कारण बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते ही रहते हैं। कई गेम्स ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें हर लेवल पर कोई नया इनाम, एक नई चुनौती या नई उपलब्धि जो है वो हमें मिलती है। बच्चे बार बार खेलने के लिए प्रेरित होते हैं और धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो जाती है कि बच्चा पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के साथ समय बिताने की बजाय गेमिंग को प्राथमिकता देने लग जाता है। गेमिंग की लत के क्या संकेत होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर को फिल्म सिंदूर में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो क्यों बात करें कि गेमिंग की लत के संकेत क्या हैं? तो जब कोई बच्चा जो है वो घंटों तक लगातार गेम खेलता हो, पढ़ाई में धीरे धीरे रुचि उसकी कम हो गई हो, मोबाइल छीनने पर गुस्सा करता हो और परिवार और दोस्तों से दूरी बनाने लगा हो, भोजन और दिनचर्या की उपेक्षा करता हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो गेमिंग की लत के संकेत हैं। और लगातार स्क्रीन देखने से बच्चों की आंखों पर दबाव जो है वो बढ़ता है। सर दर्द है, आंखों में जलन होना, गर्दन और पीठ में दर्द जैसी समस्याएं जो है ये सामने आने लगती हैं। इसके अलावा देर तक गेम खेलने से नींद पूरी नहीं हो पाती और नींद की कमी का जो असर है वो बच्चे की स्मरण शक्ति पर पड़ता है। जो बच्चे मैदान में खेलने की बजाय पूरा दिन बैठे रहते हैं उनमें मोटापा और शारीरिक कमजोरी जैसी समस्याएं भी जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा इसका जो है पढ़ाई पर भी असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे जब घंटों गेम खेलने में व्यस्त

होंगे तो उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई से हटने लग जाता है और होमवर्क अधूरा रहने लगता है और परीक्षा परिणाम जो है वो भी प्रभावित होते ही हैं और आत्मविश्वास भी जो है वो कम होने लग जाता है। और कई बार बच्चे पढ़ाई करते समय भी गेम के बारे में ही सोचते रहते हैं जिससे उनकी जो एकाग्रता है वो भी कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा सखियों, इस गेमिंग का जो असर है वो बच्चों के सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है, जैसे कि इसकी ज़्यादा आदत जो है बच्चों को वास्तविक दुनिया से दूर कर देती है, दोस्तों के साथ खेलना कम कर देते हैं, परिवार के साथ बातचीत कम कर देते हैं और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी कम होने लग जाती है बच्चों की। तो ऐसे में बच्चे जो है कई बार अकेलापन भी महसूस करते हैं और धीरे धीरे जो है उनका आत्मविश्वास भी प्रभावित होने लग जाता है। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि माता पिता बच्चों के सबसे बड़े मार्गदर्शक दर्शक होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि बच्चों की स्क्रीन टाइम पर नज़र रखें, उन्हें आउटडोर खेलने पर प्रेरित करें, पढ़ाई और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखें, बच्चों की रुचियों को समझें और उन्हें रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ें। स्कूल और समाज की भूमिका, विद्यालय बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं देते बल्कि जीवन जीने की कला भी जो है वो सिखाते हैं। स्कूल में खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, पुस्तक पठन और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चों का जो ध्यान है वो केवल मोबाइल तक ही सीमित ना रहे। समाज और परिवार मिलकर बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करें जहाँ वे तकनीक का उपयोग सीखने और विकास के लिए करें, ना कि उसके मोबाइल की लत में फंसने के लिए करें। तो सखियों, गेमिंग अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब यह मनोरंजन से बढ़कर आदत और फिर लत बन जाती है। तो बच्चों को तकनीक से दूर नहीं करना है बल्कि उसका जो है सही और संतुलित उपयोग जो है वो हमें बच्चों को सिखाना है। तो चलिए आज प्रण लेते हैं कि बच्चों को एक ऐसा वातावरण देंगे जहाँ वे डिजिटल दुनिया के लाभ भी उठाएं और वास्तविक जीवन की खुशियों से भी जुड़े रहें। वो कहते हैं ना कि बचपन को बचाना है तो संवाद बढ़ाइए, गेमिंग की लत से बच्चों को दूर ले जाइए, ज्ञान, खेल और संस्कार का दीप जलाइए, उज्जवल भारत का भविष्य जो है मजबूत बनाइए। और इसी संदेश के साथ आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म क्रोधी से आवाज़ सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम में बढ़ते हैं रसोई घर की तरफ और आज बात करते हैं ऐसी चीज की जो हर रसोई घर का हिस्सा है लेकिन अक्सर हम इसके गुणों को अनदेखा कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट की। ऐसे हिमालयन पिंक सॉल्ट भी जो है वो कहा जाता है। बात करें इसके फायदों की तो ये पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है, गैस अपच और भूख की कमी जैसी समस्याओं से राहत देता है। शरीर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों का संतुलन बनाए रखने में ये मदद करता है, खासकर गर्मियों में। आयुर्वेद में सेंधा नमक को त्रिदोष शमन, वात पित्त और कफ के लिए उपयोगी माना गया है। सामान्य नमक की तुलना में सेंधा नमक में सोडियम की मात्रा कम होती है जिससे हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए अपेक्षाकृत ये जो है सुरक्षित माना जाता है, हालांकि सीमित मात्रा में। सेंधा नमक से स्नान करने पर त्वचा की सफाई होती है, तनाव कम होता है। इसे डिटॉक्स बाथ के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सो क्यों सेंधा नमक के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं और वो क्या हैं बताएंगे आपको इस गीत के बाद। फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, आवाज़ है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की, गीत और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

देखिए, बात करें सेंधा नमक के नुकसान की, तो भले ही सेंधा नमक जो है वो सेहतमंद विकल्प है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करना शरीर में पानी की कमी, ब्लड प्रेशर असंतुलन और किडनी पर जो है वो असर डाल सकता है। सामान्य नमक में आयोडीन होता है जो थायराइड ग्रंथि के लिए ज़रूरी है। सेंधा नमक में आयोडीन जो है वो नहीं होता, इसीलिए थायराइड से पीड़ित लोगों को डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करना चाहिए। सेंधा नमक का जो स्वाद है वो हल्का होता है और ये कुछ विशेष व्यंजनों में ही अच्छा घुलता है। रोज़मर्रा की रसोई के लिए ये थोड़ा असामान्य लगता है। सिक्यू, जैसे हर चीज़ का संतुलन ज़रूरी है, वैसे ही सेंधा नमक का भी सही मात्रा में उपयोग करें। ये एक प्राकृतिक और अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प है, लेकिन इसकी अधिकता भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करें। स्वस्थ रहें, सजग रहें और नमक का स्वाद समझदारी से लें। और इसी जानकारी के साथ सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हीना से। हवा सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

क्योंकि कार्यक्रम की इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही अब वक्त हो चला है आप सबसे इजाज़त लेने का। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी सखी अलका वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: from 2012 to 2023. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that the rise in inflation last month was primarily driven by higher prices of mineral oils. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Evian this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियान पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी

0: तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक

0: याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और

0: तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।
2: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं,
3: कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
3: वो है कौन?
4: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
2: नाम?

कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दिल जले। गीतकार जावेद अख्तर थे और संगीतकार अनु मलिक। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म तेरे नाम का ये नगमा।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अलका याग्निक के साथ सोनू निगम को। गीतकार जावेद अख्तर हैं और संगीतकार अनु मलिक। फिल्म का नाम है रिफ्यूजी।

अलका याग्निक और सोनू निगम के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं उर्दू सर्विस।

सपहर 3:30 बजे फिर तुम्हारी कहानी याद आई। मारूफ मौसिकार सज्जाद हुसैन के सालगिरह के मौके पर ये फीचर आप सुनेंगे। इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा हम आपकी नजर करेंगे। तहरीर डॉक्टर इकबाल परवेज की। शाम 4 बजे अब लुत्फंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये थे एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटी फ्रेडेश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस से दोपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुंदम्मार से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बराती सलावा में सलोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिशो के साथ बातचीत की। 52वां G7 सरबराह इजलास फ्रांस के शहर ईविया में आज शाम शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राबता इजलास में शिरकत करेंगे। भारत ने ईरान और अमरीका के दरमियान अहम समझौते का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे खत्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी। बरतानिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पाबंदी का ऐलान किया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज शाम अमेरिका में एटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्दे से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सलोवाकिया की राजधानी बराती सलावा में सलोवाकिया के अपने मनसब रॉबर्ट फिशो के साथ बातचीत की। इससे पहले वजीर आजम मोदी को सलोवाकिया के उनके हम मनसब की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत और सलोवाकिया के रिश्तों को मजीद वसअत देने और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन के नए इम्कान तलाश करने का मौका फराहम करता है। वजीर आजम मोदी सदर पीटर पिलिग्रिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद सलोवाकिया के दो रोज़ा सरकारी दौरे पर कल रात बराती सलावा पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो सलोवाकिया के सदर पीटर पेलिग्रिनी और वजीर आजम रॉबर्ट फिशो के साथ सूदमंद मुज़ाकरात के मुंतजर हैं। 1993 में सलोवाकिया की आज़ादी के बाद से किसी भारतीय वजीर आजम का इस मुल्क का यह पहला दौरा है। वजीर आजम का यह दौरा पिछले साल अप्रैल में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सलोवाकिया के दौरे और सलोवाकिया के सदर पीटर पेलिग्रिनी के रवां साल फरवरी में भारत में मुनाकिदा एआई इम्पैक्ट समिट में शिरकत के बाद हो रहा है। यह दौरा तजारत सरमायाकारी ऑटोमोबाइल और रेलवे मैनुफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत और सलोवाकिया के दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा करता है। 52वां G7 सरबराह इजलास आज फ्रांस के शहर ईविया में शुरू हो रहा है। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त हो रही है जब एक अहम मुस्बत वाकया पेश आया है कि अमरीका और ईरान ने 107 दिन से जारी लड़ाई खत्म करने और आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के लिए एक समझौते को हतमी शक्ल दे दी है। दुनिया की तेल सप्लाई का 20% हिस्सा इस याबी गुजरगाह से होकर गुजरता है। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और इटली समेत G7 मुल्कों के रहनुमाओं ने इस ऐलान का खैर मकदम किया है। एक मुश्तरका बयान में फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और इटली के लीडरों ने कहा कि गैर मशरूत तौर पर आबनाए हुरमुज को फौरी तौर पर फिर से खोलना और बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट आमदोरफ़ ज़रूरी है। फ्रांस के शहर ईविया के साथ साथ जनेवा और लेक जनेवा खित्ते में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जो बुध के रोज़ तक जारी रहेगी। सरबराह कॉन्फ्रेंस के मकाम के अतराफ पूरे इलाके को रेड और ब्लू जोन में बांटा गया है और वहाँ QR कोड पर मबनी कंट्रोल निज़ाम के जरिए दाखिल होने को मुंजबित किया जा रहा है। फ्रांस के साथ इमैनुअल मैक्रों G7 मुल्कों

के मुकाबले 5 गोल से करारी शिकस्त दी। स्वीडन के खिलाड़ियों ने वक्फे के बाद के खेल में अपना दबदबा बरकरार रखा और आसानी से जीत हासिल की। आज के दिगर मैचों में अमरीका में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्दे से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। उधर कल ह्यूस्टन में जर्मनी ने अपने पहले मैच में फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार खेलने वाली कुराकाओ की टीम को 1-7 से शिकस्त दी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने

0: नरेंद्र मोदी कल रात इजलास में शिरकत करेंगे। भारत ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम समझौते का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी। बरतानिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पाबंदी का ऐलान किया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज शाम अमरीका में एटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्दे से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा पुरखलुस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में फिल्म है नया दौर, मौसीकी ओपन ईयर की।

पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं।

0: क्यों?
1: इसलिए कि भंवरा तुम्हारे हसीना उड़ाए।
2: अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे घर खुदा लाया। ये थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं। सामिन, आज मारूफ मौसीकार सज्जाद हुसैन की सालगिरह है। इस मौके पर उनके फन और शख्सियत के हवाले से फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनिए, फिर तुम्हारी कहानी याद आई ऐ सनम। तहरीर डॉक्टर इरशाद परवेज़ की।

1952 में जब फिल्म संदिल आई तो इस फिल्म की मौसीकी ने उस वक्त के मौसीकारों को भी चौंका दिया था। अगर हम क्लासिकी एतबार से देखें तो भी इस फिल्म की मौसीकी उस दौर की सबसे ज्यादा मारूफ और आला पाए की मौसीकी करार दी जा सकती है। इस फिल्म में 8 नगमे थे और सब के सब आला तख्लीक का एक अच्छा नमूना थे। धरती से दूर, गोरे बादलों के हार, आशा भोसले और गीता दत्त की आवाज में एक ऐसा मलकूती नगमा है जो सुनने वाले को एक और ही जहान में ले जाता है।

इस नगमे में पियानो और दीगर साजों के अलावा बांसुरी का आवाजों के साथ मिलन हमारे जहन पर एक पूरा असरार और जादुई असर कायम करता है, जो गाना खत्म होने के बाद भी कायम रहता है।

दिल में समा गए सनम, फूल खिले चमन चमन। तलत महमूद और लता की आवाज में एक निहायत ही दिलकश गाना है ये। दो गाना अपने सुरताल, लफ्जों की अदायगी और मानवियत के लिए एक मिसाली गाना करार दिया जा सकता है।

तनवीर नकवी का लिखा एक गाना सज्जाद हुसैन ने फिल्म रुखसाना के लिए कंपोज किया था। बज़ाहिर सादा से गाने की पुरकारी और असर आफरीनी के बारे में वही जानते हैं जो इस गाने को गाने की कोशिश कर चुके हों।

इसी फिल्म रुखसाना में किशोर कुमार और आशा भोसले का एक दो गाना था, भुला दो जिंदगी के गम। ये शाहकार गाना आज हमें सज्जाद हुसैन के मखसूस अंदाज की याद दिलाता है। सज्जाद हुसैन अपनी मौसीकी में जिन जिन अनासिर और अवामिल का इस्तेमाल करते थे, ये गाना उन सारी चीजों से हमें रूशनास कराता है।

ये गाना ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। सुरैया की खूबसूरत आवाज के साथ साथ इस गाने में हमें सासानी और अरबी बल्कि वस्त एशियाई मौसीकी का हसीनो जमील अक्स और इम्तिजाज सुनने को मिलता है, जो हर एतबार से लाजवाब है।

इसी फिल्म रुस्तम सोहराब का एक नगमा फिर तुम्हारी याद आई है ए सनम। एक अजीबोगरीब नगमा है जिसे गैर अहम किरदारों बल्कि एक्स्ट्रा समझे जाने वाले किरदारों पर पिक्चराइज किया गया। सज्जाद हुसैन ने इस नगमे को मोहम्मद रफी, मन्ना डे और सादात खां की आवाज में कंपोज किया। इस नगमे की खास बात यह है कि इसमें बेजा मौसीकी से परहेज किया गया है। इब्तदाई दौर की फिल्मों में कव्वाली के अंदाज की ये एक लाजवाब धुन है। याद रखने की बात यह है कि इस नगमे में दफ के साथ साथ आवाजों के कोरस का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है कि मजा आ जाता है।

सज्जाद हुसैन के बारे में उनके हम असरों का ख्याल था कि वो आला पाए के एक ऐसे फनकार थे जो अपनी हसास और गैरतमंद तबीयत की वजह से अपने ही बनाए ताजमहल में कैद हो गए। नौशाद ने सज्जाद हुसैन के बारे में कहा था कि वो बहुत मुनफरिद और बहुत बड़ा मौसीकार था। उसे अपने फन पर इतना नाज था कि वो प्रोड्यूसर से कहता था कि मैंने एक ऐसी धुन बनाई है जिसे लता मंगेशकर भी नहीं गा सकती हैं। प्रोड्यूसर हैरान होकर पूछता कि लता नहीं गाएंगी तो फिर कौन गाएगा। सज्जाद हुसैन फौरन उस धुन को आसान लेकिन दिलकश और दिलनवाज ऐसी धुन में बदल देता था जिसे कोई भी गा सकता था। नौशाद साहब के मुताबिक अगर कोई फिल्मसाज सज्जाद हुसैन की किसी धुन में मामूली सी भी तजवीज पेश करता तो सज्जाद हुसैन भड़क उठते और कहते, तुम्हें मौसिकी का क्या पता है। इस तरह उन्होंने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया और अपने ही बनाए ताजमहल में कैद होकर रह गए। सज्जाद हुसैन ने एक मौके पर फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक शशिधर मुखर्जी की पेशकश भी ठुकरा दी थी। डायरेक्टर के आसिफ से एक बार बहस हो जाने की वजह से फिल्म मुगले आजम जैसी फिल्म की मौसीकी का नादिर मौका भी उन्होंने खो दिया था।

गीता दत्त इस बात में खुशी महसूस करती थी कि वो सज्जाद हुसैन की धुनों से इंसाफ कर पाती थी और उसे वो अपने लिए एजाज समझती थी। फिल्म खेल का ये गाना गीता के साथ सज्जाद हुसैन के आखिरी गानों में है।

0: अभी हमने आपको बताया कि ये गाना सज्जाद हुसैन के उन आखिरी गानों में है जो उन्होंने गीता दत्त के साथ कंपोज किए, क्योंकि उसके बाद के दौर में एक जमाना वो भी आया था जब सज्जाद हुसैन अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखने लगे थे कि वो गानों की धुन तभी बनाएंगे जब आवाज लता मंगेशकर की होगी। उनका कहना था कि लता के अलावा उनके गाने कोई और नहीं गा सकता है।
1: मोहम्मद रफी का गाना इस पार दीवार के जो रहते हैं, कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं, एक ऐसा नादिर और नायाब गाना है जो आज शायद ही किसी को याद होगा।

फिल्म संगदिल का भजन दर्शन प्यासी आए दासी गीता दत्त की आवाज में एक नादिर भजन है जिसका एक अलग अंदाज है जो मन को मोह लेता है।

सुरैया की आवाज में गमे आशियाना अपने अंदाज का एक अनोखा गाना है और जिसकी कलाकारी और सदाकारी और लयकारी अपनी मिसाल आप हैं।

0: हालांकि सज्जाद हुसैन ने नूरजहां के साथ एक इकलौती फिल्म करने के बाद दोबारा कभी काम नहीं किया, लेकिन यह भी हकीकत है कि नूरजहां अपनी पूरी जिंदगी सज्जाद हुसैन की फनकाराना मौसीकी को भुला नहीं पाई थी। आज से तकरीबन 30 साल पहले एक बार लंदन के एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके पसंदीदा मौसीकारों के बारे में पूछा गया था, तो वो 2-3 मशहूर नामों के बाद नूरजहां ने मौसीकार सज्जाद हुसैन का नाम बहुत अदब व एहतराम से लिया था। उन्होंने कहा था,
1: मौसीकार सज्जाद हुसैन इंतहाई ज़हीन मौसीकार हैं। नूरजहां के ख्याल में सज्जाद हुसैन अपने आप में मगन रहने के सबब कारोबारी तौर पर कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनकी बनाई हुई धुनें लाजवाल हैं और रहेंगी।
0: इंटरव्यू करने वाले साहब ने जब नूरजहां से कहा कि सज्जाद हुसैन साहब के बारे में सुना है कि वो बड़े खुसर थे और किसी को खातिर में न लाते थे, तो कहा जाता है कि ये बात सुनकर नूरजहां भड़क उठी। फिर कदरे तहमुल से उन्होंने समझाने के अंदाज में कहा था,
1: बात गुरूर की या तकब्बुर की नहीं, बल्कि ये इज्जत नफ्स का मसला है। अगर हमें खुद अपनी इज्जत का ख्याल ना हो तो दूसरे हमारी क्या इज्जत करेंगे। सज्जाद हुसैन साहब को अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रहता था और वो खुद अपनी इज्जत करना जानते थे।

21 जुलाई सन 1995 को मौसीकार सज्जाद हुसैन ने मुंबई के माहिम नामी मकाम पर दारे फानी को खैरबाद कहा और इस जहान रंगबू से चले गए। इंतकाल के बाद उनके साहिबजादे ने बताया था कि अपने आखिरी अयाम में मेरे वालिद को किसी बात का कोई अफसोस नहीं था और न ही किसी किस्म का पछतावा। दुनिया से सज्जाद हुसैन ने बस इतनी तवक्को की थी कि उनकी अजमत का एतराफ किया जाए। मरहूम सज्जाद हुसैन को इस बात का इत्मीनान था कि उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर अपने ढंग से गुजारी।

फिर तुम्हारी कहानी याद आई ऐ सनम। मारूफ मौसिकार सज्जाद हुसैन के फन और शख्सियत के हवाले से फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा अभी आपने समाप्त किया उनकी सालगिरह के मौके पर। तहरीर डॉक्टर इरशाद परवेज़ की थी, तरतीब व पेशकश AM रज़ा की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी मौसिकी। आगाज़ लैला मजनू फिल्म की कव्वाली से, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, अज़ीज़ नाज़ा और साथियों की।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश ही रांझा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। कलाम है कैफी आज़मी का।

फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश अमर अकबर एंथनी फिल्म से मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

आए दिन बाहर के इस फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में। कलाम था आनंद बख्शी का, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तरतीब दी थी। इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है।

0: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1,71 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिल्वा में स्लोवाकिया के अपने हमनसब रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत की। 52वां G7 सरबरा इजलास फ्रांस के शहर इवियान में आज शाम शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राबता इजलास में शिरकत करेंगे। भारत ने ईरान और अमरीका के दरमियान अहम समझौते का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे खत्ते में अमन और इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी। बरतानिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पाबंदी का ऐलान किया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज शाम अमेरिका में एटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कोबो वर्डे से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हमनसब रॉबर्ट फीको ने आज ब्रसेल्स में वफद की सतह की बातचीत की। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को जामे शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन वसी बाहमी एतमाद और स्ट्रेटजिक तालमेल का मजहर है। वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबे में लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मसनू जहानत का मुस्तबिल सिर्फ इख्तरा पर मबनी नहीं बल्कि एतमाद, जिम्मेदारी, इंसानी वक़ार पर भी मबनी होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में तय पाने वाला मफाहमतनामा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के नए मौके पैदा करेगा। इस मौके पर स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फीको ने भारत की तेज़ रफ्तार इकतजाई तरक्की, डिजिटल तब्दीली और मसनू जहानत के मैदान में गैर मामूली तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। जनाब रॉबर्ट फीको ने मजीद कहा कि भारत को अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाया जाना चाहिए। 52वां G7 सरबरा इजलास आज फ्रांस के शहर इवियान में शुरू हो रहा है। ये कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हो रही है कि जब एक अहम मुस्बत वाक़या पेश आया कि अमरीका और ईरान ने 107 दिन से जारी लड़ाई ख़त्म करने और आपने हुरमुज़ को दोबारा खोलने के लिए एक समझौते को हतमी शक्ल दे दी है। दुनिया के तेल सप्लाई का 20% हिस्सा इसी आबी गुजरगाह से होकर जाता है। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और इटली समेत G7 मुल्कों के रहनुमाओं ने इस ऐलान का खैर मकदम किया है। एक मुश्तरका बयान में फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली के लीडरों ने कहा है कि गैर मशरूत तौर पर आपने हुरमुज़ को फौरी तौर पर फिर से खोलना और बहरी जहाज़ों के बिला रुकावट आमदरफ ज़रूरी है। फ्रांस के शहर इवियान के साथ साथ जिनेवा और लेक जिनेवा खत्ते में G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जो बुध के रोज़ तक जारी रहेगा। सरबरा कॉन्फ्रेंस के मकाम के अतराफ पूरे इलाके को रेड और ब्लू जोन में बांटा गया है और वहाँ QR कोड पर मबनी कंट्रोल निज़ाम के जरिए दाखिल होने को मुंजमित किया जा रहा है। फ्रांस के सदर एमैनुएल मैक्रों G7 मुल्कों के रहनुमाओं का बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। इन मुल्कों में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। यूरोपीय कौंसल और यूरोपीय कमीशन के सुदूर भी इसमें शामिल होंगे। भारत, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया, कीनिया और मिस्र को साझेदार मुल्क के हैसियत से सरबरा कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। इसके अलावा यूक्रेन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात को भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया गया है। भारत ने मगरबी एशिया में लड़ाई ख़त्म करने के बारे में अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमत का खैर मकदम किया है जिसकी वजह से दुनिया भर में संगीन इकतसादी मजबूरत मरते हुए कई मुल्कों में लोगों को अमवात हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ये उम्मीद करता है कि इस मफाहमत पर अमल दरामद होने से खत्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी, बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट आमदरफ्त हो सकेगी। अमेरिका, ईरान ने 107 दिन से जारी लड़ाई ख़त्म करने और आबनाए हुरमुज़ को दोबारा खोलने के लिए एक समझौते को हतमी शक्ल दी है। दुनिया की तेल सप्लाई का 20% हिस्सा इसी आबी गुजरगाह से होकर जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह ऐलान किया और कहा कि अमेरिका ईरान की बंदरगाहों पर अपनी बहरिया की नाकाबंदी भी ख़त्म कर देगा। इस अमन समझौते पर स्विट्ज़रलैंड में इस महीने की 19 तारीख को दस्तखत किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत होने के बाद आपने

0: उसको जुमे को ही खोल दिया जाएगा। मस्कूरा समझौते में कहा गया है कि ईरान के एटमी अफसोदगी प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान बातचीत करेंगे और 60 दिन के अरसे के दौरान इंतहाई अफसूदा बनाए गए यूरेनियम को ठिकाने लगाया जाएगा। उधर ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि लुबनान समेत सभी महाजों पर जंग और फौजी कार्रवाई मुस्तकिल तौर पर रोक दी जाएगी और ये सिलसिला आज रात से शुरू हो जाएगा। अमेरिका ईरान अमन माहदे के ऐलान के तनाजुर में खाम तेल की आलमी कीमतों में 4% से ज़्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स में 1,100 से ज़्यादा पॉइंट्स का उछाल आया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बरतानिया की हुकूमत ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी का ऐलान किया है। इसका मकसद बच्चों को ज़्यादा खतरे वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से महफूज रखना है। बरतानिया के वज़ीर आज़म खैर स्ट्रीमर ने इस इकदाम को एक बड़ा लम्हा करार दिया जिससे बच्चों और उनके मुस्तकबिल के लिए हकीकी तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदाम का मकसद बच्चों को उनका बचपन वापस दिलाना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क के मुतवसित तबके ने बेशुमार तरीक़ों से मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा किया है और NDA सरकार उनकी उमंगों की तकमील के लिए काम कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान हुक्मरानी में आम शहरियों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिशों में मुख्तलिफ मौक़ों को फराहम करने में सहूलत पैदा करने, बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर अवामी खिदमात, कम खर्च हिफ्जान सेहत, मियारी तालीम, साफ़ सुथरे शहरियों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोझ को कम करने पर खास तवज्जो दी गई है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मुल्क में अनाज का वाफिर स्टॉक मौजूद है। मौसम के एतबार से एलनैनो के असरात के बावजूद गजाई अशिया की कोई किल्लत नहीं होगी। आज नई दिल्ली में माइन सरबरा कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर ख्याल करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि इस साल जुनूब मगरब मानसून की बारिश नॉर्मल से कम रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि खरीफ फसल के सीजन के लिए मुनासिब मकदार में कीमियावी खाद दस्तियाब है। उन्होंने बताया कि आने वाले रबी सीजन के लिए कीमियावी खाद की सप्लाई का सिलसिला नवंबर से शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जेवर में वाक़े नोएडा में बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाज़ खिदमत आज से शुरू हो गई जो मुल्क के शहरी हवाबाजी के शोबे में एक अहम संगे मील है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के पहले मरहले में सालाना 1,20,00,000 मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत होगी जबकि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद इस हवाई अड्डे में 7 करोड़ से ज़्यादा मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत होगी। आयुष महकमे के मरकजी वजीर प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सन 2026 के योग के बैन अलावी दिन की बड़ी कौमी तकरीब इस महीने की 21 तारीख को कोलकाता में होगी जिसमें वजीर अजम नरेंद्र मोदी तकरीबात की क्यादत करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में और मगरबी बंगाल के जैली हिमालय खत्े में कल तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मैक्सिको में ग्रुप एफ के एक मैच में स्वीडन ने तुनिसिया को एक के मुकाबले 5 गोल से करारी शिकस्त दी। स्वीडन के खिलाड़ियों ने वक्फे के बाद के खेल में अपना दबदबा बरकरार रखा और आसानी से जीत हासिल की। आज के दीगर मैचों में अमेरिका में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्रसिला में स्लोवाकिया के अपने मनसब रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत की है। 52वां G7 सरबराह इजलास फ्रांस के शहर इवियान में आज शाम शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राबता इजलास में शिरकत करेंगे। भारत ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम समझौते का खैर मकदम किया और कहा है कि इससे खत्ते में अमन और इस्तेकाम बहाल करने में मदद मिलेगी। बरतानिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पाबंदी का ऐलान किया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज शाम अमरीका में एटलांटा स्टेडियम ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कोबो वर्डे से होगा। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज़ॉन AIR और DD फेडिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: मीडियम वेव 326

20.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतकर के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत उत्तम सिंह का, फिल्म का नाम था दिल तो पागल है।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम विभिन्न विषयों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम आपको सुनवाएंगे एक वार्ता, विषय होगा जीवनदायी वृक्ष। वार्ताकार होंगी अंकिता रोज। इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ और फिल्मी नगमे। शुरुआत करते हैं बातचीत से। श्रोताओं, बाल श्रम एक सामाजिक अपराध है। जब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी या काम कराया जाता है, या 14 से 18 के किशोरों से खतरनाक उद्योगों में काम कराया जाता है, तो इसे बाल श्रम कहा जाता है। ये बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बचपन के अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अगर कुछ कारणों की हम बात करें तो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, परिवार की आर्थिक मजबूरी, जागरूकता की कमी और इसके दुष्परिणाम, बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, समाज में गरीबी और अशिक्षा का चक्र बना रहता है। भारत में बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 के तहत बाल श्रम प्रतिबंधित है। बच्चों को शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम बाल श्रम रोकने में विभिन्न प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देना, कानूनों का सख्ती से पालन करना, समाज में जागरूकता फैलाना, बाल श्रम करवाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना। श्रोताओं, बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्हें मजदूरी नहीं बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। बाल श्रम का उन्मूलन प्रत्येक नागरिक और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। ये वो उम्र है जब बच्चों के हाथ में किताबें, सपने और खिलौने होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से समाज में आज भी अनेक बच्चे गरीबी, अशिक्षा और पारिवारिक मजबूरियों के कारण मजदूरी करने को विवश हैं। बाल श्रम का अर्थ है बच्चों से उनकी उम्र के विपरीत श्रम या मजदूरी करवाना। जब कोई बच्चा स्कूल जाने की बजाय किसी दुकान, कारखाने, ढाबे, होटल या अन्य कार्यस्थल पर काम करता है, तो उससे उसका बचपन

0: शिक्षा और बेहतर भविष्य छीना जाता है। इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अवसर मिले, गरीब परिवारों को सहयोग मिले, कानूनों का सख्ती से पालन हो, समाज में जागरूकता बढ़े और हम सभी ये संकल्प लें कि किसी भी बच्चे को मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनके हाथों में मजदूरी के औजार नहीं बल्कि शिक्षा की कलम और सपनों की उड़ान होनी चाहिए। श्रोता, बातचीत हम और भी करेंगे, सुने ये संदेश, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे वार्ता।
1: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: तो लीजिए सुनिए वार्ता। जीवनदायी वृक्ष वार्ताकार हैं अंकिता रोज।
3: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरा आज का विषय है जीवनदायी वृक्ष। प्रकृति मानव जीवन की जननी है और वृक्ष प्रकृति की सबसे अनुपम देन है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व और विकास में वृक्षों का योगदान इतना व्यापक है कि इसके बिना जीवन की कल्पना भी कर नहीं की जा सकती। मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक युग तक वृक्ष मनुष्य के सबसे विश्वसनीय साथी रहे हैं। वे हमें शुद्ध वायु, भोजन, औषधियाँ, ईंधन और अनेक प्रकार के संसाधन प्रदान करते हैं। यही कारण है कि वृक्षों को जीवनदायी वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष केवल मनुष्य के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव, जंतु, पक्षी और सूक्ष्म जीव के जीवन का आधार है। वे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, जल चक्र को नियंत्रित रखते हैं, वर्षा लाने में सहायता प्रदान करते हैं और जलवायु को अनुकूल बनाते हैं। पूरी दुनिया प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों के संकट जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब वृक्षों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। वर्तमान समय में विकास के नाम पर अंधाधुंध वृक्षों की कटाई की जा रही है। इससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है और मानव जीवन संकट की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए वृक्षों के महत्व को समझना तथा उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। वृक्ष प्रकृति का अनमोल उपहार। वृक्ष प्रकृति का ऐसा उपहार है जो बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर दूसरों को देते रहते हैं। वे संवेयन धूप, वर्षा, तूफान और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन बदले में हमें छाया, फल, फूल और शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। वृक्षों का जीवन परोपकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी बनना भी है। वृक्षों के बिना पृथ्वी एक बंजर और निर्जीव ग्रह बन जाएगी। भारतीय साहित्य, संस्कृति और धर्मों में वृक्षों का विशेष स्थान है। संतों, कवियों और महापुरुषों ने वृक्षों की महिमा का वर्णन करते हुए उन्हें धरती का आभूषण बताया है। वृक्षों का वैज्ञानिक महत्व। विज्ञान की दृष्टि से वृक्ष पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जो मानव और अन्य जीवों के लिए जीवनदायिनी है। यदि वृक्ष ना हो तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन का स्तर घट जाएगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा। वृक्ष वातावरण में उपस्थित धूल, धुआं और जहर

गीली गैसों को अवशोषित करके वायु को शुद्ध करते हैं। वे पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव जीवन में वृक्षों का महत्व। ऑक्सीजन का स्रोत। मनुष्य दिन रात श्वास लेता है और इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। पृथ्वी ऑक्सीजन का स्रोत। मनुष्य दिन रात श्वास लेता है और इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। वृक्ष ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। वे हमें जीवन के लिए आवश्यक शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। भोजन का स्रोत। वृक्ष हमें अनेक प्रकार के फल प्रदान करते हैं, जैसे आम, अमरूद, संतरा, सेब, नारियल, केला, अनार आदि। वे फल स्वास्थ्यवर्धक और पोषण युक्त होते हैं। लकड़ी की प्राप्ति। घरों, फर्नीचर, दरवाजों, खिड़कियों और अनेक उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। यह लकड़ी वृक्षों से प्राप्त होती है। ईंधन का स्रोत। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में लोग भोजन पकाने और अन्य कार्यों के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। कागज उद्योग। कागज का निर्माण

घरों, फर्नीचर, दरवाजों, खिड़कियों और अनेक उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। यह लकड़ी वृक्षों से प्राप्त होती है। ईंधन का स्रोत। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में लोग भोजन पकाने और अन्य कार्यों के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। कागज उद्योग। कागज का निर्माण मुख्यतः वृक्षों से प्राप्त लकड़ी के गूदे से किया जाता है। पुस्तकें, कॉपियां, समाचार पत्र और कार्यालयों का कार्य कागज पर आधारित है। पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों की भूमिका। वृक्ष पर्यावरण के सच्चे रक्षक हैं। वे वायु, जल और भूमि को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैसें वायु को प्रदूषित करती हैं। वृक्ष इन गैसों को अवशोषित करके वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण। वृक्ष ध्वनि को अवशोषित करते हैं और शोर को कम करते हैं। सड़क किनारे लगाए गए वृक्ष ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को छानने का कार्य करती हैं, जिससे भूजल की गुणवत्ता बनी रहती है। जल चक्र और वर्षा में वृक्षों की भूमिका। वृक्ष जल चक्र के महत्वपूर्ण घटक हैं। वे वातावरण में नमी बनाए रखते हैं और बादलों के निर्माण में सहायता करते हैं। जहाँ घने वन होते हैं, वहाँ वर्षा अधिक होती है। वृक्षों की कमी से वर्षा का संतुलन बिगड़ जाता है और सूखे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वन क्षेत्रों में जल का संरक्षण भी बेहतर होता है। वृक्षों की जड़ें वर्षा जल को भूमि में समाहित करने में सहायता करती हैं। मिट्टी संरक्षण में वृक्षों की भूमिका। वन क्षेत्रों में जल का संरक्षण भी बेहतर होता है। वृक्षों की जड़ें वर्षा जल को भूमि में समाहित करने में सहायता करती हैं। मिट्टी संरक्षण में वृक्षों की भूमिका। मिट्टी कृषि और जीवन का आधार है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती हैं, जिससे उनका कटाव नहीं होता। वृक्षों के कारण मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, बाढ़ का प्रभाव कम होता है, भूस्खलन की समस्या से छुटकारा मिलता है, मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण रहता है। जैव विविधता और वृक्ष। वृक्ष जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों में हजारों प्रकार के पशु, पक्षी, कीट, सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। यदि वृक्षों का विनाश होगा तो अनेक जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इसीलिए वृक्षों का संरक्षण जैव विविधता की रक्षा के लिए आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों का महत्व। भारतीय संस्कृति में वृक्षों में पीपल को अत्यंत पवित्र वृक्ष माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। बरगद दीर्घायु, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। तुलसी को देवी स्वरूप माना जाता है और अधिकांश भारतीय घरों में इसकी पूजा की जाती है। नीम स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रतीक है। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों को धार्मिक महत्व देकर उनके संरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है। औषधीय वृक्षों का महत्व। वृक्ष औषधियों का विशाल भंडार है। नीम का, जिसका उपयोग ज्यादातर त्वचा रोग, संक्रमण और दंत रोगों में किया जाता है। आंवला विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। डॉक्टर्स उन मरीजों को जिनमें विटामिन सी की कमी पाई जाती है, उन्हीं मरीजों को विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आंवला खाने को बताया जाता है। बेलपत्र पाचन संबंधी समस्याओं में उपयोगी। गिलोय बेल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों में वृक्षों से प्राप्त औषधीय तत्वों का उपयोग किया जाता है। आर्थिक विकास में वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वृक्ष और जलवायु परिवर्तन आज विश्व की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक समस्या है। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। इसी कारण विश्व भर में वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत में एक पेड़ मां के नाम और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन
GIM जैसे बड़े वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

इन अभियानों के तहत वन महोत्सव और राज्य स्तरीय योजनाओं के माध्यम से देश भर में करोड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं। वनों की कटाई एक गंभीर समस्या। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर जंगलों का विनाश हो रहा है। इसके प्रमुख कारण हैं जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगीकरण, खनन कार्य। वनों की कटाई से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। वनों की कटाई करने से पृथ्वी को होने वाले दुष्परिणाम, वर्षा में कमी, तापमान में वृद्धि, सूखा और बाढ़, मिट्टी का कटाव, जैव विविधता का विनाश और जल संकट। वनों की कटाई को रोकने के लिए किए जाने वाले आंदोलनों में से एक आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का मूल चिपको आंदोलन लगभग 300 साल पहले 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। यह ऐतिहासिक घटना पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया का सबसे पहला और बड़ा अहिंसक संघर्ष माना जाता है। इसके मुख्य और प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1730 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह अपने महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता पूरी करना चाहते थे। इसके लिए उनके सैनिक खेजड़ली गांव में खेजड़ी के हरे पेड़ काटने पहुंचे। अमृता देवी का बलिदान। जब सैनिकों ने पेड़ काटने शुरू किए तो गांव की एक साहसी महिला अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों से लिपट गई और कहा, सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, अगर सिर कटने पर भी पेड़ बचता है तो यह सौदा सस्ता है। 363 लोगों का आत्मसर्ग। अमृता देवी के विरोध के बावजूद सैनिकों ने पेड़ों के साथ उन्हें भी काट दिया। इसके बाद उनके परिवार, तीन बेटियों और आसपास के 84 गांवों के कुल 363 बिश्नोई समाज के लोगों, महिलाओं, पुरुष और बच्चे ने पेड़ों से चिपक कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब इस भीषण हत्याकांड की जानकारी जोधपुर के राजा को मिली तो उन्होंने तुरंत खेजड़ी के पेड़ काटने का आदेश वापस ले लिया और बिश्नोई गांव में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का शाही फरमान जारी किया। वृक्षारोपण करने से पर्यावरण संतुलन बना रहता है। प्रत्येक नागरिक को प्रतिवर्ष कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। वृक्ष संरक्षण में विद्यार्थियों की अहम भूमिका। विद्यार्थी राष्ट्र के भविष्य निर्माता है। वे वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, अपने विद्यालयों और घरों में वृक्ष लगा सकते हैं। वृक्ष संरक्षण केवल सरकार का कार्य नहीं है, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। समाज के सभी वर्गों को मिलकर वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। हमें अनावश्यक वृक्ष कटाई रोकनी चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, पौधों की देखभाल करनी चाहिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। वृक्ष हमें अनेक नैतिक शिक्षाएं देते हैं। वे सिखाते हैं परोपकार, त्याग, धैर्य, सहनशीलता, विनम्रता। फल लगने पर वृक्ष झुक जाते हैं, इससे हमें विनम्र रहने की प्रेरणा मिलती है। भविष्य की चुनौतियां और समाधान। यदि वृक्षों की कटाई इसी प्रकार जारी रही तो भविष्य में मानवता को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा। समाधान के रूप में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, वन संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा, जन जागरण अभियान, कठोर कानूनी प्रावधान को अपनाना होगा। वृक्ष वास्तव में जीवनदायी है, वे पृथ्वी पर जीवन के आधार स्तंभ है। मानव जीवन, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जैव विविधता सभी वृक्षों पर निर्भर हैं। वे हमें शुद्ध वायु, भोजन, औषधियाँ, वर्षा, छाया और प्राकृतिक संतुलन प्रदान करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम वृक्षों के महत्व को समझें और उनके संरक्षण का संकल्प लें। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने जीवन में कुछ वृक्ष लगाए और उनकी देखभाल करे तो पृथ्वी को पुनः हरा भरा बनाया जा सकता है। वृक्ष धरती का श्रृंगार है, जीवन का आधार है। जो वृक्षों की रक्षा करता है वही भविष्य की रक्षा करता है। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर और उनका संरक्षण करके आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पृथ्वी का निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद।

वार्ता भी आपने सुनी, जीवनदायी वृक्ष। वार्ताकार थी अंकिता रोज। और आइए अब सुने उदित नारायण की आवाज में सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में बात करते हैं बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता संकट विषय पर। साथियों, जनसंख्या किसी भी देश की शक्ति होती है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि उपलब्ध संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक हो जाए तो वह शक्ति एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। आज बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन, पानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है, यातायात की समस्याएं गंभीर होती जा रही है और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। जंगलों की कटाई, प्रदूषण, जल संकट और भूमि की कमी जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बेरोजगारी और गरीबी जैसी सामाजिक समस्याएं भी जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई हैं। साथियों, भारत आज दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस समस्या का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से नहीं होगा, बल्कि समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। छोटा परिवार सुखी परिवार का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। तो आइए हम सभी ये संकल्प लें कि जागरूकता और एक जागरूक नागरिक बनकर देश के संसाधनों का संरक्षण करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। याद रखिए, जनसंख्या पर नियंत्रण विकास की पहली शर्त है। बातचीत हम और भी करेंगे, आइए सुने ये गीत।
3: तुम यहां क्या कर रहे हो?
4: आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं इंद्रनील ठाकुर। नील,
3: जानती हूँ
4: आप बेस्ट लॉयर हैं, आप मेरा केस लड़ो ना, वरना माया के पापा गुनगुन को ले जाएंगे।
3: तो मैं क्या करूं?

पहले आपने गीत सुना, शान और सुनिधि चौहान की आवाजों में फिल्म का नाम था मैं ऐसा ही हूं। कार्यक्रम में आइए बात करते हैं मानव जीवन के एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू की जिसके बिना स्वस्थ और सुखी जीवन की कल्पना करना कठिन है। जी हां, बात करते हैं चिकित्सा का महत्व विषय पर। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब बीमारी या शारीरिक कष्ट आता है तब चिकित्सा का महत्व और भी बढ़ जाता है। चिकित्सा केवल रोगों का उपचार ही नहीं, बल्कि रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का भी माध्यम है। श्रोताओ, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने अनेक गंभीर बीमारियों का उपचार संभव बनाया है, जिससे करोड़ों लोगों को नया जीवन मिला है। समय पर सही चिकित्सा मिलने से अनेक बीमारियां गंभीर होने से पहले ही नियंत्रित की जा सकती हैं। टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता और संतुलित जीवन शैली भी चिकित्सा व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर महानगरों तक डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सा संस्थान समाज की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। महामारी और आपदा के समय चिकित्सा सेवाओं का योगदान और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, बीमारियों को नज़रअंदाज न करें और समय पर योग्य चिकित्सक से परामर्श लें। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों और अप्रमाणित उपचारों से बचें। तो श्रोताओ, हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और चिकित्सा सेवाओं के महत्व को समझने का संकल्प लें, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए ये सही कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम। आवाजें कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौर और साथियों की।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओ, इस संदेश

श्रोतो, बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो हमें हमारे इतिहास, संस्कृति और पहचान से जोड़ता है। जी हाँ, विरासत योजना। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी विरासत से होती है। हमारे प्राचीन स्मारक, ऐतिहासिक स्थल, कला, संस्कृति, लोक परंपराएं और धरोहरें हमारी अमूल्य संपत्ति है। इन्हें सुरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से सरकार समय समय पर विभिन्न विरासत संरक्षण योजनाएं संचालित करती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक भवनों, पुरातात्विक स्थलों, सांस्कृतिक परंपराओं और स्थानीय कला को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करना है। कई योजनाएं विरासत शहरों के विकास तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर भी केंद्रित है।

साथ ही विरासत केवल पुरानी इमारतों का नाम नहीं बल्कि ये हमारी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और जीवन मूल्यों का भी प्रतीक है। यदि हम अपनी विरासत को सहेज कर रखेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास और गौरवशाली अतीत को जान सकेंगी। अपनी संस्कृति धरोहरों का सम्मान करें, ऐतिहासिक स्थलों की स्वच्छता और सुरक्षा में सहयोग दें और अपनी विरासत को संजोकर रखने का संकल्प लें। जो अपनी विरासत को संभालता है वही अपने भविष्य को मजबूत बनाता है।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और उदित नारायण की, और चलते चलते आइए सुने अभिजीत को। फिल्म का नाम है राज।

यशोदा भी यो वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी सूरत का के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराय की चौपाल में। 7 बजे सुनिएगा जानकारी नीम का पेड़ जीवन है, मिट्टी जांच, बुआई से पहले जरूरी कार्य। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में कृषि संबंधी जानकारियों के अलावा आप सुनेंगे लोकगीत और लोक भजन। फिल्म संगीत सुनिएगा 7:45 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। खेल जगत आप सुनेंगे रात 10 बजे। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत सुनिएगा रात 9:15 पर। कुछ पुराने सदाबहार फिल्मी गाने सुनिएगा रात 10:30 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

मिडियमवेव 326.792 मीटर अर्थात 918 किलोवाट्स पर हम आकाशवाणी सूरतकाल की कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सिराई की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिराय की। हम आकाशवाणी सूरतकर की कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में छह बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। और प्रदेश में बच्चों को दस्त से बचाव और उपचार के लिए कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री बागड़े आज सीकर के जसरासर में शहीद स्मारक में शहीद गोवर्धन सिंह ढाका की प्रतिमा अनावरण के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सीकर, झुंझुनू और नागौर सहित शेखावाटी क्षेत्र

0: के जवानों का देश की तीनों सेनाओं में विशेष योगदान है। राज्यपाल ने शहीद गोवर्धन सिंह डाका के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगी और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए ऊर्जा प्रदान करेगी। कार्यक्रम में राज्यपाल ने शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आज भारत दृढ़ विश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व की अपेक्षाओं का केंद्र बन चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनर्जागरण को भी समान महत्व दिया है। श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश में रिकॉर्ड निवेश आया है और व्यापक बदलाव हुए हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही, हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है, हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है इतनी वैश्विक चुनौतियों के बाद में भी, और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी पॉजिटिव साइड में 0.7% की अभिवृद्धि उसमें हुई है। आज भारत सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
0: आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम के साथ ही हुगली नदी पर 500 नावों में योग सत्र आयोजित करने की योजना है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और सहायता राशि के चेक तथा विशेष योग्यजन को सहायक उपकरण वितरित किए। वहीं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र में लगाए गए शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह शिविर सरकार की सुशासन और जनसेवा की सोच को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य सचिव ने शिविर में आवेदकों से संवाद भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जमीनी स्तर पर, और उसी अनुसार शिविर लग रहे हैं। 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर स्तर पर, सब डिविजनल ऑफिसर स्तर पर, नगर निकायों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें यही निर्देश दिए कि ग्राउंड स्तर पर पहुंचे और लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करें। सुशासन के प्रति राजस्थान सरकार का जो डीप कमिटमेंट है इसको और ज्यादा मजबूत करें।
0: प्रदेश में विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से भी स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज भरतपुर और डीग में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं गृहमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने करौली में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सलुम्बर जिले में कल इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शहरी सेवा शिविर नगर परिषद क्षेत्र में लगाया जाएगा, वहीं ग्रामीण सेवा शिविर कई ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और

0: संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर आज एक कार और डंपर के बीच हुई टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। कार में सवार ये सभी लोग हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले थे और बीकानेर के मुकाम से वापस हरियाणा जा रहे थे। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए नागौर के अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत का आज उनके पैतृक गांव पांचोटा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले उनकी पार्थिव देह विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट लाई गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौड़ ने खेमाराम कुमावत की देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ और कोटा की टीम ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर देवरी गांव के पास एक कंटेनर ट्रक से 2000 किलोग्राम से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया। कंटेनर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत 25 करोड़ रुपए से ज्यादा आकी जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में ये मादक पदार्थ मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाया जा रहा था। प्रदेश में बच्चों को दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए कल से राज्यव्यापी स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। अभियान के तहत विशेषकर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार, स्वच्छता, साफ पीने का पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि देश में डायरिया आज भी बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। गर्मियों और बारिश के मौसम में बच्चे दस्त रोग से अधिक ग्रसित होते हैं और उपचार नहीं होने पर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग में परियोजना निदेशक बाल स्वास्थ्य डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचे हर बार की थीम पर गतिविधियां आयोजित होंगी।
1: इस अभियान के दौरान जैसे दस्त की रोकथाम के संबंध में जो गतिविधियां होती है, शुद्ध पेयजल का सेवन, साफ सफाई, स्वच्छता, इनके संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो हमारे वेरियस लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे इसमें UDH हो गया, PHED हो गया और पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट और हमारा WCD डिपार्टमेंट, इन सबके साथ मिलकर एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रति बच्चा, अगर घर में 5 साल से छोटा एक बच्चा है तो 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली, ये हम घर पर उपलब्ध कराएंगे।
0: प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक PAM का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस माह की बैठक का मुख्य विषय पोषण, संतुलित आहार और स्वास्थ्य तथा बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका रहा। विभाग की शासन सचिव पूनम ने बताया कि इन बैठकों के माध्यम से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास के लिए जन जागरूकता को नई गति देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए परिवारों की सहभागिता को और खासतौर पर पिता की भूमिका को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिलों में आज कहीं आंधी चली तो कहीं हल्की सी मध्यम बारिश हुई। हनुमानगढ़ में सुबह अंधड़ के बाद तेज बरसात हुई, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया। झुंझुनू में भी दोपहर बाद मौसम बदला और कई जगह तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई। चूरू और डीग में आंधी के बाद हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। राज्य के कई अन्य पूर्वी जिलों में भी आंधी और तेज हवाएं चलने तथा कहीं कहीं बारिश के समाचार हैं। इन गतिविधियों से पूर्वी हिस्सों में पारा गिरा है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में आज भी उमस और गर्मी का असर रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभागों में अगले 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। देश भर में 1 जुलाई से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लागू हो जाएगा। राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना में 7,581 करोड़ रुपए से अधिक का अंतरिम आवंटन निर्धारित किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा, जिसे आवश्यकता और मांग के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। इस तरह राजस्थान में इस योजना के लिए कुल 11,581 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध होगी, जो प्रदेश

0: में ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। और प्रदेश में बच्चों को दस्त से बचाव और उपचार के लिए कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। उदयपुर जिले में इन दिनों मानसून की आहट के साथ पर्यटन गतिविधियां बढ़ने लगी है। वहीं जिले में जल संरक्षण, शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण, प्रशासनिक गतिविधियां और जनसरोकारों से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारम्भ किया गया। उदयपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम दूध तलाई क्षेत्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, प्रभारी सचिव टी रविकांत, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई। इसके बाद प्रभात फेरी और कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। उदयपुर में राजस्व और उपनिवेशन विभाग के शासन सचिव और जिले के प्रभारी सचिव टी रविकांत ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आगामी मानसून को देखते हुए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। पेयजल प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, खाद और बिजली आपूर्ति सहित विभिन्न विषयों पर समीक्षा की गई। संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया। मानसून के आगमन से पहले उदयपुर को पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। एक प्रमुख ट्रैवल पोर्टल द्वारा जारी भारत के शीर्ष 15 मानसून पर्यटन स्थलों की सूची में उदयपुर को देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। राजस्थान से केवल उदयपुर और माउंट आबू ही इस सूची में शामिल हुए हैं। सूची में केरल का मुन्नार पहले और गोवा दूसरे स्थान पर है। मानसून के दौरान पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और स्वरूप सागर झीलों के भरने के साथ अरावली क्षेत्र का वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। सज्जनगढ़ स्थित मानसून पैलेस से झीलों, पहाड़ियों और बादलों का दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उदयपुर ने मानसून पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उदयपुर संभाग मुख्यालय पर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उदयपुर संभाग में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने पर चर्चा की। प्रतिनिधियों ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने और बड़ी आबादी को न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग रखी गई है। उदयपुर की बेटी खुशी ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनकर मेवाड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली है। फ्लाइंग ऑफिसर खुशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में प्राप्त की और बाद में बीएन विश्वविद्यालय से बीसीए की पढ़ाई की। खुशी ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट पास कर एसएसबी चयन प्रक्रिया पूरी की और हैदराबाद में पायलट प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका गणतंत्र दिवस परेड के लिए भी चयन हो चुका है। उमरड़ा स्थित साई तिरुपति विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में एमबीबीएस, एमडीएमएस तथा विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को उपलब्धियां प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की गई। विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित

0: किया गया। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब जिराफ लाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। वन विभाग द्वारा जिराफ के लिए विशेष एनक्लोजर बनाए जा रहे हैं। सेंचुरी क्षेत्र में बनाए जा रहे इस परिसर में पर्यटकों के लिए पाथवे और जिराफ के लिए अलग होल्डिंग तथा डिस्प्ले एरिया विकसित किया जा रहा है। परियोजना पर करीब 2,70,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वन विभाग के अनुसार एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत नर और मादा जिराफ का जोड़ा उदयपुर लाया जाएगा। जिराफ के आने के बाद वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उदयपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो प्रदेश रा शूरवीर देश री हिफाजत माए खास काम कीनो। आयुष मंत्रालय 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावण सारू आज औपचारिक कार्यक्रमारी शुरुआत कीनी। बीकानेर जिला री श्री डूंगरगढ़ माए भया सड़क हादसा रे कारण एक ही परिवार रा 6 जना री मौत। अर प्रदेश में बच्चा ने दस्त तू बचावन और इलाज सारू काल स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू करियो चावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज सीकर जिला रा जसरासर माय शहीद गोवर्धन सिंह ढाकारी मूर्त रो अनावरण कीनो। ई मौके श्री बागड़े शहीद गोवर्धन सिंह ढाकारा बलिदान ने याद करता थका कहो कि हमारी शहादत आवती पीढ़ियां ने हमेशा सीख देवेला। राज्यपाल कहो कि राजस्थान शूरवीरां री धरती रही है। वह कहो कि नागौर सीकर और झुंझुनू समेत शेखावाटी हलका रा जवान देश री हिफाजत रा काम माए मोटो योगदान दीनो है। राज्यपाल कार्यक्रम माए शहीद रा परिवार वाला रो ईमान कीनो और स्मारक परिसर माए पौधा रोप्या। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि भारत मजबूत भरोसा भरिया देश रा तौरों सामने आ रहो है। वे आज जोधपुर माए खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 12 साल रा कामकाज री उपलब्धियां रो जिक्र कीनो। शेखावत कहो कि भारत दुनिया री उम्मीदां रो केंद्र बन गयो है और साल 2047 ताई विकसित देश बनवाओड़ी तेजी बढ़ रियो है। वे कहो कि लाड़ला 12 साल माए देश माए जबरदस्त निवेश आयो है और मोटा बदलाव आया है।
2: भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही, हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है, हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है इतनी वैश्विक चुनौतियों के बाद में भी, और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी पॉजिटिव साइड में 0.7% की अभिवृद्धि उसमें हुई है। आज भारत सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: 21 जून ने मनाया जावन वाला 12वा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए आयुष मंत्रालय री ओर आज नई दिल्ली माए औपचारिक कार्यक्रम शुरू करी चिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो इन साल रो मुद्दो स्वस्थ जीवन के लिए योग राखी चियो है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव नई दिल्ली माए खबरनवीसा ने बतायो कि योग दिवस रो खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए कोलकाता रा रेड रोड माथे रखियो जावेला। वे बतायो कि मौके 45 मिनट रो योग प्रोटोकॉल रखियो जावेला। खास कार्यक्रम सा गई हुगली नदी माए 500 नावा माए योग सत्र रखण री योजना है।
3: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर रा सांगानेर माए लगाई जा शहरी सेवा शिविर रो दौरो कीनो। वे शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कर सरकार कानून जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजना रा बारा माए जानकारी हासिल कीनी। मुख्यमंत्री

0: पात्र लोगों ने पट्टा सर्टिफिकेट मददरी रकम रा चेक और विशेष योग्यजन ने जिंदगी आसान बनावन रा साजो सामान दीना। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ही जयपुर विकास प्राधिकरण रा नागरिक सेवा केंद्र में लगाया जा रहा शहरी सेवा शिविर रो दौरो कर व्यवस्थाओं रो जायजो लीनो। ये मौके वे कहो कि ए शिविर सरकार री सुशासन और जन सेवा री सोच ने सांचीकरण माए खास काम कर रहा है। मुख्य सचिव शिविर माए मौजूद लोगों से आगे बातचीत कीनी। वह अहलकारा ने शिविर माए आवन वाला लोगों ने साफ कोई सागे आसान तरीकाओं टेम सर सेवा मुहैया करावन रा हुक्म दीना।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जमीनी स्तर पर, और उसी अनुसार शिविर लग रहे हैं। 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर स्तर पर, सब डिविजनल ऑफिसर स्तर पर, नगर निकायों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें यही निर्देश दिए कि ग्राउंड स्तर पर पहुंचे और लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करें। सुशासन के प्रति राजस्थान सरकार का जो डीप कमिटमेंट है, इसको और ज्यादा मजबूत करें।
0: जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत आज भरतपुर और डीग में लगाई जा शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर रो जायजो लीनो। वह जनताओं सरकार री न्यारी न्यारी योजनावां रो फायदो लेवण री अरज कीनी। गृहमंत्री जवाहर सिंह बेढमी करौली माए व्यवस्थावां रो जायजो लीनो। सलूंबर जिला रा नगर परिषद हलका माए काल शिविर लगाया जावेला, जदके गांवई हलका माए मैथुड़ी झल्लारा की माता सुला जय समंदरी पीलादर सेमारी री सड़कड़ी सराड़ा री चावंडर लसाड़िया री सती की चोरी ग्राम पंचायत माए शिविर लगाया जावेला। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। बीकानेर जिला रा श्री डूंगरगढ़ माए नेशनल हाईवे नंबर 11 माथे आज एक कार रे डंपर री फेंट माए आजावन रे कारण वे हादसाओं एक ही परिवार रा 6 जना री मौत वे की। मरण वाला माए 2 महिलावां, 1 लोग और 3 बच्चा शामिल है, जदक एक टावरी घनी जख्मी वेगी, जिनरो बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल माए इलाज चल रियो है। कार माए सवार ए लोग हरियाणा रा माए फतेहाबाद रा रहवासी हा। असम रा जोरहाट माए भारतीय वायुसेना रा AN-32 विमान हादसा माए वीर गति हासिल करन वाला नागौर रा वायु अग्निवीर खेमाराम कुमावत रो आज मारा गांव पांचोटा माए फौजी मानसा गए दाग करती होचियो। वानी पार्थिव देह खास विमानु जयपुर हवाई अड्डा माथे लाईची। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर री सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौड़ खेमाराम कुमावत री देह माथे फूल चढ़ार वाना श्रद्धा भाव सागे याद कीना। प्रदेश माए बच्चा ने दस्त लागणों बचावण हर दस्त तो मंदा भया बच्चा रा इलाज सारू चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओरों काल स्टॉप डायरिया अभियान शुरू करियो जावेला। 31 जुलाई ताई चालन वाला ई अभियान रा तहत 5 साल री उम्रों छोटा बच्चा माए डायरिया री रोकथाम, टेम सर इलाज, साफ सफाई, पीवण रा साफ पानी और जन जागरूकता सारू न्यारा न्यारा कार्यक्रम रख्या जावेला। चिकित्सा विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि डायरिया आज ही बच्चा रा स्वास्थ्य उंजुड़ी गंभीर चुनौती है। वह कहो कि उनाला और चौमासा माए बच्चा ने दस्त लागण री बत्ती शंका रहवे है और एड़ो भेवन री सूरत माए इलाज नी मिलन पर मौत रो खतरो ही वह है। स्वास्थ्य विभाग माए बाल स्वास्थ्य रो काम देख रहा परियोजना निदेशक डॉक्टर प्रदीप चौधरी बतायो कि अभियान रे दौरान स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार मुद्दा मत है कार्यक्रम रखा जावेला।
2: इस अभियान के दौरान जैसे दस्त की रोकथाम के संबंध में जो गतिविधियां होती है, शुद्ध पेयजल का सेवन, साफ सफाई, स्वच्छता, इनके संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो हमारे वेरियस लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे इसमें UDH हो गया, PHED हो गया और पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट और हमारा WCD डिपार्टमेंट, इन सबके साथ मिलकर एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रति बच्चा, अगर घर में 5 साल से छोटा एक बच्चा है तो 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली, ये हम घर पर उपलब्ध कराएंगे।
0: प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए आज महिला और बाल विकास विभाग की ओर अभिभावक

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक राखी छी। इनरो खास मुद्दों पोषण, संतुलित आहार और स्वास्थ्य तथा बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका राखी छियो। विभाग रे शासन सचिव पूनम बतायो के मीटिंग रे दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विद्यार्थियां रमाए तांसाग केंद्र री आगली कार्य योजना, बच्चा री आंगनबाड़ी केंद्र माए रोजीना हाजिरी, शाला पूर्व शिक्षा कार्यक्रम और पोषण जुड़िया व्यवहार माए बदलाव रे बारा माए चर्चा कीनी। रब मौसम प्रदेश रा उत्तराद उगनी जिला में आज एक कठे कठे आंधी बारिश हुई। हनुमानगढ़ में आज सवारा तेज अंधड़ सा गभी बरसात हो सड़क माथे पानी भर गयो। झुंझुनू में दोपहर पाछ कई ठोणा जोरदार बायरो बाजण सा बिरखा हुई। चूरू और डीग में आंधी पाछ बारिश हुए वणु मौसम ठंडो वे गयो। राज्य रा कई उगनी जिला में आंधी बारिश रा समाचार है। दूजी कानी आतुणी हल्का माए हाल ही उमस और गर्मी रो जोर है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग माए आवता 4-5 दिन ताई आंधी बारिश चालता रहे वन रा आसार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम रे 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फेरू सुन ली रहो। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कहो प्रदेश रा शूरवीर देश री हिफाजत माए खास काम कीनो। आयुष मंत्रालय 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावण सारू आज औपचारिक कार्यक्रम री शुरुआत कीनी। बीकानेर जिला री श्री डूंगरगढ़ माए व्या सड़क हादसा रे कारण एक ही परिवार रा 6 जना री मौत। हर प्रदेश माए बच्चा ने दस्त तू बचावण और इलाज सारू काल स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू करियो चावेला। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमी चैनल है। मीडियम वेव 497.5।
4: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतकर के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, संध्या के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम सुनने सगला परिवारां ने वेद भाई की घनी घनी राम राम, मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, आज आपां बात करांगा बी पेड़ की। जकन ने किया कि भारतीय संस्कृति में केवल एक पेड़ नहीं बल्कि प्रकृति को चिकित्सक भी मान्यो गयो है। हाँ भाइयों, आपां बात कर लाग रहे हाँ नीम के पेड़ की, जो को अपने पर्यावरण, स्वास्थ्य और जीवन को एक अभिन्न हिस्सों है और वो लग भारत के किया के लगभग हर क्षेत्र में पाए जावे। सदियों आयुर्वेद में नीम को विशेष महत्व रही है। इंगी पत्तियां, छाल, फल, बीज और जड़ सारा किसी न किसी रूप में मानव कल्याण खातर सदा ही उपयोगी रहा है और आयुर्वेद में नीम ने रोगों लड़न वाली प्राकृतिक

मूर्ति माने गए है। नीम की पत्तिया में जीवाणुरोधी विषाणुरोधी फफूंदरोधी गुण पाया जावे और ग्रामीण क्षेत्र में तो आज भी लोग किए गए दांतन के रूप में नीम की टहनिया का उपयोग करे यूं दांत मजबूत रहे मसूड़ा की समस्या कम होए। सागी किए गए जिसका चर्म रोग है बंग में भी किए गए नीम बहुत ही लाभकारी मान्य गयो है। फोड़ा फुंसियाँ खुजली एलर्जी और दूसरा त्वचा संबंधी समस्या में नीम का उपयोग किए गए करो जावे। और सागी किसान भाइयों नीम को पेड़ वातावरण ने शुद्ध करण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। वो कार्बन डाइऑक्साइड ने अवशोषित करके ऑक्सीजन प्रदान करे और इनकी घनी छाया गर्मी के मौसम में अपने राहत प्रदान करे। सागी भाइयों नीम प्रदूषण ने कम करने में भी सहायक है। वो कारण है कि सड़क किनारे स्कूला में अस्पतालों में और सार्वजनिक स्थानों पर नीम के पेड़ लगाने की किए गए सलाह सदम देती रही है। और खेती में नीम के महत्व की बात करा तो किसान भैया खातर नीम किसी वरदान कम कोनी। नीम के बीजों प्राप्त जो तेल और खड़ी का उपयोग जैविक खेती में अपना किसान भाई करे और नीम आधारित कीटनाशक फसलों ने नुकसान पहुँचाने वाला कीटाणु के नियंत्रित करे जबकि पर्यावरण और लाभकारी जीवन है अपेक्षाकृत कम हानि पुगावे। भाई नीम की खड़ी माटी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करे और रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता ने भी कई कम करे। और भारतीय परंपरा में किया कि नीम को विशेष स्थान रही है। कई त्यौहार और धार्मिक कार्यक्रमों में किया कि नीम की पत्तियों का उपयोग करो जावे। ग्रामीण समाज में किया कि घर का आंगन में नीम को पेड़ लगाना शुभ मान्य जावे। पुराने टाइम में लोग मानता कि नीम को पेड़ घर के आसपास सकारात्मक वातावरण बनाए रखे और बहुत सारा रोगों की सुरक्षा प्रदान करे। और आज तेजियों बढ़ते शहरीकरण और पेड़ों की कटाई के कारण हरित क्षेत्र जो है वो आप देखा कि कम होने लग रहा है। ऋषि में किया कि नीम वर्गा उपयोगी पेड़ को संरक्षण बहुत ही जरूरी है। अपना अपने घर खेत स्कूल सार्वजनिक स्थान या अपना जटा काम करा बीज या ज़्यादा ज़्यादा नीम का पेड़ लगाना चाहिए। जो प्रत्येक व्यक्ति साल में कम कम एक नीम का पौधा लगावे और देखभाल करे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ो योगदान आपा देश का। तो किसान भाइयों नीम को पेड़ एक पेड़ ही नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा देड़ो एक अमूल्य उपहार है। वो स्वास्थ्य पर्यावरण और कृषि तीनों खातर की एक लाभदायक है। तो किसान भाइयों बातचीत आपा और करशा पर अब टेम है एक भजन सुनगो तो थाना सुनावा सुरेश माथुर को गायडो ओ भजन।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान भाइयों, अच्छी फसल लेने खातर किए गए खेत की मट्टी की जी जांच है वहाँ ने टेमो टेम पर करानी बहुत ही जरूरी है। मट्टी की जांच वहाँ ने आज जानकारी मिले कि मट्टी में किसा किसा पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है और किसा पोषक तत्वों की कमी है। और मट्टी की जांच एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जगह के माध्यमों किए गए मट्टी को पीएच मान कार्बन पदार्थ नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास और दूसरा जगह सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति को आप सही पतो लगा सका। और मट्टी की जांच की है किसान भाई वो बिंग जरूरत क्यों है, क्योंकि फसल खातर किए गए सही उर्वरक मात्रा यूँ निर्धारित हो है और उत्पादन लागत अपनी कम हो जाए। मट्टी की उर्वरकता है वह बनी रहे, फसल का उत्पादन अपनों किए गए ज़्यादा हुए और रासायनिक उर्वरकों का जो अनावश्यक उपयोग है व्यू किएगा अपनों बचाव हुआ है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में किएगा अपने बहुत ही सहायता मिले। तो भाइयों मट्टी को अपना जांच में भेजन खातर नमूनों किया ले सी पर बात कर लिया। तो मट्टी की सही जांच खातर नमूनों सही तरीकों लेना बहुत ही जरूरी है। खेत में किए गए न्यारा न्यारा स्थानों में अपना मट्टी लेनी है। मट्टी की जी खुदाई है वह खुरपी फावड़ा या लकड़ी या प्लास्टिक की खुरचनी अपने करनी चाहिए और नमूनों 15 ले गए 20 सेंटीमीटर की गहराई पर अपने लेनो चाहिए। और उबड़ खाबड़ रास्ता सिंचाई की नाली डोली खाद का ढेर पेड़ों के आसपास अपने नमूनों नहीं लेना चाहिए और इसी जगह अपने नमूनों लेना चाहिए जठे माटी पूरा खेत को प्रतिनिधित्व करती हुए और बरसात के तुरंत बाद अपन नमूनों नहीं लेना चाहिए और माटी को नमूनों लगभग किए के बुआई गए एक महीने पहले अपने ले लेनी चाहिए। नमूनों इकट्ठो करने खातर अपन प्लास्टिक की बाल्टी या ट्रे या प्लास्टिक को टब जो को है वो आप उपयोग कर सका। बिंग बाद किए गए माटी ने छिया में सुखा आगे साफ थैली में अपन भर लेनी है और थैली पर सूचना पट जो को लगेड़ो है बी पर किसान भाई को नाम खेत को विवरण फसल पतो मोबाइल नंबर और लिख गया अपन किए गए जांच खातर भेज देनो है। और सागे किसान भाइयों सरकार द्वारा किए गए किसानों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी उपलब्ध कराया जाओ है। इन कार्ड में किए गए माटी की पोषक स्थिति और उर्वरक संबंधी सिफारिश करी जाओ है। माटी स्वास्थ्य कार्ड किए गए किसान भाई सही मात्रा में उर्वरक को प्रयोग कर सके और आपकी खेती ने किए के ज़्यादा लाभदायक बना सके। और बात करा माटी जांच का जो लाभ अपन हुआ है वह के

तो बीउ किएगा अपनी फसल के उत्पादन में वृद्धि हुए, और जब पौधा आवश्यकता अनुसार पोषण मिले तो बांगी वृद्धि की है बा बेहतर हो जाए, सागे उत्पादन अपनों बढ़ जाए। सागे किए का अपने जगह उर्वरक की लागत है बा किसान भाइयों कम हो जाए, अपन अनावश्यक उर्वरक किए के कौन देना पड़े, और मट्टी का जो को स्वास्थ्य है वो सुरक्षित रहे, संतुलित पोषण किए के मट्टी की गुणवत्ता लंबे टाइम तक बनी रहे, और पर्यावरण को क्या संरक्षण हुए, सागी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होने वालों प्रदूषण में भी किए के कमी आवे। इन खाते किसान भाइयों साल में 2 या 3 साल में किए गए मिट्टी की जांच अपने जरूर करा लेनी चाहिए। मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खाद उर्वरक को अपना प्रयोग करना चाहिए, जैविक खाद और हरी खाद को उपयोग भी अपन किए के बढ़ाना चाहिए, और सागे एक अच्छो फसल चक्र किसान भाई अपना लेवे, और टेमो टाइम पर किए के कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेता रहे। तो किसान भाइयों मिट्टी की जाँच केवल एक प्रक्रिया ही को नहीं बल्कि सफल और लाभकारी खेती की आधारशिला है, और आपने मिट्टी ने जो स्वस्थ रखांगा और सही पोषण दे पावांगा तो आपने किएगा अपनी फसल को अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त होसी। तो किसान भाइयों

संतुलित पोषण क्या है, माटी की गुणवत्ता लंबे टाइम तक बनी रहे और पर्यावरण को क्या संरक्षण हुए, सागी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हो नालों प्रदूषण में भी किए के कमी आवे। इन खाते किसान भाइयों साल में 2 या 3 साल में किए गए माटी की जांच अपने जरूर करा लेनी चाहिए। माटी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खाद उर्वरक को अपना प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद और हरी खाद को उपयोग भी अपन किए के बढ़ाना चाहिए और सागे एक अच्छो फसल चक्र किसान भाई अपना लेवे और टेमो टाइम पर किए के कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेता रहे। तो किसान भाइयों माटी की जाँच केवल एक प्रक्रिया ही को नहीं बल्कि सफल और लाभकारी खेती की आधारशिला है और आपने माटी ने जो स्वस्थ रखांगा और सही पोषण दे पावांगा तो आपने किए गए अपनी फसल को अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त होसी। तो किसान भाइयों बातचीत आप और कर सियाँ पर अब थाना सुना दिया सुभाष कटारिया की गाड़ी आलोक रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान भाइयों, बुआईयों पहला किए गए आप जो सही तैयारी कर लेवा तो फसल के उत्पादन की जकी वृद्धि है बा कई गुना बढ़ जाए। तो आप आज बात करा बुआईयों पहला किसी किसी बातों को अपन की एक ध्यान रखना चाहिए। तो सारों पहला तो अपन खेत की जकी तैयारी है बस सही तरीके को करनी चाहिए। खेत की गहरी जुताई करने की एक माटी भुरभुरी बने, सागी खरपतवार नष्ट हुए और माटी में वायु संचार बढ़े और जुताई के बाद पाटो लगा के खेत ने किए के समतल कर लेना चाहिए। और बोयो पहला किया के माटी की जांच जरूरी है जिके की बात अपन लारे करी चुके हैं, जिको किए के पोषक तत्वों की अपन जानकारी मिले और आवश्यकता अनुसार उर्वरकों को प्रयोग हुए और अपन के उन्नत बीजों को चयन करना चाहिए। अच्छी फसल का तर किया के गुणवत्ताला और प्रमाणित बीजों को अपन चयन करना चाहिए। बीज हमेशा विश्वसनीय स्रोत अपन खरीदना चाहिए। क्षेत्र और मौसम के हिसाब अपन उपयुक्त किस्मों को चुनाव करना चाहिए। सागी किया के बीज खरीदगी अपन प्रमाणित रसीद भी ले लेनी चाहिए और बीज उपचार अपना के फसल ने अपना अनेक

रोग और कीटों बचास का बुआयो पहला बीजा ने फफूद नाशी या जैविक उपचार किए के कर लेना चाहिए। और खेत में सड़ेड़ी गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को अपन उपयोग करना चाहिए। यूँ क्या माटी की संरचना शुद्ध है और लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा रहे, पीएच मान जो को है माटी को संतुलित रहे। और जे सिंचित खेती अपना करनी है तो बुआयों पहला नहर, पाइपलाइन, मोटर, ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम की अपन जांच कर लेनी चाहिए, जगहों के टाइम पर पानी अपन उपलब्ध हो सके। और खेत में मौजूद खरपतवार ने जुताई के दौरान नष्ट कर देना चाहिए। यूँ फसल के शुरुआती विकास में पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा जगी है बा कम हो जाए। और किसान भाइयों, बुआई पहला मौसम विभाग की सलाह और बरसात को पूर्वानुमान को वह बी पर अपना ध्यान कर लेना चाहिए और सही टाइम पर बुआई करनू अंकुरण अच्छा हो और फसल को उत्पादन अपना बढ़े। और माटी परीक्षण के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकताओं अपन आकलन करना चाहिए और संतुलित उर्वरक का उपयोग हूँ फसल जगी है बा स्वस्थ रहे। सागी जो अपने कृषि यंत्र है जिया ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर और दूसरा कृषि यंत्र ने के टाइम रहते मरम्मत या बाकी सर्विस अपन करा लेनी चाहिए। यूँ क्या बुआई के टाइम अनावश्यक देरी होनी हुए और कृषि विज्ञान के अंदर कृषि विभाग और कृषि विशेषज्ञों अपन लगातार रायशुमारी करता रहना चाहिए और नई तकनीक अपन अपनाना चाहिए और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही सही मार्गदर्शन जो है वो उत्पादन बढ़ाने में सहायक हुए। तो किसान भाइयों, बुआई पहला खेत की तैयारी, माटी परीक्षण, बीज चयन, बीज उपचार, खाद प्रबंधन, सिंचाई व्यवस्था वर्ग का काम टाइम पर पूरा करके अपनी फसल को जो उत्पादन है वो बढ़ा सका। तो किसान भाइयों, बातचीत आपा और कर सा पर अब थाना सुनावा मीनाक्षी शर्मा की आइडिया लोक रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान भाई, वो बात करा ग्वार की फसल की, तो ग्वार एक महत्वपूर्ण दलहनी और औद्योगिक फसल है। जकई मांग किया कि देश विदेश में रेवे और अब तो आ मांग बहुत ही तेजी बढ़ने लग रही है और इनकी खेती कम पानी वाले क्षेत्र में भी किसान भाई आसानी कर सके। इन खातर किया गया राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के किसानों खातर किया गया लाभकारी फसल मानी गई है। ग्वार की खेती खातर किया गया गर्म शुष्क जलवायु सारों ज़्यादा सही रेवे और अच्छी पैदावार खातर तापमान जो को है वो 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हल्की और मध्यम दोमट माटी इन खातर उपयुक्त रहे। सागी खेत में किया गया पानी निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और माटी को पीएच मान 7-8 के बीच में अच्छो मान्यो गए। और खेती शुरू करने पहला किया गया खेत की 2-3 बार अच्छी जुताई करनी चाहिए। अंतिम जुताई के टाइम 8-10 टन गोबर की सड़ेड़ी खाद प्रति हेक्टेयर अपन रला देनी चाहिए और खेत ने समतल अपन बना के रखना चाहिए ताकि क्या है कि पानी को सही प्रबंधन हो सके और अपनी सिंचाई पानी की अपना बचत भी कर सकें। और उन्नत किस्म की बात करें तो किसान भाई वो अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों को अपना चयन करना चाहिए। जी हाँ, RGC 936, HG 365, RGC 1066 और पूसा नवबहार यह किस्म ज़्यादा उत्पादन देने वाली और रोग प्रतिरोधी मानी जावे। बात करें किसान भाइयों, ग्वार की फसल की बुआई की सही टाइम की, तो राजस्थान और उत्तरी भारत में ग्वार की बुआई जून के अंत लेके जुलाई के मध्य तक करना सारों सही रहे। बीज मात्रा जी की है वह 15-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 4-5 किलो प्रति बीघा अपन रखनी है। बुआई पहला बीज ने राइजोबियम कल्चर और फफूदनाशी दवाओं अपन उपचारित करना चाहिए। कतारों कतार की दूरी अपन 45 सेंटीमीटर रखनी है। पौधों पौधे की दूरी 15-20 सेंटीमीटर अपन रखनी है। और किसान भाइयों, ग्वार दलहनी फसल होने के कारण नाइट्रोजन कम लेवे, लेकिन प्रारंभिक वृद्धि खातर किया गया थोड़ी मात्रा जरूरी हुए और सामान्य सिफारिश जी की है 22 किलो नाइट्रोजन 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर।

टियर है, और उरकान ने बुआई के टाइम ही अपन खेत में किए के रेट देना चाहिए, और ग्वार में कम पानी में भी किए के अच्छी फसल अपना मिल जाए। वर्षा आधारित खेता में किए के सामान्य बारिश पर्याप्त हुए, जे सूखो पड़ जाए तो फूल आने पर और फलियां बढ़ने के टाइम सिंचाई करनी चाहिए। और कई बार किए के जे ज़्यादा पानी अपन दे दें तो फसल को नुकसान होने की संभावना भी किए के बनी रहे। बुआई के 20-25 दिन बाद अपन पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर दूसरी निराई 40 दिन बाद करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण करने के उसी के पौधे की वृद्धि किसान भाइयों तेज हो सी, उत्पादन में बढ़ोतरी रह सी। और रोग और कीट नियंत्रण की जो बात करें तो इंगमा ग्वार की फसल जी है बिंगमा लागन वाला मुख्य रोग झुलसा रोग जड़गलन है। नियंत्रण करने खातर किया गया अपना प्रमाणित बीज का उपयोग करना चाहिए, सागी बीज उपचार किए गए जरूर करना चाहिए। मुख्य जगह इंगा लागन वाला कीट है महू और फली चेदक है। नियंत्रण करने खातर कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अपने दवाइयों का छिड़काव जो है वो करना चाहिए। कटाई और उत्पादन की बात करें जी अगर होनी है बा फली सूख कर भूरे रंग की हो जाए तो अपने कटाई करनी चाहिए। औसत उत्पादन जो है अपने 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलेगा, और उन्नत तकनीक अपनाने किए गए यूँ ज़्यादा भी अपना उत्पादन जो है वो मिल सके। और किसान भाइयों अपने टाइम पर बुआई करनी चाहिए, उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, संतुलित उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन अपन अपनाना चाहिए, रोग और कीट जगह है वह अपने नियंत्रित करना चाहिए। ऐ उपाय अपना के किसान भाई ग्वार की खेती में ज़्यादा उत्पादन और बेहतर लाभ प्राप्त कर सके। तो किसान भाइयों अब इन जानकारी के बाद थाना जानता जानता सुना दिया ओ गीत।

भाई वो अपना कने बाज़ार भाव भी आइडा है तो बाकी बात कर लिया। सारों पहला बात करा सूरतगढ़ अनाज मंडी के भाव की। तो अटकड़ा का भाव रहा 2511 रुपया प्रति क्विंटल, जो का भाव रहा 2100 रुपया प्रति क्विंटल, चना का भाव रहा 5050 हो लेके 5250 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों का भाव रहा 6755 हो लेके 7223 रुपया प्रति क्विंटल, ग्वार का भाव रहा 4052 हो लेके 5615 रुपया प्रति क्विंटल। सूरतगढ़ अनाज मंडी के श्रीगंगानगर अनाज मंडी के भाव की जी बात करा तो सरसों का भाव आटा रहा 7100 रुपया लेके 7221 रुपया प्रति क्विंटल, चना का भाव रहा 5200 लेके 5560 रुपया प्रति क्विंटल, और कणक का भाव रहा 2735 रुपया प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों इंग सा गई आज को टाइम ही तो ही वेद भाई ने देव आ गया। राम राम सा राम राम।

क्रमशः भी चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतकर के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम तुम बिन, आवाजें सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की।

शतौली चिप्स ने कुणाल गंजवाला की आवाज में क्योंकि फिल्म का ये गीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरत का की कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज की फिल्म है संगम। स्वीकार करें अपने दोस्त राजेंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। संगम 1964 में बनी एक भारतीय रोमांटिक संगीतमय ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन, निर्माण और संपादन राज कपूर के आर.के. स्टूडियोज में किया गया था। इसकी पटकथा इंद्रराज आनंद ने लिखी थी और आर.के. फिल्म्स ने महबूब स्टूडियो और फिल्मिस्तान के साथ मिलकर इसमें राज कपूर, वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही इफ्तिखार राज बेहरा, नाना पालसीकर, ललिता पवार, अचला सचदेव और हरी शिवदासानी सहायक भूमिकाओं में हैं। साथियों, ये एक पायलट सुंदर यानी कि राज कपूर की कहानी है, जो युद्ध से मृत मान लिए जाने के बाद घर लौटता है और अपनी प्रेमिका राधा वैजयंती माला से शादी कर लेता है, जिसे वो लंबे समय से प्यार करता था। उसे इस बात का पता नहीं होता कि राधा उसके सबसे अच्छे दोस्त गोपाल यानी कि राजेंद्र कुमार से शादी करने की योजना बना रही थी। साथियों, शंकर जयकिशन का मधुर संगीत

शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के दिल को छू लेने वाले गीत और मुकेश मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों ने इस फिल्म को अमर बना दिया। तो आइए शुरू करते हैं संगम के सदाबहार गीतों का ये खूबसूरत सफ़र इस गीत के साथ।

भावना को किसी खत में समेटकर उस तक पहुंचा दिया जाए और उससे हर बात कह दी जाए जो दिल के सबसे करीब हो। यही था इस गीत में ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। आगे बात करते हैं, संगम पहली भारतीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेशों में लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड सहित कई स्थानों पर हुई थी। ये उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी और उस समय तक किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे लंबी अवधि की फिल्म थी। फिल्म प्रेम, वफादारी, बलिदान और रिश्तों के लिए गए फैसलों के परिणामों जैसे विषयों को दर्शाती है। ये किरदारों द्वारा अपनी जटिल परिस्थितियों से जूझते हुए सामना किए जाने वाले संघर्षों और भावनात्मक उथल पुथल को चित्रित करती है। अपनी कहानी और किरदारों के कारण फिल्म को साहसिक और अपने समय से बहुत आगे माना गया। इन सभी चीजों ने फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता में बहुत योगदान दिया। श्रोतो, प्यार एक ऐसा एहसास है जो इंसान को दुनिया की हर खूबसूरती से जोड़ देता है। जब दिल में मोहब्बत हो तो हर मौसम सुहाना और हर गीत अपना सा लगने लगता है, कुछ इस तरह।

साथियों, संगम फिल्म 18 जून 1964 को रिलीज हुई। एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जिसने दुनिया भर में 8 करोड़ की कमाई की, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और मुगले आजम के बाद दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह फिल्म 1964 में सोवियत संघ में रिलीज हुई थी। इसने माइकल बे की युद्ध फिल्म पर्ल हार्बर को प्रेरित किया और दासारी नारायण द्वारा तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में स्वप्ना के रूप में रिमेक किया। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं दोस्तों, मोहब्बत में कभी कभी शरारतें भी उतनी ही जरूरी होती हैं जितनी गंभीर बातें। ये गीत प्रेम की उसी मीठी छेड़छाड़ और मनोहार का खूबसूरत उदाहरण है।

ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। साथियों, जब दो दिल एक दूसरे को पूरी तरह अपना मान लें, तब रिश्तों की गहराई शब्दों से कहीं आगे निकल जाती है। ये गीत उसी अटूट प्रेम का संकेत है, आइए सुनें।

और साथियों, बारी है उस गीत की जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे दर्द भरे गीतों में गिना जाता है। जब दोस्ती और मोहब्बत के बीच दिल बंट जाए, जब भरोसा टूटने लगे और जब अपने ही अजनबी लगने लगे, तब जो दर्द पैदा होता है वही इस गीत की आत्मा है। मुकेश जी की आवाज का दर्द इस गीत को सुनने वाले हर दिल तक पहुंच जाता है।

दोस्तों, संगम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों की गहराइयों को समझने वाली एक भावनात्मक यात्रा है। यही वजह है कि 6 दशक बाद भी इसके गीत उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपनी रिलीज के समय थे। राज कपूर का निर्देशन, राजेंद्र कुमार की संजीदगी, वैजयंती माला की अदाकारी और

शंकर जयकिशन का जादुई संगीत, इन सब ने मिलकर संगम को हिंदी सिनेमा की अमर फिल्मों की श्रेणी में ला खड़ा किया। आज का सफर इतना ही। एक ही फिल्म से कार्यक्रम से अब अपने दोस्त राजेंद्र शर्मा को आगे दें। नमस्कार।

इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, रात 10:30 पर कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे। अभी वक्त है स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन का मुकाबला काबो वर्ड से होगा। स्वीडन ने ट्यूनिशिया को और जर्मनी ने कुरासाओ को मात दी। जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला ड्रॉ। महिला हॉकी नेशंस कप में भारत ने किया जीत के साथ आगाज। रोमांचक मुकाबले में अमेरिका को 3-2 से हराया। ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना और एशियन चैंपियन प्रीति पवार ग्रां प्री उस्तिनाद लाबेन प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करेंगी। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराकर शानदार अंदाज में प्रतियोगिता की शुरुआत की।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और काबो वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। स्वीडन ने ट्यूनिशिया को और जर्मनी ने कुरासाओ को मात दी। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
1: मैच की शुरुआत में नीदरलैंड्स की टीम जापान के डिफेंस पर हावी नजर आई। नीदरलैंड्स की ओर से एक के बाद एक अटैक किए गए, लेकिन जापान के गोलकीपर जियोन सुजुकी ने कई शानदार बचाव किए। मैच के 50वें मिनट में रयान ग्रोवेनबर्ग की फ्री किक पर नीदरलैंड के कप्तान वर्जिल वैन डाइक ने बेहतरीन हेडर लगाकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। वहीं मुकाबले के 57वें मिनट में नकामुरा ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। 64वें मिनट में समरविल ने शानदार कर्लिंग शॉट लगाते हुए जापान गोलकीपर को छकाया और नीदरलैंड्स को मुकाबले में 2-1 से आगे कर दिया। मुकाबले

0: 88वें मिनट में जापान को कॉर्नर मिल गया। कोकी ओगावा शॉट डाइची कामदा पर पहुंचा और उन्होंने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। इसके साथ ही जापान ने स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं लग सका और दोनों टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा।
1: It's Ogawa. It's Bedlam. Here in Dallas.
0: वहीं मोंटेसरी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्वीडन की ओर से यासीन अयारी, अलेक्जेंडर इसाक और विक्टर योरकेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और टीम की बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले हाफ में ही स्वीडन की ओर से यासीन अंसारी ने पहला गोल करते हुए 1-0 की बढ़त हासिल की। इसके कुछ समय बाद अलेक्जेंडर इसाक ने स्कोर 2-0 कर दिया। हालांकि ट्यूनिशिया ने भी वापसी की कोशिश की और उमर रेकिक ने हैनिबल मेजबरी के क्रॉस पर हेडर लगाकर अपनी टीम के लिए पहला गोल करते हुए स्कोर को 2-1 कर दिया। इसके बाद स्वीडन ने जबरदस्त खेल दिखाया और मुकाबले को एक तरफा कर दिया। योरकेस ने आसान फिनिश करते हुए स्कोर 3-1 कर दिया। इसके बाद मैटियास स्वानबर्ग ने स्वीडन के लिए चौथा गोल और यासीन अयारी ने आखिरी गोल करके टीम को 5-1 से जीत दिलाई। जबकि चार बार की विश्व चैंपियन जर्मनी ने फीफा विश्व कप का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया है। जर्मनी ने ई ग्रुप के पहले मैच में कुरासाओ के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 7-1 से जीत दर्ज की। जर्मनी की ओर से फेलिक्स नेमचा, निको काई हेवर्ट्स, जमाल मुसियाला, नेथेनियल ब्राउन और डेनिस उन्दाव ने गोल किए। कुरासाओ के लिए लिवानो कोमेंसिया ने शानदार गोल कर टीम के लिए इतिहास रच दिया। यह इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि कुरासाओ क्षेत्र और आबादी दोनों में ही अब तक सबसे छोटा देश है जिसने विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। एक अन्य मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।

0: कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर, जहां भारत ने शानदार अंदाज में प्रतियोगिता का आगाज किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप का आगाज जीत के साथ किया। भारत ने मैच में 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पुल ए के मुकाबले में अमेरिका को 3-2 से हराया। सुनते हैं रोमांचक मुकाबले पर एक रिपोर्ट।
1: हॉकी नेशंस कप में भारतीय टीम की ओर से मुकाबले में दीपिका ने 2, नवनीत कौर ने 1 गोल किया। दीपिका को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अमेरिका ने मैच की शानदार शुरुआत की और एशले सेसा ने 4th मिनट में फील्ड गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। अमेरिका ने महज 3 मिनट बाद ही अपनी बढ़त 2 गुनी कर ली। मेडलिन जिमर ने 7वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत पर शुरुआती दबाव बना दिया। 2 गोल से पीछे चल रही भारतीय टीम ने धीरे धीरे अटैक में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। दूसरे क्वार्टर में उनकी कोशिशें रंग लाई जब ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट दीपिका ने 17वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को सफलतापूर्वक गोल में बदलकर स्कोर कम किया और भारत को मैच में वापस ला दिया। मोमेंटम भारत के पक्ष में जाता रहा और क्वार्टर के बीच में उन्हें एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने 24वें मिनट में फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और पेनल्टी कॉर्नर को सफलतापूर्वक गोल में बदलकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। इसके बाद भारत ने दबाव कायम रखा और हाफ टाइम से पहले शानदार वापसी की। मैच के 28वें मिनट में नवनीत कौर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए भारत को पहली बार मुकाबले में बढ़त दिलाई, जो मैच के अंत तक कायम रही। वहीं दूसरे हाफ में भारत और अमेरिका ने गोल की तलाश में जोरदार मुकाबला किया। दोनों टीमों को मैच के दौरान 6-6 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन बाकी 2 क्वार्टर में किसी भी डिफेंस ने कोई और गोल होने नहीं दिया। भारत ने आखिरी स्टेज में अपनी बढ़त बनाए रखी और जीत के साथ 3 पॉइंट्स हासिल किए। इस जीत के बाद भारत 3 पॉइंट्स के साथ पूल ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत का अब अगला मुकाबला 16 जून को जापान से होगा, जो पूल ए में इस समय पहले स्थान पर मौजूद है। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैट।
0: और अब बात बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ग्रांप्री उस्तिनाद लाबेम प्रतियोगिता के लिए 12

0: सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। ये प्रतियोगिता चेक गणराज्य में 17 से 21 जून के बीच खेली जाएगी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: इस 12 सदस्यीय टीम में ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन और मौजूदा एशियन चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट प्रीति पवार जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। भारत 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में तेजी ला रहा है। भारतीय दल में देश के कई प्रमुख बॉक्सर शामिल हैं, जिनमें कॉमनवेल्थ गेम्स के ज्यादातर वेट कैटेगरी के टॉप रैंक वाले एथलीट्स भी हैं। ये प्रतियोगिता आगामी बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की तैयारियों और कॉम्बिनेशन को परखने तथा यूरोप के प्रतिस्पर्धी माहौल में मजबूत विरोधियों के खिलाफ खेलने का एक अहम मौका है। ग्रैंड प्री उस्ती नाद लाबेम यूरोप के सबसे पुराने बॉक्सिंग इवेंट्स में से एक है, जो 5 दशकों से ज्यादा समय से ग्लोबल कैलेंडर का हिस्सा रहा है। इसे वर्ल्ड बॉक्सिंग के नियमों के तहत यूरोपियन बॉक्सिंग गोल्ड टूर्नामेंट के तौर पर आयोजित किया जाएगा। पुरुषों और महिलाओं के 10-10 वेट कैटेगरी में होने वाला ये इवेंट भारतीय बॉक्सरों के लिए एक अहम पैमाना साबित होगा। इस प्रतियोगिता में लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में और प्रीति पवार 54 किलोग्राम महिला टीम की अगुवाई करेंगी, जिसमें साक्षी 51 किलोग्राम, प्रिया 60 किलोग्राम और परवीन 65 किलोग्राम वर्ग में शामिल हैं। पुरुष टीम में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम वर्ग में, सचिन सिवाच 60, आदित्य प्रताप 65, सुमित 70, अंकुश 80, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम वर्ग और नरेंद्र 90 से अधिक किलोग्राम वर्ग में शामिल हैं। स्पोर्ट्स कैन के लिए शक्ति सिंह।
0: भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने आज घोषणा की कि वे 19 जून को होने वाली दोहा डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: दोहा डायमंड लीग में भाला फेंक की प्रविष्टियों में नीरज चोपड़ा का नाम शामिल है, जबकि 12 जून को जारी सूची में उनका नाम नहीं था। उन्होंने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 चैंपियन और पेरिस ओलंपिक 2024 के रजत पदक विजेता 28 वर्षीय चोपड़ा ने 2025 विश्व चैंपियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं लिया है। आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए रविवार को घोषित भारतीय एथलेटिक्स टीम में भी चोपड़ा का नाम सशर्त शामिल किया गया है। उन्हें इसके लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का 82.61 मीटर का क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करना होगा। अगर वह ग्लासगो में अगले महीने होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं तो भारत के 3 भाला फेंक खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। रोहित यादव और यशवीर भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 9 के जरिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दोहा डायमंड लीग में मौजूदा विश्व चैंपियन त्रिनिदाद और टोबैगो के केशॉन वालकोट और हाल ही में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का थ्रो फेंकने वाले श्रीलंका के रोमेश तरंगा पथिरागे भाग लेंगे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात क्रिकेट की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को शानदार अंदाज में प्रतियोगिता की शुरुआत की। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। आइए सुनते हैं इस महामुकाबले पर ये रिपोर्ट।
3: बर्मिंघम के एच बेस्टन में भारतीय महिला टीम ने 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए। टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारत की शुरुआत निराशाजनक रही। भारतीय टीम को महज 18 के स्कोर तक 2 झटके लग गए थे। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ 63 गेंद में 91 रन की साझेदारी करते हुए भारत को मुश्किल परिस्थिति से निकाला। मंधाना 44 गेंद में 68 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंद में 36 रन की सधी हुई पारी खेली। दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने 21 गेंद में 45 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। दीप्ति ने नाबाद 12 और ऋचा घोष ने ताबड़तोड़ 34 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट लिए। 171 रन के लक्ष्य के जवाब में मुनीबा अली और गुल फिरोजा की सलामी जोड़ी ने पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद टीम निरंतर अंतराल पर विकेट खोती रही और सिर्फ 106 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट निकाले, जबकि श्री चरणी ने 3 विकेट लिए। एक विकेट शेफाली शर्मा ने अपने नाम किया। मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा ने कहा कि उन्होंने मुकाबले में प्रोसेस पर ध्यान दिया।
4: आई थिंक जब यंग दीप्ति से अभी सीनियर दीप्ति में जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक प्रेजर कंडीशंस एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स। जहां से मैंने खत्म किया था आई थिंक वहां से ही शुरू किया है। सो अच्छा लग रहा है, बस कि अपने जो प्रोसेस है उस पे फोकस कर रही हूँ। वही चीज जो प्रैक्टिस में करती हूँ वही मैच में अप्लाई कर रही हूँ। दोस थिंग्स हेल्प मी और बस ये

0: कि इसे आगे जाना है, रुकना नहीं है और डे बाय डे अच्छा करना है।
1: विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने कहा कि मैच में अहम साझेदारी के लिए रनिंग बिटवीन द विकेट बेहद जरूरी है।
2: स्टार्टिंग में जब मेरा चौका लगा पहला बॉल, तभी मेरा पता चला कि आज मेरा दिन है, क्योंकि जब कट और ऐसा आ जाता है एक अच्छा शॉट तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है। रनिंग बिटवीन द विकेट वो सब में हम ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर चौका भी नहीं आ रहा, छक्का नहीं आ रहा है तो हम कैसे भागे, हम जितना पुश कर सकते हैं। आई थिंक वो हमें हेल्प किया है गेम में रहने के लिए। जैसे 19 और 20 ओवर जैसे हमने बात किया कि अभी ऑल आउट जाना है, क्योंकि जितना स्कोर आएगा रन बोर्ड में उतना हमारे लिए अच्छा है, टीम के लिए, बॉलर्स के लिए हेल्प होगा।
1: इस जीत के साथ ही भारत ने महिला T20 विश्व कप में रनों के अंतर से अपनी 5वीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भारत 17 जून को लीड्स में नीदरलैंड से खेलेगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
3: उधर दाम्बुला में ट्राई नेशन एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज में आज रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को हराया। इस मैच का फैसला सुपर ओवर के जरिए किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम 265 रन पर सिमट गई। सूर्यांश ने सर्वाधिक 72 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 265 रन ही बना सकी। सदीरा समरविक्रमा ने सर्वाधिक 93 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने उतरे श्रीलंका ने 16 रन बनाए, जवाब में भारत 9 रन ही बना सकी। और अब बात एथलेटिक्स की। त्रिवेंद्रम में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में कल भारत की पूजा ने महिलाओं के हाई जंप इवेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। 19 वर्षीय पूजा ने 1.81 मीटर की ऊंचाई के साथ बेहतरीन जीत हासिल की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।

0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, या अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना

0: बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

0: निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा
2: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से सुन रही हैं। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह।

भूपेंद्र सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आँख नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में, नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पर डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी।
0: जी अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगा

0: जैसे आप लेटेंगे कंसंट्रेट कर लीजिए, अपने आप को थॉटलेस हो जाइए, सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।
1: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, हिसार से राजेंद्र। राजेंद्र आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
2: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है और जो बैठने का काम करता है जो उनको ज्यादा ही और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए और इसके बारे में जानना था। जब भी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा रहता है
1: जी।
2: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताए। नमस्कार जी,
1: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं। सिद्ध जी बताए।
0: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
1: जी।
0: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी मेथी सौंठ ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें
1: जी।
0: तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहाँ तक आपने बोला है कि गले में है तो उज्जायी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए। उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
1: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछे क्या सवाल है आपका?
3: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
4: नमस्कार
3: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा?
4: धन्यवाद रवि जी, और आपका जो प्रश्न है उसमें ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें क्योंकि पानी अगर हम बीच बीच में ज्यादा पीते रहते हैं कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
1: जी।
4: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है, तो आप इसको करें आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ होगा। और अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां?
0: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
1: जी।
0: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है, और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो एक हंसी की बात आ जाती है
1: सभी के लिए।
0: हाँ, लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
1: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका?
5: जी मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इसे तो बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है?
1: जी बताए।
0: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
1: जी,
0: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ। तो तो वो

0: है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्री का प्राणायाम जितना समय यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय सांस को भरने में लगाए हैं तो कोशिश करें 3 सेकंड को सांस छोड़ने में लगाएं। तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके सांसों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें।
1: जी कमल जी, आपसे ना जानना चाहेंगे पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए।
2: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 ग्लास या 2 ग्लास या 3 ग्लास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है, बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है और रात में ब्रश करके सोना है।
1: जी
2: ठीक है, मुंह साफ रहना चाहिए। रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनरली हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
1: वो निकल जाती
2: है, वेस्ट कर देते हैं। तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं। हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं। रोटेशन के साथ हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े। बैठ करके किया जा सकता है, इसके अंदर घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े। इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे।
3: जी धन्यवाद, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या किसको कम दिखाई देता है तो मैं विशेष से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए।
0: आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है। और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना। और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं, उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
1: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है।
0: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना पानी पीने से पहले
1: जी।
0: तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से।
4: हेलो नमस्कार, मैं मुकेश
1: जी। जी नमस्कार,
4: नमस्कार
1: जी, सवाल पूछिए। शायद कहीं फोन लाइन में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं, कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है।
0: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है। और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है।
1: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार। विजय जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
5: मुकेश कुमार जी,
1: जी क्या सवाल है आपका।
5: कुमार जी नमस्ते।
1: नमस्कार, क्या सवाल है आपका।
5: डीजी और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्कार नमस्कार।
5: मेरा पहला सवाल यह है कि हीट बहुत ज्यादा है
1: जी,
5: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए, और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
1: जी।
2: जी,
5: और योगा करने से वो ये होगा
2: वेट के लिए। विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें। पहला सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीज़ों के अंदर आप बासी

0: अवल ले सकते हैं दही के साथ में अगर सूट करता है उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है इस तरह की चीजों का आप यूज कर सकते हैं पत्ता अमृत भी ले सकते हैं और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना गोल-गोल घुमाना दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो अदरवाइज एक-एक पैर का प्रयोग करें साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके वो वेट में काफी लाभदायक है और बैठ करके कटि सौंदर्य आसन होता है लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना ये करना है आपने और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें निश्चित लाभ होगा धन्यवाद
1: अनीता जी एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन इसमें क्या फर्क होता है क्या दोनों को करना आवश्यक है
2: ये दोनों योग के ही अंग हैं
1: जी
2: प्राणायाम और आसन
1: जी
2: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है कई बार क्या होता है कि एजड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता योग में वो केवल आसन मानते हैं तो आसन ही नहीं यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं और प्राणायाम संपूर्ण है प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी
2: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है और योग का ये एक अंग है और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग हैं
1: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से मोहन पासवान मोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से
3: जी धन्यवाद प्रणाम इकट्ठे सर
1: जी बताइए
3: सर जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए दूसरा बात है सर दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मैडम
2: नमस्कार हाँ जी बिल्कुल ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें रामदेव बाबा की भी है इसमें ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि स्वास्थ्य सॉरी कुछ
1: जी.
2: है ना वो तो उसके लिए क्या है आपको आपको प्राणायाम अपनाना है श्वासों की क्रिया में क्या लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं और आपको विश्वास नहीं होगा कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं
1: बहुत बड़ी बात जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर तो अनीता जी घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं तो बड़ी थकान सी होती है
2: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर दो घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
1: जी।
2: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की हमारे तो दृष्टि है इसको डालें थोड़ा सा आंख में जो कंप्यूटर पे बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए दो तीन तरह की अब तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए और आप सुबह प्रातःकाल में यदि थोड़ा कपालभाति अनुलोम विलोम ये करेंगे तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी आपको लगता है और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें
1: जी बिल्कुल और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से रशीद अहमद खान रशीद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है
4: थैंक यू नमस्ते सर सब लोगों को नमस्कार
1: जी
4: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे फोन नहीं लग पाए थे इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को पूरे
1: प्रधानमंत्री जी सवाल पूछिए
4: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है एक बात दूसरी बात क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है प्लीज बता दीजिए
0: धन्यवाद रशीद जी बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की वजह से आंखों में कुछ भी डाल लें ठीक है और योग के अंदर

0: प्राणायाम सबसे ज्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा और आंखों के अंदर जैसे अनीता जी ने पहले ही बताया कि सुबह-सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पे लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
1: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
2: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
1: जी,
2: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपना जो ध्यान का मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कंसंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करें, करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
1: बिल्कुल, करेंगे तो होगा।
2: हां
1: कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
0: देखिए, डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं, ये पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने, तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है।
1: जी,
0: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहां रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहां जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
1: जी।
0: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज भी सुनाई ना दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना, बहुत तेज करने लग जाते हैं, उसका फायदा नहीं होता, नुकसान होता है।
1: जी जी जी।
0: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव ये है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है और खाना जो खाया वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
1: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए, क्या सवाल है आपका?
3: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
1: बहुत अच्छा सवाल,
2: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेट कर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भांति नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है। तो ये कुछ प्राणायाम है जो उनको करने हैं और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
0: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से धर्मवीर। धर्मवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका?
4: नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
0: धन्यवाद।
4: एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है, इस बारे में। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
2: घर घर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए, जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है तो मैं वहाँ बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीज़ों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती हैं। प्राणायाम करें और आसन

0: ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको पांच छह आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूंगी खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। और कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
1: जी,
2: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4 से 5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है, तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता बॉडी के अंदर, बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है बॉडी, एकदम रिफ्रेश रहती है। तो उस समय करेंगे ज़्यादा लाभदायक रहेगा, इस तरह से करें ज़्यादा लाभदायक रहेगा।
1: और राय बरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमा शंकर वाजपेयी। रमा शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी,
3: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है, और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या?
2: जी रमा शंकर जी नमस्कार, धन्यवाद, आपने जो प्रश्न किया, ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज़्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत भाता है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जान ही नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई ही नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज्यादा लाभ देगा।
1: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका?
4: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, और मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कोई ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है, जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल से रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने देखकर, हम लोगों ने ये इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या, या फिर या 10 दिन या 1 महीने करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था।
0: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है, आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं, तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
0: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें, योग का एक अंग है प्राणायाम जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं, और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं, घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं, रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं, और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
1: कमल जी बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
2: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम, और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो इस विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है। भ्रामरी प्राणायाम के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपस में मिलें और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी किया करें, जैसे बदल बदल के क्या

0: और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है, तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
1: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये
1: हम आकाशवाणी सूरत करके।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो भेंट वार्ताएं, जिनमें सबसे पहली भेंट वार्ता है हैंडबॉल खिलाड़ी एवं कोच श्यामवीर सिंह राजावत और चंद्रवीर सिंह राजावत से रवि केश मीणा की बातचीत। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर केंद्र का अंशदान है।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मेहमान के रूप में श्याम सिंह राजावत जी, निवासी न्यू जवार कॉलोनी ठींगला सवाई माधोपुर से। दूसरे मेहमान के रूप में पधारे हैं हमारे पास खिलाड़ी चंद्रवीर सिंह राजावत जी, निवासी बाल मंदिर सवाई माधोपुर से। कार्यक्रम में आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार जी।
2: नमस्कार सर।
1: तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्याम सिंह राजावत जी से। श्याम सिंह जी, आपकी खेल जगत की शुरुआत कहाँ से हुई है?
2: सर, जब मैं 12 साल का था तब से हैंडबॉल खेलना शुरू किया
1: जी।
2: स्टार्टिंग से सब जूनियर टूर्नामेंट खेले, कई सारी जूनियर भी खेले, हम लगभग 30 से 35 चैंपियनशिप खेली मैंने अभी तक। ठीक है, हम खिलाड़ी के साथ साथ कोचिंग भी दे रहे हैं बच्चों को
1: जी।
2: तो हम छोटे बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं, वो भी हर साल यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, मेडल ला रहे हैं, अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं और निरंतर प्रतिभाएँ बाहर निकल रही है सवाई माधोपुर से।
1: बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा चंद्रवीर जी, आपकी शुरुआत कब और कहाँ से आरंभ किया आपने खेलना?
3: सभी को नमस्कार। खेलने का तो ये हिसाब से बचपन में जब एक बार गलियों में कॉलोनियों में खेलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे वहीं कोई किसी को देखते हैं और उनको अपना आइडियल बनाते हैं, ऐसे समय पे कुछ सलाह देने वाले मिल जाते हैं, कोचेज मिल जाते हैं, तो वो खेल को निखारते हैं। तो अमूमन छठी सातवीं आठवीं क्लास से जो टीचर थे हमारे शिवदयाल जी वार साहब, मानटाउन स्कूल में जो पीटीआई थे, उन्होंने मुझे पहली बार देखा और मेरे को टीम में लिया
1: जी।
3: उसके बाद ये सफर चलता रहा जो आज तक चल रहा है।
1: बिल्कुल। अच्छा, हैंडबॉल आने से पहले आपको कहीं से प्रेरणा मिली श्याम सिंह राजावत जी?
2: सर, स्टार्टिंग जब सवाई माधोपुर में हम खेलना शुरू किया था तब चंद्रवीर सर की कोच थे हैंडबॉल के।
1: अच्छा, तो आज गुरु चेला दोनों साथ
2: उन्होंने स्टार्ट किया था, तब से हम आज तक हैंडबॉल खेल रहे हैं और खिला भी रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद राजस्थान लेवल पे बात करें तो आपके प्रियदीप सिंह जी हैं जो अभी काउंसिल में कोच लगे हुए हैंडबॉल के, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग मिला, उनसे सीखने को काफ़ी कुछ मिला। और सबसे पहले उनकी आज काउंसिल में वो कोच लगे, सबसे पहली पोस्टिंग सवाई माधोपुर ही थी।
1: अच्छा।
2: तो उन्होंने यहाँ 3-4 साल तकरीबन रहे, काफ़ी कुछ बच्चों को सिखाया, ग्राउंड चलाया, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चंद्रवीर जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, आपके गुरु कौन है आरंभिक और इस खेल में कैसे आपकी रुचि बढ़ी है?

0: खेल में फिर जब मैं कॉलेज में था, वहाँ कॉलेज में जब ग्रेजुएशन में था, तब तो वहाँ हमारे सर थे और दोस्त लोग थे जो उन्होंने कहा हैंडबॉल में बुलाया। बेसिकली मैं खेलता फुटबॉल था पर उन्होंने मुझे बुलाया हैंडबॉल में। तो हैंडबॉल की स्पीड और हैंडबॉल का मतलब एक कह सकते हो आप बड़ा फास्ट गेम है,
1: जी
0: जो उसको देख के मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ और फिर मैंने कहा यार खेलते हैं, खेलने लगे। फिर उसमें बूस्टअप कर दिया कोच प्रियदीप सिंह जी ने, जिनकी पहली पोस्टिंग 2011-12 में राजस्थान काउंसिल में कोच की भर्ती, उसमें वो चयन हुआ उनका, उनकी
1: जी
0: पहली पोस्टिंग सवाई माधोपुर मिली उनको।
1: जी
0: तो वो उनको देख के उनका चार्म और वो खुद इतना अच्छा लेवल के प्लेयर थे, तो उनको देख के हम भी सोचा कि ऐसा तो बन ही जाए, ऐसा नहीं तो कुछ तो बने ही सही इनके जैसा। तो वहाँ पे फिर हम इस गेम की तरफ मूव करने लग गए।
1: बिल्कुल, सफर तो चलता रहा जिंदरवीर जी। आज हम देखते हैं कि आपका बचपन से लेकर अब तक का जो भी मैच था, उनमें सबसे यादगार कोई पल अगर आपका रहा हो तो वो थोड़ा सा हमें बताएं।
2: हाल ही में सर सीनियर चैंपियनशिप खेलने गए थे हुगली वेस्ट बंगाल,
1: जी
2: वहाँ सर क्वार्टर फाइनल एक मैच चल रहा था हमारा जो
1: जी
2: यूपी वर्सेस राजस्थान का चल रहा था। वो मैच में एक एक सेकंड सांसें रोकने वाला मैच था। एक यूपी के कोच थे तोहित सर, जब लास्ट 3 सेकंड बच रहे थे तब तोहित सर ने टाइम आउट लेके
1: जी
2: और एक गोल राजस्थान पे करवा के मैच बराबर कर दिया। तो
1: क्या
2: मतलब
1: बात
2: एक वो बेहतरीन लेवल की कोचिंग देखने को मिली,
1: है जी
2: बेहतरीन लेवल का मैच देखने को मिला।
1: जी
2: मतलब बैक टू बैक नेक टू नेक फाइट चल रही थी लास्ट
1: जी
2: तक,
1: जी
2: फिर 3 सेकंड खत्म होने के बाद मैच टाई हो गया, फिर दो दो सेकंड का वापस टाइम दिया एक्स्ट्रा टाइम,
1: जी
2: उसमें 2 गोल की लीड करके राजस्थान जीती। तो सर मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन मैच वो था जो
1: अच्छा
2: मैंने।
1: अनुभव आप लेके
2: जी जी
1: बैठे
2: जी
1: हैं।
2: जी
1: अच्छा चंद्रवीर जी, आप बताएंगे कि अब जो एक सफल हैंडबॉल के खिलाड़ी बनने के लिए मतलब बालकों में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है, क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए?
0: बिल्कुल साहब, सफल खिलाड़ी बनने के लिए आपको पंक्चुअल,
1: समय का
0: बिल्कुल आप पंक्चुअल रहें ग्राउंड पे, और डेडिकेशन आपका होना चाहिए और खेल के प्रति प्यार होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: जब तक आप उस चीज़ से प्यार नहीं करोगे वो आपको चीज़ नहीं मिलेगी
1: हासिल ही नहीं कर सकते
0: बिल्कुल।
1: हम।
0: और कोच आपके भले के लिए ही बोलता है, आप उसको अदरवाइज लेते हैं। जिसने कोच की बात को आंख बंद करके फॉलो किया वो बच्चा रुक ही नहीं सकता। ऐसे 50 उदाहरण हैं जो माधोपुर के भी 10-20 उदाहरण हैं और बाहर के भी हैं, जो आज बहुत अच्छे लेवल पे हैंडबॉल खेल रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे,
1: जी
0: सिर्फ इसलिए कोच की बात को उन्होंने फॉलो किया। कोच हमेशा बच्चे को सही सलाह और सही गाइडेंस ही देता है।
1: बिल्कुल सही है श्याम सिंह राजावत जी। आप बताएं कि मैच के पहले आप अपनी शारीरिक और मानसिक तैयारी किस रूप में करते हैं?
2: सर मैच से पहले हम मेंटली फिट होना ज़रूरी है,
1: जी
2: प्रेशर में मैच खेलेंगे तो खेल ही नहीं पाएगा खिलाड़ी। तो पहले मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली। उसके बाद ठीक है, मैच के पहले हम थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं और वार्म अपिंग करते हैं, तो उससे टीम के साथ एक साथ टीम भावना के साथ खेलते हैं,
1: जी
2: तब जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे मैच
1: राजाओ जी, आप राष्ट्रीय
2: में।
1: स्तर के और मेडलिस्ट खिलाड़ी है, तो आप मेरे को ये बताएं कि जो आपको जो प्रेरणा दी है वो किस किस टीम के माध्यम से मिली है?
2: प्रेरणा सर हमको हमारे एचआई के फेडरेशन के अभी जनरल सेक्रेटरी हैं तेजराज सिंह जी,
1: जी
2: उन्होंने राजस्थान लेवल पे हैंडबॉल गेम को बढ़ाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है सर, और अभी भी कर ही रहे हैं। और उन्हीं के साथ हमारे जो राजस्थान सेक्रेटरी हैं यश प्रताप सिंह जी, वो भी
1: जी
2: काफ़ी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने राजस्थान के कई बच्चों का भला किया है और आज भी कर रहे हैं। ठीक है, उनको प्रेरणा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग हर जगह, और हर साल इसी वजह से मेडल लेके आ रहे हैं बच्चे।
1: अच्छा, हैंडबॉल खेल में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को समझाएं।
2: हैंडबॉल में सर टीम तो 16 16 खिलाड़ियों की होती है,
1: जी
2: बाकी मैच में 7 खिलाड़ी ही खेलते हैं।
1: जी
2: राइट पोजीशन की बात करें तो एक गोलकीपर है, लेफ्ट बैक, राइट बैक और लेफ्ट विंग, राइट विंग और पिवट प्लेयर, ऐसे करके 7 पोजीशन होती है। और बहुत फास्ट मैच चलता है सर, हर पोजीशन का अलग अलग अपनी भूमिका रहती है।
1: राम सिंह जी, बात करें अपन जो आपके खेल जीवन में कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा है, थोड़ा सा वो भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: खिलाड़ियों का सर संघर्ष, जीवन में संघर्ष तो सभी के होता है, हर गेम
1: जी
2: वालों को।
1: जी
2: बाकी हमारे हैंडबॉल में ज़्यादा इसलिए क्योंकि लोग पॉपुलरिटी कम है, ठीक है, क्रिकेट जैसा पॉपुलर गेम है नहीं,
1: जी
2: तो गवर्नमेंट से जो भी सहायता सपोर्ट या और भी सोशल, तो वो मिल नहीं पाती है सर। एक्चुअली फाइनेंशली काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है हर एक स्पोर्ट्समैन को,
1: जी

0: कई क्रिकेट वाले हैं उनमें पैसा है सर, वहाँ तो ठीक है सब जगह सपोर्ट करती है, बाकी निचले स्तर पे खिलाड़ी को गवर्नमेंट सपोर्ट करती नहीं है। तो कहीं टूर्नामेंट आयोजित करवाना, टूर्नामेंट में जाना आना, तो कई चीज़ें जो दिक्कत करती हैं, आज भी वो चीज़ें बच्चों के साथ देखने को मिलती है।
1: जी, चंद्रवीर जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो एक सफल खिलाड़ी होता है, एक शारीरिक ताकत के साथ और मानसिक संतुलन के साथ, तो इनका खिलाड़ियों का खान पान कैसा होना चाहिए अभी से, अगर बचपन से बच्चों को हम ये चाहें कि ये खेल में जाए, हैंडबॉल में जाए, ये किसी भी खेल में जा सके, तो उसका खान पान कैसा होना चाहिए?
2: सर ये हैंडबॉल गेम क्या बड़ा रफ एंड टफ गेम है, और
1: जी
2: ये टोटल 100% बॉडी कांटेक्ट गेम है।
1: जी
2: इसमें आपस में आपको रश करना ही पड़ेगा अपोनेंट के साथ।
1: जी
2: खान पीने का इसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम रोल है। आपको देसी खाना,
1: जी
2: दूध दही छाछ घी, क्यों
1: बिल्कुल
2: हैंडबॉल में हनुमानगढ़ गंगानगर या ग्रामीण परिवेश के बच्चे सबसे हैंडबॉल में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं,
1: जी
2: जैसे करौली महावीर जी के
1: जी
2: बच्चे,
1: क्या बात है,
2: वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको खान पान उनको अच्छा मिल रहा है गांव के अंदर, और शुद्ध और देसी मिल रहा है। दूध भी खा रहे हैं, छाछ भी पी रहे हैं, घी भी खा रहे हैं, बढ़िया घर पे खा रहे हैं, बाहर का कोई मिलावटी नहीं खा रहे हैं।
1: बिल्कुल
2: इसलिए उनका बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर और ये और पावर
1: जी
2: स्ट्रेंथ, फिर
1: जी
2: वो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे तो उनका स्ट्रेंथ डेवलप होता है। खाने पीने के बाद अगर आप ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं तो आपके स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और कोऑर्डिनेशन ये अपने आप डेवलप हो जाता
1: बिल्कुल।
2: है।
1: अच्छा श्याम सिंह जी, आप बताएं कि जो टीम भावना का हैंडबॉल में कितना महत्व होता है?
0: टीम भावना कोऑर्डिनेशन जरूरी है सर, बिना कोऑर्डिनेशन के हैंडबॉल मैच क्या है, टीम मैचेस, तब
1: जी
0: तक हर प्लेयर संघर्ष नहीं करेगा तो टीम जीत नहीं पाएगी।
1: चंद्रवीर जी, सवाई माधोपुर जिले में देखें तो अभी जो सवाई माधोपुर की जो प्रतिभाएं हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं कि तराशा है सवाई माधोपुर जिले ने।
2: राजस्थान हैंडबॉल की तरफ से, जिला हैंडबॉल संघ की तरफ से जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने भाग लिया,
1: जी
2: उसमें छवि श्री चौहान है जो अभी गुड़गांव में डॉक्टर है,
1: क्या बात है,
2: और तेजस्वनी चुंडावत है जो खुद अभी केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत है यहाँ सवाई माधोपुर, अरुण यादव है जो अभी जयपुर में है आरएस की तैयारी कर रहे हैं,
1: जी
2: हितेंद्र सिंह है ये खुद आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ये जूनियर मेडलिस्ट है, ये
1: जी
2: तेजस्वनी चुंडावत भी सिल्वर नहीं प्लेइंग है, और हितेंद्र सिंह जूनियर मेडलिस्ट है, एरंता है, ज्योति मीना है, ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं दो बच्चे, बच्चे हैं रावल की,
1: जी
2: सीमा मीना है जो रिसेंटली अभी लास्ट ईयर ही नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है,
1: जी
2: और भव्या राजावत है ये भी स्कूल नेशनल है, आकांक्षा सैनी ये बच्ची भी स्कूल नेशनल वो ओपन नेशनल है,
1: जी
2: अजय सैनी ये बच्चा अभी रिसेंटली वेस्ट जोन में इसकी टीम ने सिल्वर मेडल, फिर
1: जी
2: इसका इनका ऑल इंडिया के लिए चयन हुआ, तो ऑल इंडिया में भी इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो 2025-26-27 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो प्रतियोगिता है उसके अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त किया।
1: जी ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, और आप लगातार काम कर रहे हैं तो बच्चों की प्रतिभाएं निखरना एक आम और स्वाभाविक बात है। चंद्रवीर सिंह जी, युवा खिलाड़ियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: सर युवा खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले टाइम, टाइम मैनेजमेंट
1: जी
2: ये, और आपकी सुबह उठना है तो उठना है, ग्राउंड जाना है तो जाना है, ये चीज जब तक ये भावना खिलाड़ी में नहीं आई, पंक्चुअलिटी मेन चीज, पंक्चुअलिटी,
1: जी
2: आप सही टाइम पे सही काम करें,
1: जी
2: टाइम से ग्राउंड जाओ, टाइम से ग्राउंड आओ, टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से पढ़ो भी सही।
1: जी बिल्कुल, पढ़ाई भी जरूरी है खेल के साथ साथ। अच्छा बात करें श्याम सिंह जी, आप बताएं कि जो भविष्य में आपके खेल संबंधी क्या लक्ष्य हैं?
0: सर खेल संबंधी भविष्य में यही लक्ष्य है कि हमारे जो जिले के जो बच्चे हैं वो हैंडबॉल गेम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे बढ़ें,
1: जी
0: ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, ग्राउंड पे ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति दें और जिले का और देश का नाम रोशन करें, यही लक्ष्य आगे हम बना के चल रहे हैं, और अभी भी निरंतर बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं निरंतर वो कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है उनको।
1: बिल्कुल। चंद्रवीर जी, नए जो बच्चे खेलने के उत्सुक होते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से?
2: नए बच्चों को संदेश यही है कि आप मोबाइल छोड़ें, टीवी छोड़ें और घर का बिस्तर छोड़ें, टाइम से उठें, ग्राउंड आएं, मेहनत करें, जरूरी नहीं है किसी का साथ हो, टाइम पास नहीं करें, सीरियसली मेहनत करना है तो ग्राउंड आएं, बाकी टाइम पास करने के लिए तो आपका मोबाइल भी है और टीवी भी रखा है घर पर।
1: बिल्कुल, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी दी। कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे हैंडबॉल खिलाड़ी और कोच श्यामवीर सिंह राजावत और चंद्रवीर सिंह राजावत से रवि केश मीणा की बातचीत। यह आकाशवाणी

0: सवाई माधोपुर केंद्र का अंशदान था। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिटनेस कोच आमिर खान से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी सूरतगढ़ केंद्र का अंशदान है।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज फिटनेस और हेल्थ के बारे में जो बारीकियां हैं उनको जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आमिर खान। आप फिटनेस कोच हैं, नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन आपने फिटनेस में जो है हासिल किया हुआ है, और आप बॉडी बिल्डिंग भी आपने लोगों को सिखाई है या उनके साथ काम किया है, और ऐसा कह सकते हैं कि आप पिछले 10 सालों से इसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। आप एक फिटनेस संस्था भी अपनी चलाते हैं और इस क्षेत्र में लोगों को काफी मोटिवेट कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आमिर खान, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: आमिर जी, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि फिटनेस जो है, फिटनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या चीज है फिटनेस?
2: सर देखिए, फिटनेस एक ऐसी चीज है जो कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप जिम जाते हैं, घर पे कोई वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए एक फिटनेस अपने वर्कआउट में ला सकते हैं ताकि आपका शरीर एक फिट रहे। ना कि आप अगर कोई भी रोजमर्रा का काम कर रहे हैं तो आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो रोजमर्रा के काम है, उसमें कोई भी अड़चन ना आए।
1: सामान्य लाइफस्टाइल बीमारियां हैं जैसे किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाती है लोगों की, सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर सीढ़ियां चढ़ते वक्त हाँफ जाना, सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों में दर्द होना, ये सब क्या अपने फिटनेस लेवल को दर्शाते हैं?
2: बिल्कुल सर। अगर आपकी बॉडी में अगर फैट परसेंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपका फिटनेस लेवल आज के टाइम के लिए बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि आपकी बॉडी में आपके फैट ने इतनी ज्यादा मात्रा घेर कर ली है कि आपके बॉडी का जो वेन्स है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, के कारण अपना जो हार्ट है वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता और अपना बीपी भी प्रॉब्लम काफी क्रिएट करता है। और आजकल आप देख रहे हो कि काफी हार्ट स्ट्रोक आ रहे हैं लोगों को। आज के टाइम में बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लोग खान पीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण ये काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अपनी इस प्रॉब्लम से आपको निवारण करने के लिए आपको फिटनेस ज्वाइन करनी चाहिए।
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने नाम लिया भी कि हमारी बॉडी में जो है फैट बढ़ जाता है, तो फैट का जो आइडियल परसेंटेज है वो बॉडी में कितना होना चाहिए?
2: देखिए सर, एक जनरल जो आइडिया होता है वो 11 से 15% के बीच में अपना बॉडी फैट होना चाहिए।
1: तो ये मेल और फीमेल के लिए एक जैसा है?
2: फीमेल के लिए आप मान सकते हैं कि 18% तक आप बॉडी फैट उनका रख सकते हैं।
1: तो आज जो हम देख रहे हैं जनरल जो लाइफस्टाइल है हमारा, तो वो तो मेरे हिसाब से 20% से ऊपर सबका फैट आपको देखने को मिलेगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर। आज अगर आप देखेंगे, एक अनुपात निकालेंगे, तो 100 में से सिर्फ 4 से 5 लोग ही एक जो आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज है 11 से 15 उसके अंदर रहते हैं। बाकी 95% जो लोग हैं वो बिल्कुल अपनी बॉडी की जो संरचना है वो बिल्कुल खराब कर चुके हैं, क्योंकि खान पीन उन्होंने अपना ऐसा कर लिया है कि हर चीज में तेल डालना है, बाहर का खाना, फास्ट फूड इतना ज्यादा हो गया है आज के टाइम में कि वो बॉडी की संरचना को पूरा खराब कर रहा है। बॉडी के अंदर फैट की मात्रा 20 से 25 या 30% भी आने चली वो भी आज के टाइम में कम है।
1: तो ये जो फैट जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो इसका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के साथ कोई कनेक्शन?
2: जी बिल्कुल सर। अगर आपकी बॉडी में फैट की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि 25% या 30% से भी अगर ज्यादा हो गई है, तो अपना क्या होता है, जो अपना जो अपने फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, वो अपने हार्ट और अपनी ब्लड जो सर्कुलेशन जो संरचना है वो सब तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। उसमें क्या होता है, जब भी अपना हार्ट पंप करता है तो अपनी वेन्स के अंदर जब ब्लड निकलता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है अपने फैट के बढ़ने से, जिसके कारण क्या, जब भी अपना हार्ट पंप करेगा तो उसको प्रॉपर मात्रा में ब्लड ना मिलने के कारण, ठीक है, ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाती है।
1: जी सही कहा आपने कि जब फैट अगर बॉडी में बढ़ेगा तो वो अंततः हमारी जो नाड़ियां हैं, जो रक्त वाहिनियां हैं, उनमें जाकर कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमेगा और बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जो उसके देखने को मिलते हैं।
2: बिल्कुल सर।
1: हम आपसे जो मुख्य हमारा टॉपिक है आज का, फिटनेस, फिटनेस पे बात करना चाहेंगे कि अगर किसी को फिटनेस अपनी अच्छी रखनी है, हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हो या फिर हम कहें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, तो कहां से वो शुरू करे फिटनेस?
2: देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, एक कोई भी इंसान है वो कम से कम 14 या 15 साल का एक होना चाहिए बच्चा, ठीक है, तब से वो अपनी फिटनेस लाइफस्टाइल को स्टार्ट कर सकता है। अब फिटनेस लाइफस्टाइल को स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाना ही अनिवार्य है। अगर आपके आसपास अगर आपके पास जिम है कि जहाँ पे आप जा सकते हो, तो बिल्कुल आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपके पास जिम नहीं है तो आप अपना वर्कआउट भी घर पे कर सकते हो, ठीक है।
1: घर पर क्या वर्कआउट किया जा सकता है?
2: बिल्कुल सर। देखिए, घर पे वर्कआउट करना बहुत ही आसान है। अगर आप सुबह भी पूरे 24 घंटे में से अगर 1 घंटा अपनी बॉडी को दे सकते हैं तो आप अपने घर पे भी वर्कआउट कीजिए, जिसके लिए आपको ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं होती।
1: तो वो तो हम लोग वॉकिंग कर ही लेते हैं।
2: नहीं सर, देखिए, वॉकिंग करने से और फिटनेस का ध्यान रखने से पूरा अलग है, क्योंकि वॉकिंग में क्या होता है, जस्ट अपने जो जॉइंट्स है वो मूव करते हैं और अपनी पाचन क्रिया ही वही अच्छी रहती है। आपके फिटनेस लाइफ स्टाइल को आप अच्छा नहीं कर सकते वॉकिंग करने से, ना ही अपनी जो बॉडी कंडीशन है वो चेंज कर पाओगे। बस ये है कि हाँ, जब भी आप वॉकिंग करते हो तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो सही रहेगी, क्योंकि अंततः आप थोड़ी बहुत अपनी बॉडी की कैलोरीज बर्न करते हो, लेकिन अपनी फिटनेस को अच्छा रखने के लिए आपको,
1: लेकिन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो वॉकिंग से सुधरती है ये भी तो कहा जाता है।
2: नहीं सर, देखिए, अगर आपको बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको फिटनेस के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी 5,000 या 7,000 स्टेप चल पाओगे। आप 20,000, 25,000 आप स्टेप नहीं चल पाओगे, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है उसमें।
1: ठीक है।

0: हम बात करेंगे, आपने बताया घर पर अगर कोई वर्कआउट करना चाहता है तो अगर कोई इक्विपमेंट्स के साथ करना चाहे और बिना इक्विपमेंट के करना चाहे, हम सबसे पहले यही जानेंगे अगर कोई आदमी बिना इक्विपमेंट के घर पर ही शुरू करना चाह रहा है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहूंगा, वॉकिंग तो वो पहले से कर रहा है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहता है, तो वो कैसे शुरू करे?
1: देखिए सर, मैं आपको बेसिक दो तीन एक्सरसाइज बताता हूँ। जैसे कि आप पुशअप्स लगा सकते हो घर पे,
0: ठीक है
1: आप स्क्वाट्स लगा सकते हो, आप कोर एरिया को कम करने के लिए आप क्रंचेस लगा सकते हो, लेग रेजेस लगा सकते हो, लंजेस लगा सकते हो और प्लैंक लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो जनरल फिटनेस है वो मेंटेन रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आपको अच्छी फिटनेस रखने के लिए आपको जिम जाना अनिवार्य है।

0: सकते हो, आपको और एरिया को कम करने के लिए आप क्रंचेस लगा सकते हो, लेग रेजेस लगा सकते हो, लंजेस लगा सकते हो और प्लैंक लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो जनरल फिटनेस है वो मेंटेन रहेगी थोड़ी बहुत। लेकिन आपको अच्छी फिटनेस रखने के लिए आपको जिम जाना अनिवार्य है, या आप अपने घर में कुछ इक्विपमेंट्स मंगा लीजिए जिसे आप अपनी फिटनेस को अच्छा रख पाए।
1: बेसिक इक्विपमेंट्स कौन?
0: बिल्कुल सर, बेसिक इक्विपमेंट्स में आपको रखने के लिए आप एटलीस्ट 2.5 के दो डंबल ले सकते हो, 5-5 केजी के दो डंबल ले सकते हो, और एक रेजिस्टेंट बैंड भी अपने यूज कर सकते हो
1: जी,
0: जिसमें आप अपना जो बॉडी का ऑल ओवर वर्कआउट है वो आप पूरा कर पाओगे।
1: तो जो डंबल हैं उनसे आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, कि डंबल्स और रेजिस्टेंस बैंड से कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो एक बिगिनर जो करना चाहे वो घर पर एक्सरसाइज शुरू कर पाए।
0: देखिए, अगर आप कोई भी वर्कआउट अपना प्लान घर पे चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले 2.5 के डंबल से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आपने शोल्डर की कोई एक्सरसाइज करनी है तो शोल्डर प्रेस लगा सकते हो, साइड रेजेस लगा सकते हो, फ्रंट रेजेस लगा सकते हो और आप ट्रैप्स लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका शोल्डर का वर्कआउट हो गया। अगर आपको चेस्ट का वर्कआउट करना है तो आप सिंपल जमीन पे लेट जाइए। ठीक है, तो आप सिंपल जमीन पे लेट के 5-5 केजी के डंबल उठा के देन चेस्ट प्रेस लगाइए, देन डंबल फ्लाई भी आप वहां पे कर सकते हैं और पुशअप्स भी लगा सकते हैं। ये नॉर्मल बेसिक जो आप वर्कआउट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं आप अपनी बॉडी को। ऐसा नहीं है, अगर आपके माइंड में है कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है, मेरे को बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी बनानी है, तो उसके लिए आपको जिम में जाना अनिवार्य है। क्योंकि सिर्फ दो डंबल से आप अपनी ऑल ओवर जो मसल बिल्डिंग को आप इतना इनहेंस नहीं कर पाओगे।
1: नहीं, जैसे आपने अभी जो डंबल के एक्सरसाइजेस बताए वो तो हमारे जो अपर बॉडी है उसमें आप बैक हो गया या फिर शोल्डर और आर्म्स जो है हमारे उनको मजबूत हम कर रहे हैं। बाकी जो लोअर बॉडी पार्ट है जैसे लेग्स है हमारे या फिर हमारी जो कमर है,
0: लोअर बैक
1: है या फिर अपर बैक है, इनको मजबूत करने के लिए भी एक्सरसाइज है।
0: जी बिल्कुल, आप अपर बैक को मजबूत करने के लिए आप डेडलिफ्ट जैसे वर्कआउट कर सकते हैं
1: घर पे
0: कर सकते हैं। दो डंबल से भी ऐसा नहीं है कि डेडलिफ्ट के लिए आपको हैवी डंबल्स की जरूरत पड़ती है। आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे आप उनका रेप्स ज्यादा बढ़ा लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको 5-6 रेप लगाने, आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप रेप्स भी ज्यादा लगा सकते हैं, 25-30 रेप्स लगा सकते हैं, जिसमें आपको एक फटीग महसूस होगा उस लेवल पे और उस टाइम में आपकी जो मसल बिल्डिंग है वो थोड़ी बहुत बनने लग जाएगी। लेकिन आप एक टाइम में आपको फिटनेस लेवल बढ़ाने के लिए आप थोड़े और हैवी डंबल घर पे मंगवा सकते हो, आपकी जो फिटनेस लाइफ स्टाइल है वो और अच्छी हो जाएगी। जिसमें अगर अपन कुछ एक्सरसाइज और ऐड करें, जिसमें अपन स्क्वाट्स ऐड कर सकते हैं लेग्स के लिए, लंजेस लगा सकते हैं, सुमो स्क्वाट्स लगा सकते हैं और हिप थ्रस्ट भी लगा सकते हैं, ये आपकी लोअर बॉडी को मजबूत करेगा।
1: आमिर जी, अब हम बात करेंगे बिगिनर से थोड़ा ऊपर, जो आदमी, जो भी महिला है या फिर पुरुष है जो जिम जाना चाहता है, अगर वो जिम जा रहा है तो वो किन बातों का ख्याल रखे, क्या कोई भी व्यक्ति जिम जा सकता है?
0: देखिए, हर कोई व्यक्ति जिम जा सकता है, ठीक है, बस थोड़ा सा ये हो कि उसका कार्डियोवास्कुलर इतना ज्यादा भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे कि वो थोड़ा भी अगर सांस ले,
1: अगर एक बार पहले डॉक्टर को दिखा ले, अगर कोई पहले इशू है तो।
0: जी
1: जी,
0: अगर उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं
1: जी,
0: तो वो पहले स्टार्टिंग यही करे कि वो अपना घर पे वर्कआउट करे एक अच्छे कोच के अंडर में, ठीक है, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम कंडीशन आ रखी है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो दवाइयां चल रही है, उनसे पहले वो राहत पाए, उसके बाद में वो एक जिम ज्वाइन करे। और जिम जाने से पहले एक खास दिन का ध्यान रखें, जो भी आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो ध्यान नहीं रखते, वो जीन्स में आ जाते हैं और स्लीपर्स के अंदर आ जाते हैं, इनमें बिल्कुल वर्कआउट ना करें। आप एक जिम में जाने के लिए प्रॉपर लोअर टी शर्ट और अपना शूज और एक वाटर बॉटल और एक टॉवल वो अपना साथ रखें, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर कोई इंसान अपना पसीना बहाता है
1: जी,
0: जिससे अपने को काफी बीमारियां भी अपने आ सकती है, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम काफी क्रिएट हो सकती है, जिसके लिए आप अपना खुद का टॉवल यूज करें, जहाँ जो भी आप बेंच यूज कर रहे हो, कहीं पे भी आप वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी डंबल कर रहे हो, तो उसको अपने स्वेट से दूर रखें,
1: जगह को साफ रखना चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: हम ये जानना चाहेंगे कि क्या उम्र इसमें मैटर करती है, जैसे आपने पहले बताया था कि 14-15 साल से ऊपर का, किस उम्र तक के लोग हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो 40-50 की उम्र को पार कर जाते हैं वो जनरली ये सोचते हैं कि हमें तो बस अब इन जो हमारी बॉडी पेन कर रही है उसके साथ ही जीना है और धीरे धीरे ऐसे ही मर जाना है।
0: देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, 15 साल के बाद में आप जिम ज्वाइन कीजिए और जब तक आप जीवित हैं तब तक आप अपना जिम के लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जिसे आप अपने को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे कि आप शारीरिक तौर पे, जैसे अभी आप देखते हो कि 50-60 साल के बाद में लोगों के घुटनों में दर्द हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, लोअर बैक में दर्द है, चलने के लिए उनको सहारा चाहिए। जनरली आप देखो 50 साल वाले लोगों के ये काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो इसीलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान नहीं रखते।
1: क्योंकि ऐसा होता है कि 30 की उम्र के बाद में हमारा जो मसल्स हैं वो घटने लगते हैं बॉडी में, और उनको बनाए रखने के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट, ये दोनों जो है बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: डाइट की हम बात करेंगे कि जो जिम जा रहा है वो जिम जाने से पहले क्या खा के जाए।
0: जिम जाने से पहले आप सिंपल एक बनाना खा सकते हैं, आधा घंटा पहले
1: जी,
0: एक बनाना या एक एप्पल। और जिम जाने से पहले अगर आप कॉफी का सेवन कर सकते हैं, ब्लैक कॉफी का, मिल्क वाली नहीं, ओनली ब्लैक कॉफी, एक कप गर्म पानी के अंदर थोड़ी कॉफी मिला के आप पी सकते हैं, कि वो क्या करेगा, आपको जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे आपको वर्कआउट की तरह प्रेरित करेगा ताकि आप वर्कआउट और अच्छा कर पाओ। और बनाना क्या करता है, अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, ताकि आप जब भी जिम ज्वाइन करें, वर्कआउट करें, ताकि आपकी बॉडी में बिल्कुल वीकनेस ना आए, आप वर्कआउट अच्छा कर पाए और एक डेढ़ घंटे तक आप वर्कआउट अपना कर पाए।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। लोगों को लगता है कि जिम जाते ही उनको सबसे पहले वो जो डिब्बे

0: वो शुरू करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, अगर किसी को सामान्य फिटनेस के लिए अपनी हेल्थ के लिए काम करना है तो वो घर का बना खाना साधारण जो हमारा भोजन है उसके साथ भी काम कर सकते हैं। हम आपसे आमिर ये पूछना चाहेंगे कि कितने समय तक जो वर्कआउट है जिम के अंदर वो करना चाहिए।
1: देखिए एज ए बिगिनर के लिए आप, मैं बताता हूँ, कोई भी बिगिनर पर्सन है जो वर्कआउट करना चाहता है वो एटलीस्ट 40 से 45 मिनट या 1 घंटा मानी चलिए उनको वर्कआउट करना चाहिए। जिम जाते ही सबसे पहले उनको वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए अपनी बॉडी की प्रॉपर, ताकि जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करें आपकी बॉडी में कोई भी क्रैम्प्स या मसल पेन इश्यू ना आए। ठीक है, आप अपना वर्कआउट अच्छा करें, देन वर्कआउट खत्म करने के बाद में लास्ट में स्ट्रेचिंग करें, ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ में आपने जो बिल्डअप किया है, आपने मसल को फटीक किया है, वो रिलैक्स हो जाए और आपकी जो रक्त प्रवाह है, ठीक है, वो वापस नॉर्मल हो जाए सुचारू रूप से।
0: अगर हमने ग्रुप जो है मसल्स का जैसे चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेप्स है उनको कर लिया तो उनको रिकवर होने के लिए कितने घंटे का समय लगता है?
1: देखिए अगर आपकी डाइट बहुत ज्यादा अच्छी है,
0: जी
1: ठीक है, आप अपना खान पीन का पूरा ध्यान रखते हैं, हर 2 से 2.5 घंटे बाद अपनी मील ले रहे हैं, प्रोटीन का लेवल आप प्रॉपर रख रहे हैं बॉडी के अंदर, तो आप मानी चलिए 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक आपकी बॉडी रिकवर कर जाती है उस मसल। अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही, अगर आपका वर्कआउट करने बाद 2 दिन बाद भी उस मसल्स के अंदर सोरनेस है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप अपनी बॉडी के अंदर उत्तम मात्रा के अंदर प्रोटीन नहीं ले रहे, ठीक है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। तो आप ये कर सकते हैं कि 1 दिन के अंदर एक ही जो बॉडी का मसल पार्ट ग्रुप है, जैसे चेस्ट है या बैक है, शोल्डर, कोई भी मसल पार्ट है, उसको एक ही कीजिए, जैसे उसकी 4 से 5 एक्सरसाइज इनफ होती है उसको ही कीजिए, ताकि आपकी जो रिकवरी मील्स है वो उसको एक मसल को अच्छे से रिकवर कर सके, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए वो पेन ना बढ़े।
0: एक ग्रुप आपने हमें बताया, अन्य कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो मसल्स के?
1: जैसे चेस्ट हो गया, आपने चेस्ट हो गया, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप्स हो गए, फोरआर्म्स हो गए, अपने लेग्स हो गए, ये सब अलग अलग पार्ट्स। और इनको करने के लिए मैं आपको जनरल चीज बताता हूँ, जैसे कोई भी बिगिनर है उसको अगर वर्कआउट करना है तो जैसे मंडे को वो चेस्ट लगा सकता है, ट्यूजडे को वो अपना बैक का वर्कआउट कर सकता है,
0: ठीक है,
1: और अपने वेडनेसडे को अपना लेग का वर्कआउट कर सकता है, उसके जस्ट नेक्स्ट डे जैसे अपने थर्सडे को अपना बाइसेप ट्राइसेप लगा सकता है, फ्राइडे को अपना शोल्डर का वर्कआउट कर सकता है, और सैटरडे को वापिस लेग्स का वर्कआउट कर सकता है, क्योंकि लेग्स एक ऐसा पार्ट है कि वो काफी बड़ा मसल ग्रुप है, वो जल्दी से गेन नहीं होता और उस पे क्या होता है पेन भी काफी होता है, तो हर कोई इंसान मैं देखता हूँ कि लेग्स से एक्सरसाइज होती है उससे दूर भाग, लेकिन लेग का वर्कआउट सबसे अच्छा करना चाहिए आपको, क्योंकि लेग वर्कआउट करने से आपकी ऑल ओवर बॉडी ज्यादा अच्छी होती है, कंडीशन ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जब मेन ग्रुप की बात करते हैं तो उनका क्या होता है, जब भी अपने लेग्स लगाते हैं तो उनका हार्मोन ज्यादा बिल्डअप होता है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा पावरफुल बनता है, और टेस्टोस्टेरोन जितना अपना अच्छा रहता है मेंस की अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी उतना ही जल्दी आपका मसल मास रिकवर करेगी और आपका फैट ड्रॉप करेगी।
0: एक मिसकंसेप्शन जो है जनरली देखा जाता है कि महिलाओं को जिम करने की क्या जरूरत है?
1: देखिए सर, आप एक जेंट्स हो या फीमेल हो, दोनों को ही जरूरत पड़ती है, दोनों के शरीर में मसल्स है, दोनों के शरीर में जॉइंट्स है, सबको एक मसल्स को बिल्डअप करने के लिए आपको जिम ज्वाइन करनी है। लोग कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कि योगा कर लो, योगा करने से आप फिट रहोगे।
0: योगा भी अच्छा है अपनी जगह, लेकिन अगर अपने को मसल्स को बिल्ड करना है
1: जी
0: तो हमें स्ट्रेंथ एक्सरसाइज।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए सर, मैं योगा के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि योगा खराब है, लेकिन योगा से आप अपनी पाचन क्रिया या इनर जो ऑर्गन है आपके वो अच्छे रख सकते हो, लेकिन अगर आपको मसल बिल्डिंग ही करनी है, आपको बॉडी फिटनेस रखनी है, अपन मसल मास को बिल्डअप करना है, फैट को ड्रॉप करना है, तो आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे आप अपने जो एक फिटनेस लेवल को आप अचीव कर पाए। और महिलाओं के लिए भी यही है कि आप अपने रेगुलर रूटीन में 1 घंटा आप अपना जिम में ज्वाइन कीजिए। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे, आसपास जिम नहीं है या घर से कोई परमिशन नहीं है, तो आप घर में भी अपना वर्कआउट कीजिए।
0: एक जो फिटनेस का बहुत बड़ा पहलू है उस पर हम बहुत ही संक्षिप्त में बात करना चाहेंगे, जो डाइट है। डाइट में मुख्य रूप से आप हमें ये बता दीजिए कि जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको अपने डाइट में कौन कौन सी चीजें जो है वो ऐड करनी।
1: अगर कोई एग्स खा सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई एग खा सकता है, कोई चिकन खा सकता है, तो दिन के अंदर सिर्फ 5 से 8 अंडे अपने जो रेगुलर रूटीन में आप कह सकते हैं, पूरे दिन के अंदर 5 से 7 अंडे आपने ऐड कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि 8 के 8 अंडे आपको एक टाइम ही खाने, वो 2 से 4 2 से 4 करके आप कभी भी खा सकते हो, ठीक है, जिसमें इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है, ठीक है, पनीर भी आप ऐड कर सकते हो जैसे, और घर का बना खाना दाल चावल ये बहुत ही अच्छा है, राजमा चावल हो गए, ठीक है, इनमें भी आपको प्रोटीन की मात्रा मिलती है, सोयाबीन बड़ी होगी जो बहुत ही सस्ती मिल जाती है और काफी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, प्रोटीन के लिए काफी लाभदायक भी है, ठीक है, तो आप घर पे भी बना खाना आप आराम से खाइए, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप, लेकिन आप ये देखिए काफी लोग क्या करते हैं कि सर हम घर का बना खाते हैं लेकिन हम फिट नहीं रह पा रहे, हमारा वेट बढ़ा जा रहा है, क्योंकि वो क्या करते हैं घर का बना खाना इतना ज्यादा खाते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती।
0: जी जी सही बात कही आपने कि जो एग्स हैं या फिर चिकन है या फिर किसी भी तरह का नॉन वेज आहार जो आपने बताया वो अपनी डाइट में हम जो है वो अगर सम्मिलित करते हैं तो प्रोटीन जो है उससे अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। ऐसे लोग हमारे आसपास आपको ज्यादा मिलेंगे जो प्योर वेजिटेरियन है, उनके लिए आप कुछ ऑप्शंस और बताइए कि वो प्रोटीन का इंटेक कैसे बढ़ाएं।
1: जैसे एक सोया पनीर आती है, सोया पनीर वो खा सकते हैं, राजमा चावल खा सकते हैं, आप देखिए जो आजकल सत्तू पाउडर का काफी चलन है, जो अपने जो काले चने होते हैं उनको पीस कर ही बनाया जाता है, तो वो भी आप इंटेक कर सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, सोयाबीन बड़ी अपने को मार्केट में आराम से मिल जाती है तो वो भी आप इंटेक कर सकते हैं,
0: वे प्रोटीन।
1: और देखिए सर, अगर आप इन डाइट्स को प्रॉपर अगर मेजर नहीं रख पाते, ठीक है, तो आप एक प्रोटीन

0: यार जो डिब्बा होता है, लोग इसको काफी मिसकंसेप्शन है कि भाई डिब्बा खा के बॉडी बनाई, ऐसा कुछ नहीं होता। वो चीजें सिर्फ दूध से ही बनी होती है। बस ध्यान ये रखना होता है कि आपको जो भी आप जहाँ से भी चीज परचेज कर रहे हो वो ओरिजिनल हो,
1: जी
0: ताकि आपकी बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट ना हो उस चीज का। वो
1: जी
0: आप ऐड कर सकते हो एक स्कूप प्रोटीन आप वर्कआउट के बाद में जरूर ऐड कीजिए, ताकि आपने जो भी वर्कआउट किया है उसकी रिकवरी के जो मोड है वो अच्छा हो जाए पहले से।
1: जी हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, हम यही उम्मीद करेंगे कि आमिर खान की जो बातें हैं उनको सुनकर उनकी लाइफ में मोटिवेशन आए, वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज को चाहे वो घर पर करें या फिर जिम जाकर करें, और अपनी डाइट को जो संतुलित करें, अपने हेल्थ को, अपनी फिटनेस को अच्छा बनाएं और एक अच्छे जीवन को जो है जीने की ओर अग्रसर हों। आमिर खान, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे फिटनेस कोच आमिर खान से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र सूरतगढ़ का अंशदान था। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। प्रस्तुत है
1: मीडियम वेव 326.72 बीचर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी सूरत करके कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संकेत। श्रोताओं, स्वीकार करें अपने दोस्त राजेंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जब मोहब्बत अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती, तब उसके दर्द से शायरी जन्म लेती है, और जब उस शायरी को खयाम साहब का संगीत और गब्बर मिर्जा की गहरी आवाज मिल जाए, तो वो दिल की धड़कनों में उतर जाती है। ऐसा ही कालजयी नगमा, जिसमें जुदाई को शिकायत नहीं बल्कि मोहब्बत की तकदीर माना गया है। ये गीत बताता है कि सच्चा प्रेम दूरी से कम नहीं होता, बल्कि यादों में और गहरा हो जाता है। तो आइए खामोशी से दिल की आवाज सुनते हैं और डूब जाते हैं इस बेहतरीन एहसास में।

दोस्तों आइए अब सुने जवां मोहब्बत फिल्म का ये गीत। जब मोहब्बत जवान होती है, दिल में बहार होती है, हर धड़कन में किसी अपने की पुकार होती है, नजरें चुपचाप कह जाती हैं दिल की सारी दास्तां, और हर शाम किसी ख्वाब का इंतजार होती है।

दोस्तों, रातें सिर्फ अंधेरे का नाम नहीं होती। कुछ रातें यादों से जगमगाती हैं, कुछ ख्वाबों से महकती हैं और कुछ किसी अपने के इंतजार में कटती हैं। ऐसी ही एक हसीन, रोमांटिक और दिलकश रात का एहसास कराता है ये सदाबहार नगमा। सुनवाते हैं आपको इस बात के साथ कि रात की खामोशी में कुछ बात तो होगी, इन चांद सितारों की कोई सौगात तो होगी। यूं ही नहीं बेकरार है दिल किसी के लिए, इस प्यारी रात में मोहब्बत की बरसात तो होगी।

दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत घड़ियाँ वही होती हैं जब दिल खुश हो, महफिल सजी हो और किसी अपने की यादों का रंग चारों ओर बिखरा हो। ऐसे ही खुशनुमा एहसासों और मस्ती भरे अंदाज को समेटे हुए है ये हमारा अगला गीत। इस बात के साथ कि मुस्कुराहटों का सफर यूं ही चलता रहे, दिल से दिल का सिलसिला यूं ही मिलता रहे, महके हर लम्हा मोहब्बत की खुशबू से जिंदगी का चाम यूं ही छलकता रहे।

दोस्तों, मोहब्बत की दुनिया में जहाँ खुशियों के फूल खिलते हैं, वहीं कभी कभी जुदाई और बेवफाई के कांटे भी दिल को जख्मी कर जाते हैं। जब अपने ही सपनों को बिखेर दें तो दर्द शब्दों में नहीं, गीतों में ढल जाता है। ऐसे ही दर्द समेटे हुए है फिल्म देवर का ये बेहद मार्मिक गीत, जिसे दिल का गुलशन समझकर सजाया था हमने, वही ख्वाब आंसुओं में बहाया था हमने। मिला दर्द कुछ इस कदर मोहब्बत के सफर में कि हंसते हुए भी दर्द छुपाया था हमने।

दोस्तों, कुछ गीत दिल की उन भावनाओं को आवाज़ दे देते हैं जिन्हें हम चाहकर भी शब्दों में नहीं कह पाते। ऐसा ही एक भावपूर्ण गीत है भूपेन हजारिका की जादुई आवाज़ में। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो गाए जाते हैं, कुछ ख्वाब आँखों में ही सजाए जाते हैं। जब दिल की बात लफ्ज़ों में न उतर पाए, तब गीत बनकर एहसास सुनाए जाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ

0: एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities, and future."
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil and South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Defence Research and Development Organisation DRDO today successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defence Ministry said that the missile achieved all mission objectives, validating critical technologies and demonstrating India's growing long-range precision strike capabilities. Union Public Service Commission UPSC today declared the result of Civil Services Preliminary Examination CSE for this year. UPSC informed that this year, against more than 1,000 vacancies, a total of more than 13,000 candidates have been shortlisted for the Civil Services main exam.

मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। प्रातःकालीन सभा में सवेरे 5:52 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।